0: ने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए दो उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हे राम, तू सर्वत्र है, सब में है, तेरा नाम उद्धारक है, तेरा चरित्र आदर्श, जिसे आत्मसात कर जीवन सफल बनाया जा सकता है।

हरि का नाम भव सागर को पार करा देगा। श्रद्धा पूर्वक हरि का नाम लीजिए, अनंत संभावनाएं जीवन को सहज सरल बनाने के लिए उत्पन्न हो जाएंगी।

14.47 मीटर पर। सवेरे के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संगीतमय श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता के गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचने का समाचार सुनकर निषाद राजगुहू के हर्ष की सीमा न रही। अपने प्रियजनों तथा भाई बंधुओं को एकत्रित कर भेंट देने के लिए फल मूल आदि बहंगियों में भर भर कर वो सदल बल श्री राम से मिलने चला। राम ने उसे आत्मीय की भांति पास बिठाकर उसकी कुशलक्षेम पूछी। निषाद राज गदगद होकर बोला, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। यहां की धरती, धन संपत्ति और घर सभी आपके हैं। मैं तो परिवार के साथ आपका सेवक मात्र हूं। अब कृपा कर हमारे पूर्वे में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। श्री राम ने उत्तर दिया, हे सुजान सखा, तुमने जो कहा वो तुम्हारे स्नेह का द्योतक है, किंतु पिता ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्षों तक मुनिवेश और व्रत धारण करके उन्हीं सरीखा भोजन करते हुए वन में ही

14.47 मीटर पर। सवेरे के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संगीतमय श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता के गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचने का समाचार सुनकर निषाद राजगुह के हर्ष की सीमा न रही। अपने प्रियजनों तथा भाई बंधुओं को एकत्रित कर भेंट देने के लिए फल मूल आदि बहंगियों में भर भर कर वो सदल बल श्री राम से मिलने चला। राम ने उसे आत्मीय की भांति पास बिठाकर

0: बजे हम आपको सुनवाएंगे भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष में कार्यक्रम सुहाना सफर। सुबह 9:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बात आसपास की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। काव्यधारा में आइए सुनते हैं। सुश्री आदर्शिनी श्रीवास्तव का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
1: एक गीत प्रस्तुत करती हूँ,

अपना दूसरा गीत प्रस्तुत करती हूँ। काहे की भागा दौड़ी, काहे का झंझट, हाथों में पतवार उसी के, वो ही केवट। बेहद पाकर क्या पालेंगे, मन में बस संतुष्टि चाहिए, ज्यादा गहरी दृष्टि चाहिए, पैनी अंतर्दृष्टि चाहिए। हम कर्मों के कृषक हम ही हैं उत्तरदायी, हम कर्मों के कृषक हम ही हैं उत्तरदायी, अपनी ही करनी फल बनकर आगे आई, और किसी की नहीं उसी की अनुकंपा की वृष्टि चाहिए, ज्यादा पैनी दृष्टि चाहिए,

विस्तार, बाहर आकर्षण घना, भीतर दिव्य प्रकाश, घट में क्या है चाहता अब ये स्वयं विचार। नौ द्वारों के दुर्ग में दीपक ज्योतिर्मान, सांसों का आवागमन भीतर मन और प्राण। इन द्वारों पर शुद्ध के प्रतिपल होते यज्ञ, दे आहुति दुर्भाव की भीतर करे प्रयाण। और एक गीत और प्रस्तुत करती हूँ।

0: काव्यधारा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सुश्री आदर्शिनी श्रीवास्तव से उनका पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सुबह की 6:55 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार रिले किए जाएंगे, उसके तुरंत बाद हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी म्यान्मार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आङ्ग ल्हाइङ्ग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यान्मार भारतदेशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेऽपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेशव्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने

0: यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉक्टर संवितपात्रावर्यः नरेन्द्रमोदी प्रशासनस्य द्वादश वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।

0: भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7:05 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा में आइए सुनते हैं, प्राकृतिक भोजन का त्वचा पर प्रभाव विषय पर जानकारी।
2: आप में से बहुत से लोग खूबसूरती को हमेशा बरकरार रखने वाला सही खान पान क्या है इससे अवगत नहीं होंगे। अगर आप अपनी त्वचा के रूखेपन, दाग धब्बों, झुर्रियों आदि से छुटकारा पाना चाहते हैं, त्वचा की रंगत में निखार और खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही सीधा सरल उपाय है, सही भोजन। डॉक्टरों का मत है कि हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारी त्वचा पर दिखाई देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डर्मेटोलॉजी के असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर मिशेल पी गोल्डमैन कहते हैं, मेरे पास आने वाले मरीज त्वचा पर जादुई असर करने वाले इलाज की मांग करते हैं। मैं सबसे पहले उनके खान पान में परिवर्तन करवाता हूँ और उन्हें सही खान पान से बहुत ही कम समय में आश्चर्यजनक परिवर्तन महसूस होता है। ये सही खान पान क्या है, आइए जाने आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम इन्हीं तथ्यों को। डॉक्टरों के अनुसार स्वस्थ त्वचा सिर्फ सुंदरता ही नहीं बढ़ाती बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और भी बहुत से महत्वपूर्ण काम करती है। ये शरीर में नमी को बनाए रखती है और बैक्टीरिया तथा अन्य हानिकारक तत्वों को पसीने के साथ बाहर निकाल देती है। लेकिन स्वस्थ त्वचा को भी सुरक्षा की काफी जरूरत पड़ती है। त्वचा की बाहरी परत हर 28 दिन में बदल जाती है। बाहरी परत की रक्षा के लिए संरक्षण प्रदान करने वाले तत्व और भीतरी परत की रक्षा के लिए एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन बहुत आवश्यक है। त्वचा के सूखेपन से लेकर झुर्रियों तक की समस्या पौष्टिक भोजन से दूर की जा सकती है। हालांकि भोजन और त्वचा की निखार का संबंध अभी भी डॉक्टरों के बीच बहस का मुद्दा बना हुआ है, पर शोधकर्ता इस बात के सबूत पा चुके हैं कि त्वचा के दुश्मन हैं। उनके अनुसार सैचुरेटेड फैट जो महाधमनी को संकरी बनाता है वो रक्त शिराओं में भी रक्त प्रवाह को रोकता है। इससे त्वचा की कोशिकाओं को पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती। नतीजतन त्वचा की निचली परत कोलेजन को नुकसान पहुंचता है और त्वचा झोलदार, लोच विहीन और धब्बेदार नजर आती है। अपने भोजन में अधिक से अधिक हरी साग सब्जियों का प्रयोग करें। मेथी, पालक, चौलाई आदि हरे गहरे रंग के सागों में एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इन्हें विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों के साथ खाने से इनसे आयरन भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। गहरे हरे रंग के सागों में जिंक भी पाया जाता है। स्वीडन में हुए एक अध्ययन के अनुसार मुहासे वाले जिन लोगों को जिंक सप्लीमेंट दिए गए उनमें से 80% लोगों के मुहासे खत्म हो गए। सुंदर चिकनी त्वचा के लिए पर्याप्त चिकनाई लेना भी बहुत आवश्यक है। त्वचा विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार जिन लोगों की त्वचा सूखी और कांतिहीन होती है वो तिल, सरसों, मूंगफली, जैतून आदि के तेलों का उपयोग कम करते होंगे। इन तेलों का उपयोग करने से ही कुछ ही सप्ताहों में त्वचा निखर उठती है। यदि आप ज्यादा शारीरिक श्रम या व्यायाम करते हैं तो इससे भी ज्यादा पानी पिएं। त्वचा रोग विशेषज्ञों के अनुसार पके टमाटरों में से उच्च स्तरीय एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए और सी के अलावा कैंसर रोधी केमिकल भी पाए जाते हैं। विटामिन के शरीर को प्रचुर मात्रा में विटामिन ए प्रदान करती है जो त्वचा को सूखी और पपड़ीदार होने से बचाती है।

0: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्राकृतिक भोजन का त्वचा पर प्रभाव विषय पर जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। खेती की बातें कार्यक्रम प्रस्तुत है।
1: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है बीज उपचार करने का सही तरीका। किसान भाइयों, खेती में अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए केवल उन्नत किस्मों के बीज लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि बीजों का सही तरीके से उपचार करना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत से किसान भाई बिना बीज उपचार किए सीधे बुआई कर देते हैं, जिसके कारण फसल की शुरुआत कमजोर होती है और बाद में रोग तथा कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। बीज उपचार एक ऐसी तकनीक है जिसमें बुआई से पहले बीजों को दवा, जैविक उत्पाद या पोषक तत्वों से सुरक्षित किया जाता है, ताकि बीज स्वस्थ रहे, अंकुरण अच्छा हो और पौधे मजबूत बने। भाइयों, कम खर्च में अधिक लाभ देने वाली यह तकनीक किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। जब किसान भाई बिना उपचार वाले बीज बोते हैं तो बीज जनित रोग, मिट्टी में रहने वाली फफूंदी, दीमक, तना मक्खी तथा अन्य हानिकारक जीव बीज को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार बीज मिट्टी में सड़ जाते हैं या अंकुरण कम हो जाता है। इससे खेत में पौधों की संख्या घट जाती है और उत्पादन कम हो जाता है। यदि किसान बुआई से पहले बीज उपचार कर लें तो फसल की शुरुआती अवस्था मजबूत होती है, पौधे स्वस्थ बनते हैं और रोगों का प्रकोप कम होता है। यही कारण है कि कृषि वैज्ञानिक हर फसल में बीज उपचार करने की सलाह देते हैं। भाइयों, बीज उपचार करने के लिए सबसे पहले अच्छे और साफ बीजों का चयन करना चाहिए। टूटे, रोगग्रस्त, हल्के तथा कीड़े लगे बीज अलग कर देने चाहिए। स्वस्थ और भारी बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। इसके बाद बीजों को साफ जगह पर फैलाकर उसमें से मिट्टी, भूसा और खरपतवार के बीज अलग कर लेने चाहिए। जब बीज साफ हो जाते हैं तब उन पर दवा अच्छी तरह चिपकती है और उपचार प्रभावी बनता है। बीज उपचार करने के लिए किसान भाई फफूंदीनाशी, कीटनाशी तथा जैविक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। फफूंदनाशी दवाएं बीजों को सड़न, झुलसा, कंडुआ, उकठा तथा जड़ गलन जैसे रोगों से बचाती हैं। इसके लिए कार्बेंडाजिम, थीरम, कैप्टान और ट्राइकोडर्मा जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। सामान्य रूप से 2 से 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से प्रयोग की जाती है, लेकिन हमेशा दवा के पैकेट पर लिखी मात्रा या कृषि वैज्ञानिक की सलाह का पालन करना चाहिए। यदि खेत में दीमक या अन्य कीटों की समस्या अधिक रहती है तो किसान भाई कीटनाशी दवा से भी बीज उपचार कर सकते हैं। इसके लिए इमीडा क्लोरोपिड या थायोमेथोक्साम जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, आजकल जैविक खेती का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जैविक बीज उपचार किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रहा है। ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर तथा PSB जैसे जैविक उत्पाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं और पौधों को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाते हैं। दलहनी फसलें जैसे चना, मटर, मूंग और उड़द में राइजोबियम का उपचार विशेष लाभ देता है, क्योंकि यह पौधों की जड़ों में गांठे बनाकर वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करता है। इससे यूरिया की आवश्यकता कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। किसान भाइयों, बीज उपचार करते समय किसान भाइयों को कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। दवा की मात्रा कभी अधिक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे अंकुरण प्रभावित हो सकता है। दवा मिलाते समय हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क लगाना सुरक्षित रहता है। उपचारित बीजों को खाने या पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों और पशुओं से दवाओं को दूर रखना चाहिए। यदि जैविक और रासायनिक दोनों प्रकार का उपचार करना हो तो पहले रासायनिक दवा से उपचार करें, बाद में जैविक उत्पाद लगाएं। किसान भाइयों, आज मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। कभी अधिक नमी, कभी सूखा और कभी तापमान में अचानक परिवर्तन के कारण फसलों में रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में बीज उपचार किसानों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यदि किसान भाई हर फसल की बुआई से पहले बीज को उपचार करने की आदत बना

0: तो वे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि वे प्रमाणित और स्वस्थ बीजों का चयन करें। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की खेती की बातें। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। प्रातः 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे कानपुर नगर और रामपुर जिलों की हलचल। इसके अलावा रात 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण में कार्यक्रम खेल दर्पण सुनवाया जाएगा। प्रस्तुति आकाशवाणी गोरखपुर की होगी। ये दोनों कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 7:31 पर सुनिएगा मनोरंजन और सूचना पर आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। धरती गाती है कार्यक्रम में प्रातः 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे मृदुला निगम के स्वर में रोहिलखंडी लोकगीत। सुबह 9:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बात आसपास की, वाचन एवं संकलन होगा अंकुर चौधरी का। सवेरे 10 बजे सुनिएगा भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर। दिन में 11:30 पर हम आपको सुनवाएंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1297वां भाग। दोपहर 1:15 पर महिला जगत में सुनिएगा सुश्री सरिता राजपूत का काव्य पाठ। दिन में 1:45 पर लोकधारा में हम आपको सुनवाएंगे अनिता रावत के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। संध्या 5 बजे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद के से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है सुनवाया जाएगा। युवाणी में शाम 5:15 पर कुछ खास है आज क्रम में चर्चा का विषय होगा ड्रीम बड़ा रखो एक्सक्यूज छोटे। कहानी के उस कार्यक्रम में घर जमाई का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। साथ ही बूझो तो जाने क्रम में IPL 2026 से संबद्ध सवाल होगा। संध्या 6:05 पर कृषि जगत में बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला के चौथे भाग में डॉक्टर रितेश शर्मा से प्रमोद सिंह की बातचीत का विषय होगा बासमती धान की रोपाई। संध्या 6:45 पर 90 साल बेमिसाल कार्यक्रम में आप सुनेंगे रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मशहूर शायर श्री सैयद एजाजुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेरठी से विशेष भेंटवार्ता। सुगम संगीत में शाम 7:32 पर आप सुनेंगे शीलाधर की गाई गजलें। रात 9:30 पर पर्यावरण पर विशेष कवि गोष्ठी में प्रतिभागी कवि होंगे सुश्री अंजुला अरोड़ा, सुश्री आशा त्यागी, श्री सुमन गोयल और डॉक्टर नीरज शर्मा। कवि गोष्ठी का संचालन करेंगी सुश्री लक्ष्मी डबराल और प्रस्तुतकर्ता होंगे अंकित सैनी। ये थी कार्यक्रमों की जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
2: स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए मन में ये संकल्प बनाए।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय

0: करना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों सहित उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को भारत सरकार से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति। 5.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को कल सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
3: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दिशा से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए। अटल टिकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: मुख्यमंत्री ने कल बिजनौर जिले में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
3: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास, यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
2: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। गोरखपुर और कुशीनगर में लोकार्पण तथा शिलान्यास के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे। वह आज कुशीनगर जिले के तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के हरियरपुर में आयोजित समारोह में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

0: इस अवसर पर श्री योगी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कुशीनगर में निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री आज शाम गोरखपुर में चिलुआ ताल घाट पर 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कराए गए चिलुआ ताल के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। स्थायी पुलिस महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति

0: समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। करीब 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। उच्चतम न्यायालय ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झांसी की ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को आधिकारिक रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। 253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली इस परियोजना के अंतर्गत 5.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी में मुख्य रूप से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। प्रस्तुत है किसान कल्याण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 4 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में प्रदेश के पूर्वी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। विभाग द्वारा आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी धीरे धीरे क्रमिक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों सहित उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को भारत सरकार से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति। 5.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में तिथि विशेष पर जानकारी के अलावा योग और व्यायाम पर चर्चा होगी। भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने के संबंध में और वृक्ष लगाओ हरियाली लाओ विषय पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अखबारों की सुर्खियां कार्यक्रम में शामिल रहेंगी और फिल्मी गीतों का आनंद भी आप ले सकेंगे। तो पहले बात करते हैं योग के संबंध में। साथियों, स्वास्थ्य को सामान्यतः शरीर से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शरीर के साथ साथ मन का शांत और संतुलित होना तथा भावों में निर्मलता भी उतनी ही आवश्यक है। शरीर और मन दोनों का स्वस्थ रहना पूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यक शर्त है। भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारतीय जीवन दृष्टि प्रकृति के दिशा निर्देशों एवं संकेतों के अनुरूप ही विकसित हुई है। भारतीय बोध प्रकृति के समानांतर विकसित ज्ञान और जीवन के अनुभवों से बनी व्यावहारिक समझ है। भारतीय समाज में जीवन चक्र, ऋतु चक्र, फसल चक्र जैसी जीवन दृष्टि प्रकृति प्रेरित अनुभवों से ही विकसित हुई है, जिसे योग और अध्यात्म के सिद्धांतों के सहारे भारतीय जीवन दर्शन का अटूट हिस्सा बनाया जा सका। इसीलिए हम आध्यात्मिकता, लौकिकता और विश्व कल्याण में समान रूप से रत रहने वाले समाज हैं। हमारे पुरखों द्वारा योग को जीवन के साथ जोड़ना उनकी इसी दूर दृष्टि को बताता है कि ये जीवन शैली का हिस्सा बना रहे और हमारा समाज स्वस्थ रहे। हमारी जीवन शैली ही हमारे स्वास्थ्य की धुरी है। हमारा तन मन दोनों स्वस्थ रहें, ये इसी पर निर्भर करता है कि हम अपना दैनंदिन जीवन कैसे जी रहे हैं। गर्मियों में योग और व्यायाम हमारे शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित कर थकान और बेचैनी दूर कर सकते हैं। सही आसनों और प्राणायाम के माध्यम से हम प्राकृतिक रूप से खुद को तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। जैसे जीभ को पाइप की तरह मोड़कर मुंह से सांस अंदर लें और नाक से छोड़ें, ये शीतली प्राणायाम है जो शरीर के तापमान को तुरंत कम करता है। दांतों को भींचकर सांस लें और जीभ को तालू से लगाकर नाक से छोड़ें, ये शीतकारी प्राणायाम भी गर्मी से राहत दिलाता है। श्वसन और योग निद्रा, इस योगाभ्यास में पीठ के बल लेटकर शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ना होता है, ये मन को शांत कर गर्मी से होने वाले तनाव को दूर करता है। तो इसी तरह भीषण गर्मी से बचाव के लिए योग का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन श्रोताओं को हमारी सलाह है और उनसे अनुरोध भी है कि कोई भी योगाभ्यास किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक के परामर्श अथवा उसकी देखरेख में

0: किया जाना चाहिए।
1: मर गई।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
5: तो इंतजार किस बात का,
4: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
5: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
4: और हमारा ईमेल आईडी है
5: akashwaninajibabad@gmail.com।
4: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
5: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।

दोस्तों, बरसात के मौसम में तो सर्वत्र जल उपलब्ध रहता है, लेकिन आजकल भीषण गर्मी पड़ रही है। तालाबों पोखरों का पानी ऐसी गर्मी में आमतौर पर सूख जाता है। हम इंसानों के पास तो तरह तरह के संसाधन मौजूद हैं, हम किसी भी तरह अपनी प्यास बुझा ही लेते हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों और परिंदों के लिए ऐसे मौसम में अपनी प्यास बुझा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार पानी के अभाव में इन निरीह जानवरों को जान तक गंवानी पड़ जाती है। गर्मी में पक्षियों के लिए भोजन की भी कमी रहती है। पक्षियों के भोजन कीड़े मकौड़े गर्मियों में नमी वाले स्थानों में ही मिल पाते हैं। खुले मैदानों में कीड़ों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, जिससे पक्षियों को भोजन खोजने में मशक्कत करनी पड़ती है। जंगलों में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, साथ ही जल स्रोत भी सूख जाते हैं। वहीं मवेशियों के लिए भी चारागाह के अलावा खेतों में पानी की समस्या होती है। इस वजह से पानी के साथ भोजन की भी कमी मवेशियों के लिए हो जाती है। ऐसे में हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम इन मासूम परिंदों और जानवरों के लिए भोजन पानी का समुचित प्रबंध करें। घरों के बाहर पानी के बर्तन भरकर टांगें या बड़ा बर्तन पानी भरकर रखें, जिससे मवेशी और परिंदे पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें। इस मौसम में हमें अपने मकान की छतों पर भी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। छत पर छायादार जगह बनाकर वहां पानी के बर्तन भरकर रखें। पक्षियों के लिए चना, चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूं आदि जो भी घर में उपलब्ध हो, उस चारे की व्यवस्था छतों पर की जा सकती है, ताकि पक्षियों को आसानी से भोजन मिल सके। कम पानी वाले जल स्रोतों को गंदा ना करें, इससे पशु पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता आसान हो सकती है। उपयोग के बाद बचे हुए खाने को फेंकने के बजाय जानवरों को डाला जा सकता है। एक संवेदनशील और जागरूक नागरिक होने के नाते हमें अपने आसपास मौजूद पशु पक्षियों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि बेजुबान जानवरों को राहत मिले और हमारा मानव होने का उत्तरदायित्व भी पूरा हो सके। श्रोताओं, हमारे देश में तेजी से बढ़ती आबादी, आबादी का घनत्व, उपभोक्तावादी जीवन शैली, विस्तार पाते शहर, लगातार घटते जंगल, राजमार्गों का फैलाव और उसके नतीजे में कटते हुए असंख्य पेड़ प्रकृति से हमारे बैर को दर्शाते हैं। हम इसे विकास मानते हैं, लेकिन प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के दुरुपयोग का जैसा रवैया हमारा है, वो अपने पांव कुल्हाड़ी मारने की मिसाल को चरितार्थ करता है। मकान बनेंगे तो इमारती लकड़ी के लिए पेड़ काटे जाएंगे, खनिज पदार्थों के दोहन के लिए खदान बनेगी तो पूरा का पूरा जंगल साफ कर दिया जाएगा, नए राजमार्ग बनेंगे या बने बनाए राजमार्गों को चौड़ा किया जाएगा, तब भी असंख्य पेड़ काट डाले जाएंगे। घर, दफ्तर और व्यावसायिक संस्थानों में फ्रीज और एसी चलेंगे, निश्चित ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इसे संभालेगा कौन? पर्याप्त पेड़ हों तो कोई भी कह दे कि पेड़ है ना, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी आज की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त पेड़ नहीं हैं, और जो हैं वो काटे जा रहे हैं। एकल परिवार आज की वास्तविकता है, घर छोटे हो गए हैं, आंगन ही नहीं है तो पेड़ लगाएं कहाँ? लेकिन पेड़ लगाना बेहद जरूरी है हमारे अपने अस्तित्व के लिए। पेड़ों के बगैर पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेड़ ही कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर हमें सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। घने पेड़ छाया प्रदान करते हैं और गर्मी को कम करके वातावरण को ठंडा करते हैं। पेड़ मिट्टी को बांध कर रखते हैं, जिससे भूजल का स्तर बढ़ता है और बाढ़ का खतरा कम होता है। ये धूल, धुएं और हानिकारक गैसों को फिल्टर करके हवा को साफ करते हैं। अपने घर में या आसपास की खाली जगहों पर पौधे जरूर लगाएं। यदि आपके पास जगह की कमी है तो बालकनी या छत पर गमलों में छोटे पौधे ही उगाएं। स्थानीय स्तर पर अभियान चलाकर अपने आसपास की सड़कों, राजमार्गों के किनारों, नहरों के दोनों तरफ छोड़ी गई खाली जगह पर पेड़ लगाए जाने चाहिए
और उन्हें सुरक्षित बढ़ने देने का प्रबंध भी करना चाहिए ताकि भविष्य की प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहा जा सके।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, आप जान लेते हैं आज के दिन हो चुकी प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज मंगलवार 2 जून है, मौजूदा साल 2026 का 153वां दिन। हॉकी की नर्सरी और हॉकी का मक्का कहलाए जाने वाले जालंधर छावनी के पास बसे छोटे से गांव संसारपुर ने भारत को लगभग 14 ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी दिए। इसी संसारपुर में 2 जून 1932 को जन्मे थे बलबीर सिंह जूनियर। वे 1958 में टोक्यो में आयोजित एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। इनसाइड लेफ्ट के रूप में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। श्रोताओं, दक्षिण भारतीय भाषाओं और हिंदी के प्रख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक मणिरत्नम का जन्म मदुरई में 2 जून 1955

2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन नीलेकणी मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। नंदन नीलेकणी भारत सरकार द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक विशिष्ट पहचान संख्या या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान करने के लिए हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण UIDAI के अध्यक्ष बनाए गए थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा सन 2006 में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई करते हुए पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय छात्र थे प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्राण कृष्ण पारिजा। भारत लौटने पर वे कटक कॉलेज के प्रिंसिपल, उड़ीसा के कृषि निदेशक, उत्कल विश्वविद्यालय के कुलपति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उप कुलपति और विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित प्राण कृष्ण पारिजा की मृत्यु 2 जून 1978

मई 2026 में भारत की बिजली खपत 11.55% वृद्धि के साथ 164.98 अरब यूनिट पर पहुंच गई, जबकि मई 2026 में कोयला उत्पादन 11.6% घटकर 5.61 करोड़ टन पर आ गया। इस असंतुलन पर विस्तृत खबर के साथ दैनिक जागरण ने सुर्खी लगाई है, बिजली की मांग

314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बज रहे हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी

0: ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
1: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया

0: उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया, तो वो भी हमला नहीं करेगा। खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम

सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने बाहमी तिजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कुश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है और हॉकी में 18 साल

0: से। म्यांमा के सदर ओ मिन आउन लाइन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा।
1: Sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities.

0: आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम हुकूमत की जानिब से ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक किए गए इकदामात का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तब्दीली आई है हुकूमत की जानिब से हिफ्जान सेहत, तालीम, रोजगार के मौके और मुआशी शमूलियत के लिए किए गए इकदामात इस तब्दीली के मुहर्रिक हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, जिसका आगाज 2015 में किया गया था, करोड़ों ख्वातीन अपने कारोबार को शुरू करने और वसत देने के लिए जमानत से मुबर्रा कर्ज हासिल कर पाई हैं। मस्कूरा स्कीम के तहत इस साल मार्च के आखिर तक 40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत का कर्ज दिया जा चुका है, जिसमें से 17 लाख करोड़ रुपए ख्वातीन को दिए गए। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए तिरुपुर तमिलनाडु की रिहायशी वंशीरी ने बताया,
0: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
1: 2-3 ब्रांचेस। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उमानिया जैसी कलीदी स्कीमों की बदौलत बैंककारी

0: दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं।
1: पहुंचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए, बोली जनता बोली ईश्वर रूप बदल के आए।
0: ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है।
1: अच्छा,

0: लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में आप सुन रहे थे सन्यासी फिल्म का गीत। गीतकार थे एमजी हशमत और संगीत था शंकर जयकिशन का।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सलमा आगा और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे निकाह फिल्म का गीत। शब्द रचना थी हसन कमाल की और धुन रवि की थी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आप सुन रहे थे दो बदन फिल्म का गीत। गीतकार थे शकील बदायूं ने और धुन रवि की थी। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं मेरा फैसला फिल्म का गीत आशा भोसले के स्वर में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सुबह के 9:15 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में कार्यक्रम जिले की हलचल हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए कानपुर नगर और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का।
3: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कानपुर झांसी चित्रकूट धाम मंडलों की संयुक्त मंडली खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाही ने स्टॉलों पर जाकर विभिन्न उत्पादों के विषय में जानकारी लिया। गोष्ठी के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव कृषि सहित कृषि वैज्ञानिक एवं कृषक गण कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने के साथ ही खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद का प्रयोग कम करने के लिए सरकार द्वारा KCC योजना को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन की बचत किए जाने की अपील को बल देते हुए श्री शाही ने कहा कि उन्होंने अपने काफिला कम कर दिया है और अधिकारियों को कार पूल करने के लिए निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय को 100 साइकिल लेने और शिक्षकों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को साइकिलों के माध्यम से चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जनपद कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अनुदेशक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के मानदेय में लगभग दोगुनी वृद्धि करते हुए प्रदेश सरकार ने इसे 9,000 रूपए से बढ़ाकर 17,000 रूपए प्रतिमाह कर दिया है। श्री राकेश सचान ने बताया कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा तथा अनुदेशकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से भी आच्छादित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषदीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक

0: योग, संगीत, कला एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और रचनात्मकता विकसित कर रहे हैं। यह निर्णय बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अनुदेशकों के योगदान का सम्मान है। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पांडु नगर कानपुर नगर का औचित्य निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में संचालित विभिन्न व्यवसायों, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध संसाधनों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों से संवाद कर उनके कौशल विकास, प्रशिक्षण अनुभव एवं भविष्य की रोजगार संभावनाओं के बारे में जानकारी लिया। उन्होंने प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार और आधुनिक संसाधनों पर जोर देते हुए संस्थान में किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के साथ ही कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता का संदेश, युवाओं को रोजगार पूरक प्रशिक्षण पर बल दिए जाने के निर्देश दिया। मंत्री कपिल अग्रवाल ने बताया,
1: कानपुर जो एक बड़ा हब है, इंडस्ट्री का बड़ा सेंटर है, तो यहाँ के उद्यमियों से भी, उद्योगपतियों से, व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि आईटीआई में कभी विजिट करें, बच्चों की आवश्यकता को समझें कि बच्चे आईटीआई करते करते ड्यूअल सिस्टम के अंदर बच्चे आईटीआई में भी काम करें और इंडस्ट्री के अंदर भी प्रशिक्षण लें। तो इन बच्चों को इंडस्ट्री में घुमाएं, देखें ताकि ये बच्चे प्रैक्टिकल रूप से वहां जाके इंडस्ट्री में सीखने का काम कर सके और बालिकाओं के अंदर भी एक शानदार आत्मविश्वास दिख रहा है, उनको भी सपने साकार हों।
0: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों अग्रणी जिला बैंक कार्यालय कानपुर नगर द्वारा वित्तीय सेवा विभाग, राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड NCGTC, राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC, लीड बैंक एवं जन समर्थ PSB अलायंस के समन्वय से ECLGS 5.0 योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के उद्देश्य से आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा एवं राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC उत्तर प्रदेश के संयोजक शैलेंद्र कुमार सिंह, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग DFS के अवर सचिव शैलेंद्र कुमार एवं विशेष कार्याधिकारी OSD मधुरिता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान ECLGS 5.0 योजना MSME इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, कार्यशील पूंजी संबंधी समस्याओं को दूर करने तथा रोजगार एवं औद्योगिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा बैंकों के पात्र इकाइयों तथा योजना का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय प्रयास करने के उद्देश्य से किया गया। SLBC उत्तर प्रदेश के संयोजक और बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया,
2: इस स्कीम में जो MSME सेक्टर है, जो भी वो लोन बैंक देंगे, MFI देंगे बल्कि, वो टोटल 100% सिक्योर्ड है और नॉन MSME के लिए 90% तक इसको क्रेडिट गारंटी भारत सरकार दे रही है, जिसका कोई भी फीस किसी भी कस्टमर को नहीं देना है।
3: कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
4: रामपुर में उद्यान विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों में पॉली हाउस, शेड, नेट हाउस की स्थापना, मशरूम उत्पादन इकाई, स्पॉन मेकिंग इकाई, कोल्ड रूम एवं कोल्ड स्टोरेज जैसे कई कार्यक्रम सम्मिलित हैं। अधीक्षक राजकीय उद्यान अजय कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा इकाई लागत का 40-50% तक अनुदान अनुमन्य है। जनपद में ईद उल अजहा का त्योहार श्रद्धा, पारंपरिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने बारगाहे इलाही में सिर झुकाकर मुल्क में अमन चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए खास दुआएं की। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस बेहद मुस्तैद नजर आई। शहर के संवेदनशील इलाकों, ईदगाह और प्रमुख मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रामपुर में अत्यधिक गर्मी और बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल उम्र के बच्चों के लिए 15 जून 2026 तक अवकाश घोषित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया। हालांकि समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाएं ने अपने अपने केंद्रों पर नियमित रूप से उपस्थित रहकर विभागीय कार्यों का निर्वहन किया। जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही पाई गई। लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्य में शिथिलता बरतने वाली आशाओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित 7 आशाओं की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की गई। ICDS

0: स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए जा रहे गोल्डन आयुष्मान कार्ड की समीक्षा में लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने CDPO मिलक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही CDPO मिलक एवं CDPO बिलासपुर का 3-3 दिन का वेतन बाधित करने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना में शानदार प्रदर्शन किया गया है। भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने योजना के तहत अपना 100% लक्ष्य प्राप्त किया। वर्तमान में जिले के कुल 70,000 से अधिक पात्र बुजुर्गों को पेंशन का सीधा लाभ मिल रहा है। अपात्रों की छटनी करने के साथ साथ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए हकदारों को उनका अधिकार दिलाने का काम भी तेजी से हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को न्यायालय ने 2 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आजम खान द्वारा साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों के खिलाफ विवादित बयान दिया गया था। थाना क्षेत्र भोट अंतर्गत चुनाव प्रचार करते हुए उच्च अधिकारियों के विरुद्ध आजम खान ने अभद्र टिप्पणी की थी। न्यायाधीश शोभित बंसल न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम MPMLA कोर्ट रामपुर में विचाराधीन था। ADGC संदीप सक्सेना ने बताया कि आजम खान को इसमें दोष सिद्ध करार दिया गया है।
1: MPMLA जो स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट है रामपुर में श्रीमान शोभित बंसल जी की, उनके द्वारा सजा सुनाई गई, जिसमें हर धाराओं में 2 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना आजम खान के ऊपर डाला गया।
0: जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जनपद स्तरीय गठित टास्क फोर्स द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 3 वाहनों को ओवरलोड पाया गया। इसके अतिरिक्त 25 डंपरों में कमियां पाई गईं। प्रशासन ने वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की है कि वाहनों में रेता, बजरी अथवा अन्य सामग्री निर्धारित क्षमता से अधिक न भरें तथा डंपरों का संचालन निर्धारित गति सीमा के अंतर्गत करें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मृदुला निगम के स्वर में रोहिलखंडी लोकगीत।

0: आइए अब सुनते हैं मृदुला निगम के स्वर में ये रोहिलखंडी लोकगीत।
1: की गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मृदुला निगम के स्वर में रोहेलखंडी लोकगीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रम बात आसपास की में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अंकुर चौधरी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा योजना की, एक ऐसी पहल जो शिक्षा को आधुनिक, सरल और प्रभावशाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से क्या लाभ और चुनौतियाँ देखने को मिली है, उसके बारे में हमने विद्यालय में उपस्थित प्रधान अध्यापक से बात की। सर, सबसे पहले आपका नाम?
1: मैं जगदीप सिंह, प्रधान अध्यापक PM श्री कंपोजिट स्कूल सरायालम विकास क्षेत्र नजीबाबाद में कार्यरत हूँ।
0: सर, विद्यालय में डिजिटल शिक्षा को किस प्रकार लागू किया गया है?
1: हमारे यहाँ PM श्री विद्यालय है, उसमें एक कंप्यूटर लैब बनाई गई है। उसमें 14 कंप्यूटर विभाग द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं और बच्चों को एक सिस्टमेटिकली 8 वाले, फिर 7 वाले, फिर 6 वाले, इस तरह से बच्चों को हम सिखाते हैं यहाँ पर।
0: डिजिटल शिक्षा लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही थी सर?
1: सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि हमारे पास जो है ना कंप्यूटर टीचर की व्यवस्था नहीं है, और जब कंप्यूटर टीचर की व्यवस्था नहीं होती तो जो हमारे क्लास वाले जो टीचर हैं वही इसको देखते हैं, और किसी टीचर पर तो आता है, किसी पर नहीं आता, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बीच बीच में एक दो बार ट्रेनिंग भी हुई, लेकिन उस ट्रेनिंग में भी पूरा सही से नहीं बताया गया कि क्या क्या करना है, कैसे चलाना है इसको, कैसे नहीं, क्योंकि पुराने टीचर हो गए, पुराने टीचर पर कंप्यूटर नहीं आता, जो नए टीचर हैं वो तो जानते भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक कंप्यूटर टीचर की व्यवस्था स्कूल में की जाए।
0: क्या इस योजना से छात्रों के सीखने के स्तर में परिवर्तन आया है?
1: हाँ, काफ़ी परिवर्तन आया है, और जो बच्चे पहले मतलब स्कूल में नहीं

0: चाहते थे, प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे, वो बच्चे भी हमारे यहाँ नाम लिखवा रहे हैं इस समय। वे चाहते हैं कि हम भी कंप्यूटर सीखें, उनके माँ बाप भी चाहते हैं कि कंप्यूटर में हमारे बच्चे दक्ष हों, निपुण हों।
1: क्या डिजिटल शिक्षा से पारंपरिक शिक्षा पद्धति प्रभावित हो रही है?
0: हाँ, काफी बदलाव हो रहा है इसमें। जो पहले पारंपरिक शिक्षा थी उससे तो काफी अंतर है, क्योंकि अब जो युग है वो सारा कंप्यूटर का युग है। हर काम कंप्यूटर पर है, बैंक में कोई काम होता है कंप्यूटर पर होता है, और शिक्षा में भी अब कंप्यूटर है। हम तो जो पढ़ाई हो रही है दीक्षा ऐप के माध्यम से, वो भी हमारी सारी किताबें ही कंप्यूटर में सेव हैं। जिस क्लास का भी जो सब्जेक्ट भी हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो उसी के अंदर मिल जाता है।
1: डिजिटल संसाधनों के रखरखाव के लिए क्या व्यवस्था की गई है?
0: हमारे यहाँ एक अलग से एक डिजिटल कंप्यूटर रूम बनाया गया है, उसमें इन्वर्टर है, बैटरी है, सब कुछ व्यवस्था है। 24 घंटे बिजली की व्यवस्था है और एक नेट की व्यवस्था की गई है। पूरा सेटअप बॉक्स है वो लगाया गया है, जिससे कि 24 घंटे नेट की व्यवस्था रहे और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे।
1: डिजिटल शिक्षा ने विद्यालय को एक नई दिशा दी है, जिससे छात्राओं के सीखने की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसके बाद विद्यालय में उपस्थित शिक्षक से बात की। सर, आपका नाम?
2: मेरा नाम शैंकी जैन है और मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय सराय आलम में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ।
1: सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डिजिटल शिक्षा से छात्रों की सहभागिता बढ़ी है या कम हुई है?
2: नहीं, जैसे कि देखा जाए तो डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्रों की सहभागिता जो है वो बढ़ी है। देखा जाए कि आजकल बच्चे जो है ज्यादा करके डिजिटल माध्यम से ही पढ़ना चाहते हैं और उसमें रुचि भी ज्यादा लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग नए नए एप्लीकेशन के बारे में इनको जानने का मौका मिल रहा है। उसमें ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी करते हैं, और उससे मतलब इनके पढ़ाई में भी काफी इंप्रूवमेंट आया।
1: आप किन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं इनको पढ़ाने में?
2: एक तो विभागीय हमारी दीक्षा ऐप है, हम उसका भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, और भी काफी एप्लीकेशन है। यूट्यूब में कुछ सेशंस होते हैं, हम उसका प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम इनको आगे मतलब उस सिलेबस के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते हैं, और कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड भी बच्चों को उसके बारे में सिखाते रहते हैं, जिससे आगे के आने वाले फ्यूचर में तैयार हो सके।
1: क्या सभी विषयों में डिजिटल शिक्षा समान रूप से प्रभावी हुई है?
2: समान रूप से तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ऐसी भी मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें मतलब फिजिकली भी पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स में आप कितना डिजिटली पढ़ा ले, लेकिन जब तक टीचर उसको एक्सप्लेन करके ना पढ़ाए, उस बोर्ड रूम टीचिंग का जब तक उसमें यूज ना हो, तब तक डिजिटल शिक्षा भी पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हो सकती।
1: सर, डिजिटल शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या क्या महसूस होती है आपको?
2: डिजिटल शिक्षा में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चे धीरे धीरे डिजिटल शिक्षा की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन जो बोर्ड रूम टीचिंग है उससे थोड़ा सा वंचित रह पा रहे हैं। क्योंकि कुछ चीजें जैसे मैंने अभी पहले वाले उसमें भी बताया है कि डिजिटल शिक्षा एक तरीके से बच्चों को तब ज्यादा प्रभावी होती है जब बोर्ड रूम टीचिंग के बाद उसका प्रयोग किया जाए, ना कि ये कि केवल आप डिजिटल माध्यम से बच्चों को पढ़ा लें और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाकर उस बच्चों को वहीं पर रोक दें। क्योंकि जब तक बच्चों का बेस अच्छा नहीं होगा, और बेस तब अच्छा होगा जब बच्चे पहले उस चीज को अच्छे तरीके से टीचर के माध्यम से उसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझेंगे, तब डिजिटल शिक्षा प्रभावी होगी, ना कि केवल डिजिटल शिक्षा पर ही इसको छोड़ दिया जाए।
1: डिजिटल शिक्षा ने शिक्षण को अधिक प्रभावी और छात्राओं के लिए आकर्षक बना दिया है। अब बारी थी उन छात्राओं की जिनके लिए यह योजना बनाई गई है।
3: मेरा नाम शाहिन परवीन है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम PM श्री कंपोजिट स्कूल सराय आलम।
1: आपको डिजिटल क्लास में पढ़ाई करना पसंद आता है?
3: जी, मुझे डिजिटल क्लासेस पढ़ना पसंद आता है।

0: राइटर की जीवनी पढ़नी है तो हम विकिपीडिया में सर्च कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
1: अच्छा, आप ये बताइएगा, आपके यहाँ आपने कंप्यूटर यूज किया है?
0: यूज किया है, हमारे सर ने हमें कंप्यूटर चलाना भी सिखाया है, उसे ऑन करना भी सिखाया है, उसे ऑफ करना भी सिखाया है।
1: छात्राओं के अनुभव से स्पष्ट है कि डिजिटल शिक्षा ने पढ़ाई को रोचक और समझने योग्य बना दिया है। इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमने बात की शिक्षिकाओं से। मैम, आपका नाम?
2: मैं शालिनी रस्तोगी, मैं यहाँ सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ।
1: मैम, क्या आपके स्कूल में डिजिटल शिक्षा के सभी उपकरण उपलब्ध हैं?
2: हाँ जी, हमारे स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल शिक्षा के लिए सारे उपकरण उपलब्ध कराए गए। जैसे डिजिटल शिक्षा के लिए हमारे स्कूल में माइक्रो स्मार्ट बोर्ड भी है, कंप्यूटर्स भी आए हुए हैं। उसके अलावा टीचर्स कई बार सारी क्लासेस को वहाँ ले जाना पहले पॉसिबल नहीं हो पाता था, तो अपने फोन से भी कई बार उन्हें क्लास में बहुत कुछ फोन के थ्रू भी दिखाते हैं टीचर्स।
1: डिजिटल शिक्षा की निगरानी किस तरीके से की जाती है?
2: डिजिटल शिक्षा की निगरानी, एक तो हमारे स्कूल में सपोर्टिव सुपरविजन होते ही रहते हैं, ARP आते हैं, BO सर वगैरह आते हैं, और उसके अलावा जो स्मार्ट बोर्ड है इनमें जो भी हम डेटा यूज कर रहे हैं वो इनबिल्ट ऊपर जाता है। लखनऊ से भी देखा जा सकता है कि हमारे स्कूल में कौन से ऐप के थ्रू क्या पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि यूट्यूब कितने टाइम के लिए यूज किया, हमें हर किसी को बाद में रिफ्रेश करके वहां तक भेजना होता है कि कितना डेटा हमने कौन से ऐप का यूज किया है।
1: क्या ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा को लागू करना कठिन है या फिर नॉर्मल है?
2: लागू करना तो कठिन नहीं है, लेकिन हाँ, जितने उसके फायदे हो सकते हैं उन फायदे को उठाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि गांव में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक तो सबसे बड़ी कई बार कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरा जितने टीचर्स बहुत कम है। जैसे हमारे स्कूल में कंप्यूटर्स तो आ गए, लेकिन टीचर्स का स्टाफ इतना कम है कि सभी क्लासेस को कंप्यूटर का एज यूजुअल यूज कराना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। स्मार्ट बोर्ड भी है, लेकिन एक साथ ही फ्रिक्वेंटली कि स्मार्ट बोर्ड भी चल जाए और क्लास भी प्रॉपर रन होती रहे वो पॉसिबल नहीं है। एक चीज और है, मान लीजिए बड़ा रूम है, हम चाहें तो 2-3 क्लासेस को एक साथ बैठा सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए कंटेंट अलग चाहिए होता है। जो फर्स्ट के लिए बच्चे के लिए रिक्वायर्ड कंटेंट है वो शायद 5th के बच्चे के लिए किसी काम का नहीं है, तो इसीलिए जितना यूज हम कर सकते हैं शायद उनका उतना यूज हम नहीं कर पाते।
3: मेरा नाम सुरभि बारियान, मैं PM श्री कंपोजिट विद्यालय सरायलम में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ।
1: डिजिटल शिक्षा से आपके शिक्षण कार्य में क्या परिवर्तन आया है?
3: सर, डिजिटल शिक्षा से जो हमारे परिवेश के जिस परिवेश में हम अध्यापन कार्य करते हैं उस परिवेश में डिजिटल शिक्षा से बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है बच्चों को और हमें भी, तो बच्चे और अच्छी तरह से और गहराई से डिजिटल शिक्षा के माध्यम से सीख पा रहे हैं।
1: डिजिटल माध्यम से पढ़ाने में आपको कोई विशेष लाभ महसूस हुआ है?
3: डिजिटल शिक्षा से पढ़ाने से सर हमें ये है कि पहले हम केवल किताबों तक सीमित थे, अब हम उनको बच्चे को जो हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं हम उनको अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, LED वगैरह के माध्यम से, कंप्यूटर से हमें उन्हें उनको दिखा सकते हैं।
1: तो आज की इस यात्रा में हमने जाना कि विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा योजना कैसे शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रही है। यह योजना न केवल छात्राओं को अधिक शिक्षा से जोड़ रही है बल्कि उन्हें भविष्य के लिए भी तैयार कर रही है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सामूहिक प्रयासों से इन्हें दूर किया जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि शिक्षा का डिजिटल सफर यूं ही आगे बढ़ता रहे और हर बच्चे तक ज्ञान की रोशनी पहुंचे, मैं अंकुर चौधरी आपसे अनुमति चाहता हूं। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम बात आसपास की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर।

0: गर दिलों में मोहब्बत हो
1: तो मीलों के फासले मिट जाते हैं,
0: रोज न मिलने वाले
1: ख्वाबों में नजर आते हैं।
0: बेहद खास रिश्ता है
1: आपका और हमारा,
0: इसीलिए हर रोज आपसे
1: मुखातिब होने चले आते हैं।
0: और हर रोज की तरह हम आज फिर हाजिर हैं आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। दोस्तों,
1: हमारी आपसे मुलाकात

0: बातों का जरिया बनता है श्रोताओं, आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है और कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के 90 सालों के शानदार सफर को आपके साथ साझा करता है। हर दिन आपके दोस्त इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं।
1: हर दिन आवाजें बदलती हैं, मगर रिश्तों की गर्माहट ज्यों की त्यों रहती है। और आज भी इसी अपनेपन के साथ कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करते हैं आपके साथ ही मैं ताहिर महमूद
0: और मैं अनुपम मिश्रा। तो हम दोनों की ओर से आप सभी श्रोताओं को हमारा स्नेह भरा नमस्कार।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे वर्ष 2022 के आकाशवाणी सफर के बारे में। जानेंगे इस साल आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में और आपको सुनवाएंगे इस वर्ष प्रदर्शित हुई फिल्मों में से कुछ चुनिंदा फिल्मों के यादगार नगमे।
0: वर्ष 2022 एक खास साल इसलिए भी रहा श्रोताओं, क्योंकि बीते दिनों कोविड-19 के मुश्किल वक्त के बाद हमने कुछ राहत सी महसूस की थी, मगर जरूरी सावधानियां अभी भी बरती जा रही थीं।
1: उस वक्त अनुपम ऐसा लगता था कि आखिर कब तक हमें कोविड इन्फेक्शन हो जाने के डर के साथ जीना पड़ेगा।
0: जी हाँ बिल्कुल ताहिर जी, तो वर्ष 2022 के बारे में बातें तो होती ही रहेंगी, मगर आइए कार्यक्रम में थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओ, अभी आपको हमने जो गीत सुनवाया वो था बधाई हो फिल्म से। आवाज़ें थी नेहा कक्कड़ और गुरु रंधावा की, और संगीतकार थे तनिष्क बागची पंजाब।

0: इस गीत के बाद श्रोताओं आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम सुहाना सफर में। आज कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वर्ष 2022 के बारे में।
1: और श्रोताओं, साल 2022 में आकाशवाणी ने 91 नए ट्रांसमीटरों के विस्तार की तैयारी शुरू कर दी थी, जो कि अगले वर्ष यानी 2023 में पूरी हुई।
0: इस दौरान श्रोताओं व्हाट्सएप आधारित फीडबैक सेवाओं और फोन इन कार्यक्रम को बेहद महत्व दिया गया, ताकि अधिक से अधिक आबादी तक कार्यक्रमों का प्रसार हो और श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं मिल सकें।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने ताहिर जी, श्रोताओं की भागीदारी के बिना कार्यक्रम रोचक नहीं बन पाते हैं। साथ ही हम जो कंटेंट लेकर आ रहे हैं वो हमारे श्रोताओं के लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है, इसका भी हमें पता चल जाता है।
0: और अनुपम, इस तरह हम अपने श्रोताओं की जरूरतों के हिसाब से कार्यक्रम पेश कर पाते हैं। व्हाट्सएप और फोन इन कार्यक्रमों के कारण श्रोताओं से हमारा सीधा जुड़ाव, सीधा संबंध जुड़ गया है।
1: हाँ, ये तो है ताहिर जी। वर्ष 2022 में सैनिकों के लिए एक विशेष एपिसोडिक कार्यक्रम FM रेनबो के द्वारा शुरू किया गया था और इसका नाम था वतन के रखवाले।
0: अपने घर परिवार से दूर देश की सेवाओं पर तैनात हमारे फौजी भाइयों के लिए शुरू हुआ ये कार्यक्रम नियमित नहीं था। इसका पहला प्रसारण 11 सितंबर 2022 को किया गया था।
1: ताहिर जी, उस समय महामारी का खतरा बना हुआ ही था, सो साल 2022 में आकाशवाणी के द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए।
0: हाँ अनुपम, ऐसा ही कार्यक्रम प्रतिदिन रात 9:30 पर प्रसारित होता था, जिसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों के कोरोना से जुड़े संदेहों को दूर करते थे।
1: कोविड-19 महामारी के दौरान दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो स्वास्थ्य जागरूकता के अंतर्गत प्रसारित किए जा रहे थे।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब बात करते हैं उन कार्यक्रमों के विषय में जो वर्ष 2022 में बच्चों के लिए प्रसारित किए जा रहे थे। आकाशवाणी का पारंपरिक साप्ताहिक बाल कार्यक्रम था बाल कल्याण, जिसमें कविता, पहेलियां, हास्य कविताएं, नैतिक बाल कहानियां और भजन शामिल होते थे।
1: तो श्रोताओं, बच्चों से जुड़े अन्य कार्यक्रमों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

गंगूबाई काठियावाड़ी, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे नीति मोहन के स्वर में। गीत लिखा था कुमार ने और संगीत था संजय लीला भंसाली का। तो श्रोताओं, इस गीत के बाद कार्यक्रम सुहाना सफर में हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए और

0: मिनट का 52 एपिसोड वाला एक शैक्षिक और जागरूकता भरा कार्यक्रम था जन पहल रेडियो, जो कि प्राइमरी कक्षाओं के लिए प्रसारित किया जाता था।
1: एफएम गोल्ड पर रेडियो किड्स नामक कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाता था। और चलिए अब रुख करते हैं उन कार्यक्रमों की ओर जो साल 2022 में नारी शक्ति को समर्पित थे।
0: जी हाँ श्रोताओं, तो कार्यक्रम घर संसार उस समय सबसे प्रमुख महिला कार्यक्रम था, जो कि घर परिवार, स्वास्थ्य, पोषण व कौशल विकास जैसे विषयों पर आधारित होता था।
1: श्रोताओं, इसके अलावा मुंबई केंद्रों से वनिता मंडल, गाथा स्त्री शक्तिची जैसे कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए। महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं पर समाधान जुटाना, इन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और आत्म गौरव के भाव को उभारना रहा है।
0: और ताहिर जी, आज भी ये परंपरा कायम है। इसी के साथ अब कार्यक्रम में बारी है उन कार्यक्रमों के विषय में चर्चा करने की, जो देश की युवा शक्ति के लिए प्रसारित किए जाते थे।
1: जी बिल्कुल, युवा ही हमारा आने वाला कल है, उनके कंधों पर देश का भविष्य टिका है। तो हम युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों पर चर्चा जरूर करेंगे, मगर अनुपम इस गीत के बाद।
0: बिल्कुल ताहिर जी।

0: शिल्पा राव और अरिजीत सिंह के युगल स्वर में आप सुन रहे थे लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गीत, जो 2022 की फिल्म थी। इस गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन थी प्रीतम की।
1: चलिए श्रोताओं, इस गीत के बाद हम वापस चलते हैं कार्यक्रम सुहाना सफर की ओर, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं साल 2022 के आकाशवाणी सफर के बारे में।
0: तो अनुपम, जैसा कि गीत से पहले हमने कहा था कि हम युवाओं से जुड़े आकाशवाणी पर जुड़े कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे, तो इसी क्रम में हम बात करना चाहेंगे कार्यक्रम युवा भारती की। ये राष्ट्रीय युवा पत्रिका कार्यक्रम था जिसमें युवा स्वतंत्रता सेनानियों, युवा वैज्ञानिकों, कलाकारों और खिलाड़ियों पर विशेष वार्ताएं शामिल होती थीं।
1: साल 2022 के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान जनवरी 2022 में वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम को प्रसारित किया गया। इसके साथ ही 23 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए।
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं, भारत में रेडियो के महत्व से लोगों को अवगत कराया गया। वैसे भी रेडियो का हमारे जीवन में कितना अहम स्थान है, ये हम सब जानते ही हैं।
1: जी हाँ ताहिर जी, देश दुनिया की जानकारी कम समय में हमें मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात कि इसे हम काम करते समय भी सुन सकते हैं।
0: हाँ, ये तो है अनुपम। साल 2022 में भारत ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिन्हें आकाशवाणी ने अपने प्रसारणों के जरिए आम जन के साथ साझा किया।
1: जी हाँ, और सितंबर 2022 में नाबीबिया से लाए गए 8 जंगली चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया।
0: साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इस साल भारत में रामसर साइट्स की संख्या 75 हो गई थी, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा थी।
1: तो ताहिर जी, बातचीत के सिलसिले को थोड़ा सा विराम देते हैं और कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: श्रोताओं, 2022 की फिल्म एक विलेन रिटर्न से ये गीत आपने सुना श्रेया घोषाल के स्वर में। गीतकार थे कुणाल वर्मा और संगीत था कौशिक गुड्डू का। तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम सुहाना सफर संपन्न करने की मुझे ताहिर महमूद को
1: और अनुपम मिश्रा को दीजिएगा अनुमति।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए व्हाट्सएप संदेशों और पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। सभी सुनने वालों को ताहिर महमूद
1: और अनुपम का
0: नमस्कार।

0: दिल्लगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुरैया के स्वर में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और धुन थी नौशाद की। पसंद करते थे आप सब श्रोता। निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली से कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद दानिश और इकराम अली प्रेमी। हलवाईयान कस्बा शेरकोट से इस गीत को पसंद करते थे मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी ख़ान, बिट्टू, साजिदा और चांदनी रानी। ये पत्र आया था दाऊदसराय सहारनपुर से। अनुरोध करने वाले श्रोता थे अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम और अमान साबरी। दोलापुर ज़िला मुरादाबाद से आप थे मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य और सोनी।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते थे नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी।
0: अफगानन शेरकोट जिला बिजनौर से इस गीत को पसंद किया था नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, नाजिमा भी और अलमीर और जन्नत ने।
1: एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हमें मैसेज भेजा था नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी।
0: जसपुर उत्तराखंड से फरमाइश करने वाले श्रोता थे रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, समरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर।
1: सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार वोडाना।
0: ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां अंसारी, निशात, आयशा और मोहम्मद अफ़ान।
1: आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा ने मैसेज हमें भेजा था।
0: और इसी गीत के लिए फरमाइश की थी ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद यादव, रागिनी यादव, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका और रोमिका यादव।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे गेस्ट हाउस फिल्म का गीत। गीतकार थे प्रेम धवन और धुन चित्र गुप्त की थी। इस गीत को सुनना चाहा था आप सब श्रोताओं ने। खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
1: ये हमारे श्रोता थे अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से।
0: जहानाबाद, नजीबाबाद, बिजनौर से आप थे मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जैद, अक्सारानी, इंशा अरीबा, अनाबिया और आयरा।
1: टैगोर गार्डन नई दिल्ली से थे रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से अनुरोध करते थे मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनैन पवार।
1: जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।
0: बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू पूजा रोशनी और अजय गंगराड़े।
1: ये हैं जवाहर नगर।

0: दुर्ग से हमारे श्रोता आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विन और विपुल कांबड़े।
1: ये पत्र आया था अहमदपुर खैगांव खंडवा से। फरमाइश करते थे कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर और वेदिका फूलमाली।
0: गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनंजय कटनकर। साथ ही सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम अभी जारी है और इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 9450782889457078288। दूसरा नंबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 01341230105 01341230105। तो जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में।

0: मेरा साया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले के स्वर में गीतकार थे राजा मेहंदी अली खां और धुन मदन मोहन की थी। इस गीत को पसंद करते थे सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और उनके परिवार के सदस्य, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल,
1: खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो का कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू भाविक सिक्का,
0: छत्रपति संभाजी नगर से फरमाइश करते थे प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि और सुहन बोरगांवकर।
1: ये है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा।
0: बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार।
1: एकता कॉलोनी रोहतक से ये मैसेज हमें भेजा है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तनबी बोत और अंकित कांगड़ा ने।

0: लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में आप सुन रहे थे फारूक कैसर का लिखा गीत। कल्याण जी आनंद जी ने इस गीत की धुन तैयार की थी मदारी फिल्म के लिए। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं नौनिहाल फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना है कैफी आजमी की और धुन मदन मोहन की है, और इन दोनों गीतों की मिलीजुली फरमाइश कुछ इस तरह से है। नेहरू वार्ड यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार और सुनीता मालाकार के साथ मुस्कान मालाकार।
1: ये हैं तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रही मुन्ना और दानिश आसिफ शेख।
0: मेन बाजार नेटोर से एम जुल्फकार राही, एम मुमताज राही, एम जुनैद राही, अल सबा गुल, गुलफिशा रानी, मोहम्मद अयान फरीदी और मोहम्मद कैफ फरीदी।
1: ये हैं गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद।
0: परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम सैफी।
1: इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी।
0: तो आप सब श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे ताहिर महमूद को
1: और अनुपम मिश्रा को दीजिएगा अनुमति।
0: नमस्कार। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है।
1: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

जी हाँ श्रोताओं, कुछ भी मुश्किल नहीं अगर ठान लिया जाए तो। कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, आशा भोसले के स्वर में। फिल्म थी उमराव जान, शब्द रचना शहरयार की थी और संगीत था खयाम का। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है कल की आवाज़। संगीत नदीम श्रवण का है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। कुछ नज़रें ऐसी होती हैं श्रोताओं, जिनमें हमें बेइंतहा प्यार और अपनापन महसूस होता है। उन नज़रों को हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाते हैं।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क

0: देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म अपनापन का गीत। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और उन्हें संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, कहते हैं कि दुनिया एक रैन बसेरा है। आज हम सब यहाँ हैं, पता नहीं कब कौन सा दिन आखिरी हो और हमें यहाँ से जाना पड़े, लेकिन इस आने और जाने के बीच में हम बहुत सारी यादें छोड़कर जाते हैं। तो कोशिश करें वो यादें ऐसी हों जो किसी को हौसला दें, प्रेरणा दें और हमें एक अच्छे इंसान के रूप में लोग याद रख सकें।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म अपनापन का ये गीत। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना आनंद बख्शे की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म जैसे को तैसा का ये नगमा। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है RD बर्मन ने। खुदा की सूरत और ममता की मूरत होती है माँ, जब छोड़कर दूर चली जाए तो हर पल याद आती है माँ, क्योंकि कभी दोबारा नहीं मिलती माँ।

जैसे को तैसा। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन तैयार की थी आरडी बर्मन ने। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं नितिन मुकेश के स्वर में फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने। हम जो देते हैं वही मिलता है, हमारा हर कर्म हम तक वापस आता है। अब हम फूल चाहते हैं या कांटे, ये हम पर ही निर्भर करता है।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अब पेश है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान

0: उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
1: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
0: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
0: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
1: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल, ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन तथ्य कुछ और है
1: जी।
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे?
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है

0: यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें, पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात, अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात यह है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती, ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है,
1: जी
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
1: जी
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे,
1: जी
0: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को

0: आप CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मोंसिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन

0: देखो मुझे पास्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पास्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
1: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
0: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
1: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
0: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पास्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो,
4: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
2: लुई पास्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
5: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो
7: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
8: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पास्चर घबरा गए।
5: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पास्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
5: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पास्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठा पटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पास्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
5: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पास्चर को बुलाया और कहा,
9: लुई पास्चर
10: सर,
9: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
10: कहिए सर।
9: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
10: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा
3: कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
9: ठीक है।
5: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पास्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
2: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
5: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
2: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
5: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
2: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
5: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
2: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
5: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
2: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
5: तो फिर उन्होंने क्या किया?
2: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
10: अरे आजा आजा आजा। हाँ, इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी, और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
5: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
11: सर, सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
11: क्या हुआ सर?
3: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
11: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
11: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
5: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
2: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
1: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
1: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
3: देखिए आप,
1: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
3: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ अब...
1: मेरा
3: अच्छा,
1: बेटा।
3: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
5: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
2: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
5: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
2: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
5: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
2: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
5: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
3: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
5: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल. ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन.
12: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है. तो मुझे यानी अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए. नमस्कार.
13: उमंग उमंग उमंग उमंग.
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग. हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर. श्रोताओं, दिन के 12 बजे हैं. लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण.

श्रोताओं, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आज रात 10 बजे सुनिएगा राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी गोरखपुर की होगी। रात 9:30 पर आप सुनेंगे पर्यावरण पर विशेष कवि गोष्ठी, जिसमें संचालन लक्ष्मी डबराल का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगी अंकित सैनी। शाम 6:45 पर आज हम आपको सुनवाएंगे रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मशहूर शायर सैयद एजाजुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेरठी से विशेष भेंटवार्ता।

कार्यक्रम सुगम संगीत में शाम 7:32 पर सुनिएगा शीलाधर की आवाज में चंद गजलें। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। इसके अंतर्गत श्रोताओं आप सुनेंगे बासमती धान के रोपाई विषय पर डॉक्टर रितेश शर्मा से प्रमोद सिंह की बातचीत। कार्यक्रम छाया गीत का समय रहेगा संध्या 6:55।

शाम 5 बजे सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम महिला जगत में सुनिएगा सरिता राजपूत का काव्य पाठ। युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युवावाणी का समय रहेगा शाम 5:15।

दिन में 2:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज कलाकार होंगी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज दिन में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे अनीता रावत के गाए गढ़वाली लोकगीत। रात 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 12:05 हुए हैं। पेश है सैनिक भाइयों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म जिगरी दोस्त का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम में पेश है अगला गीत अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में। शब्द रचना रविंद्र रावल की है और धुन तैयार की है बाबुल बोस ने।

जीना तेरी गली में। सैनिक भाइयों, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे रविंद्र रावल ने और उन्हें संगीत से सजाया था बाबुल बोस ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है आशा। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म आशा में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और सैनिक भाइयों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म कुदरत का ये नगमा। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और संगीत है RD बर्मन का।

ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपने देश के सैनिकों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। और हम कोशिश करते रहेंगे सैनिक भाइयों की आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे गीत लेकर आते रहें, और आप यूं ही सीमा पर तैनात रहकर देश की सेवा कर सकें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज का कार्यक्रम संपन्न करने की सैनिक भाइयों हमें दीजिएगा अनुमति। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे सैनिक भाइयों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था हम हैं राही प्यार के। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और धुन तैयार की थी नदीम श्रवण ने। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत एक बार फिर है नदीम श्रवण और साथ में है उत्तम सिंह।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह।

0: www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिडडे मेलोडी। कार्यक्रम की अगली पेशकश है श्रोताओं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है दिलवाले। शब्द रचना समीर की है और संगीत है नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म दिलवाले का ये गीत। आवाज़ें थीं कुमार सानू और अलका याग्निक की, शब्द रचना समीर की थी और संगीत था नदीम श्रवण का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और उन्हें संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था जतिन ललित का। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं पंकज उधास के स्वर में फिल्म साजन का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और उन्हें संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। बहुत मुश्किल होता है जीना बगैर उनके, जो या तो जिंदगी से चले जाते हैं या फिर दुनिया से। उनके जाने के बाद दिल से बस यही आवाज़ निकलती है,

0: मिड डे मेलोडी। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यम

0: डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship scheme in New Delhi today, the President said true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally. She highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities.
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: The Ministry of Home Affairs has notified the Immigration and Foreigners Amendment

0: में से ही समाप्त हो गई है, जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अफसरान को अहकाम देते हुए कहा कि हुकूमत की बहबूदी स्कीमों का फायदा हर अहल अफराद तक पहुंचना यकीनी किया जाए। कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुनक्किद जनता दर्शन में तकरीबन 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी दिक्कतें सुनी। दिक्कतें सुनने के बाद वजीर आला ने दरख्वास्तों के तस्वीर के लिए मुतल्लिका अफसर और पुलिस अफसरान को अहकाम दिया कि सभी दिक्कतों का तस्वीर मुकर्रर वक्त में मुनसिफाना और पुर इत्मीनान होना चाहिए। मुल्क में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास प्रिंसिपल के तहत गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल जिक्र तब्दीली हुई है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों की बहबूद और बाइख्तियार बनाने के लिए कई जरूरी पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार गुज़िश्ता 12 सालों में खसूसी शोबे में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। आज खवातीन बाइख्तियारी की सिमत में हुई कोशिशों पर एक खसूसी रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को मौजूदा पेन और पेपर की जगह कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहान मुनक्किद करने का मतालबे वाली अर्जी खारिज कर दी है। अदलिया ने कहा है कि कंप्यूटर मबनी री एग्जाम मुनक्किद करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इम्तिहान रद्द होने के बाद से कौमी एग्जाम एजेंसी पहले से ही चैलेंजेस का सामना कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल सिविल पुलिस और उसके मसावी ओहदों के लिए तहरीरी इम्तिहान 8, 9 और 10 जून को मुख्तलिफ अजला में मुतय्यन मराकज पर मुनक्किद होंगे। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज एडिशनल सेक्रेटरी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड ने बताया कि ये इम्तिहान 2 शिफ्टों में मुनक्किद होंगे। 32,000 से ज्यादा ओहदों के लिए इस भर्ती से मुतालिक तफसीली मालूमात बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब कर दी गई है। लखनऊ मेट्रो भी अब वन नेशन वन कार्ड ला रहा है। इस कार्ड के होल्डर मुल्क के किसी भी शहर में चल रहे मेट्रो में सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने कार्ड में बैलेंस रखना होगा। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसी पखवाड़े में नया कार्ड लॉन्च करेगा। आज ज्येष्ठ महीने का 5वां बड़ा मंगल है। लखनऊ के अलीगंज वाके पुराना हनुमान मंदिर, नया मंदिर हनुमान सेतु, हनुमंत धाम, हजरतगंज वाके दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर समेत मुख्तलिफ मंदिरों में सुबह से अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वैड ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के इल्जाम में आजमगढ़ से एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ दहशतगर्दाना तंजीम हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। और महकमे मौसमियात ने रियासत के मगरबी अजला में 4 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक इस दौरान रियासत के मशरकी अजला में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे ने आने वाले दिनों में रियासत में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफे की भी पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली सभी बहनों को भावना कौशिक का प्यार भरा नमस्कार। बहनों कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूं कि हमारी सारी बहनें स्वस्थ होंगी और खुश होंगी। चलिए बहनों, इस शुभ कामना और इस शुभ भावना के साथ आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहनों सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि आज यानी 2 जून को हर साल तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह दिन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि और राज्य के निर्माण के लिए किए गए 10 को लंबे संघर्ष की भी याद दिलाता है। इसीलिए इस दिन को भारत के तेलंगाना राज्य में हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। बहनों आजकल मौसम बहुत बदल रहा है, कभी बारिश, कभी तूफान, कभी गर्मी। ऐसे मौसम में अधिकतर स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अपना, अपने परिवार का, अपने घर का भी। अरे हाँ बहनों, आपने इको फ्रेंडली घर के बारे में तो जरूर सुना होगा। इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण अनुकूल घर। बहनों घर बनाने का अर्थ है ऐसे घर का निर्माण करना जो ऊर्जा की कम खपत करे, प्राकृतिक संसाधनों को बचाए और पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसे कम सीमेंट, प्रकृति सामग्री जैसे लकड़ी, मिट्टी, सोलर एनर्जी और बेहतरीन वेंटिलेशन के उपयोग से आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें हम ऊर्जा कुशल LED बल्बों का उपयोग कर सकते हैं, पानी बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एरेटर लगाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कचरे के लिए कंपोस्ट बिन का प्रयोग करें और घर के तापमान को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रखने के लिए 3 टायर या 5 स्टार उपकरणों का इस्तेमाल करें। बहनों इको हाउस पर्यावरण पर कम प्रभाव डालने वाला घर होता है, जिसे ऐसे पदार्थों और तकनीक का उपयोग करके डिजाइन और निर्मित किया जाता है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं और ऊर्जा की आवश्यकताओं को घटाते हैं। आपके इस घर के प्रत्येक भाग जैसे कि छत सामग्री, भवन निर्माण सामग्री, अलमारियां, काउंटर और फर्श को पर्यावरण के अनुकूल होना होता है। और बहनों जब हमारा घर हमारे अनुकूल होगा तो उसका प्रभाव भी हमारे तन और मन दोनों पर जरूर पड़ेगा। हम साफ सुथरे प्राकृतिक रूप से सक्षम घर में रहेंगे तो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे और हर काम को एनर्जी से करेंगे जिसका रिजल्ट भी बढ़िया ही आएगा। तो बहनों क्या इरादा है आपका इको फ्रेंड घर के बारे में? मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनें अपने घर को इको फ्रेंडली जरूर बनाएंगी और इस घर के फायदों का भरपूर लाभ भी उठाएंगी। तो बहनों ये तो कुछ बातें की हमने इको फ्रेंडली घर के बारे में, और आइए अब सुनते हैं कुछ संदेश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: चंदन का एहसास।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: बहनों, जीवन में संगीत अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिना संगीत के हम एक उत्साहवर्धक जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। संगीत हमारा मनोरंजन तो करता ही है, साथ ही हमारे तन और मन को एक अद्भुत शक्ति व शांति भी प्रदान करता है। आप भी ये सोच रही होंगी कि हम आखिर संगीत की बातें क्यों कर रहे हैं। तो बहनों, आज हम अपने आदि आबादी क्रम में भारत की महान कर्नाटक शास्त्रीय गायिका M.S. सुबोलक्ष्मी के बारे में बात करेंगे। बहनों, सुबोलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक संगीत गायिका थी। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार और 1974 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार भी थी। वह 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय थी।

बहनों, सुबलक्ष्मी परिवार में कुजम्मा के नाम से जानी जाती थी। इनका जन्म 16 सितंबर 1916 को मद्रास एसिडेंसी के मुदेर में वीणा वादक शनमुख वादिवर अम्माल और सूत्रमणिया अय्यर के घर में हुआ था। इनकी दादी भी एक वादक थी।

श्रोता बहनों, उन्होंने कम उम्र में ही कर्नाटक संगीत सीखना शुरू कर दिया था और सेम गुंडी श्री निवास अय्यर के मार्गदर्शन में कर्नाटक संगीत का प्रशिक्षण लिया तथा बाद में पंडित नारायण राव व्यास के मार्गदर्शन में हिंदुस्तानी संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनकी माँ देवदासी समुदाय से थी, जो संगीत की एक कुशल गायिका और नियमित मंच कलाकार भी थी। एम एस सुबलक्ष्मी को जन्म से ही संगीत में माहौल प्राप्त हुआ।

बहनों, सुबोलक्ष्मी ने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 11 वर्ष की आयु में वर्ष 1927 में तिरुचापल्ली के रॉकफोर्ट मंदिर के भीतर स्थित 100 स्तंभों वाले हॉल में दी। बहनों, 1936 में सुबोलक्ष्मी मद्रास चली गईं। उन्होंने 1938 में सेवा सदन में अपनी फिल्म की शुरुआत भी की। श्रोता बहनों, सुबोलक्ष्मी ने 1929 में जब वह 13 वर्ष की थी प्रतिष्ठित मद्रास संगीत अकादमी में अपना पहला प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में उन्होंने भजन गाए। अकादमी अपनी चुनिंदा चयन प्रक्रिया के लिए जानी जाती। उन्होंने एक युवा लड़की को मुख्य कलाकार के रूप में आमंत्रित करके परंपरा को तोड़ा। उनके प्रदर्शन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला बताया गया। इससे उन्हें कई प्रशंसक मिले और कई आलोचकों ने उन्हें संगीत प्रतिभा का उपनाम दिया। अपने पहले प्रदर्शन के तुरंत बाद सुबोलक्ष्मी प्रमुख कर्नाटक गायिकाओं में से एक बन गई। मैंने 17 वर्ष की आयु तक सुबोलक्ष्मी अकेले ही संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने लगी थी, जिसमें मद्रास संगीत अकादमी में प्रमुख प्रदर्शन भी शामिल थे। सांस्कृतिक राजदूत के रूप में उन्होंने लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा, पूर्व और अन्य स्थानों की यात्रा। 1963 में एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नाटक महोत्सव कारिंगी हॉल न्यूयॉर्क, 1966 में महासभा, 1982 में रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन और 1987 में मास्को में फेस्टिवल ऑफ इंडिया में उनके संगीत कार्यक्रम उनके कैरियर में महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे। बेंगलोर स्थित श्री राम सेवा मंडली के साथ उनके बहुत घनिष्ठ संबंध थे, जिनके लिए उन्होंने 36 संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 1997 में अपने पति के निधन के बाद उन्होंने सभी सार्वजनिक संगीत कार्यक्रमों से संन्यास ले लिया। उनका अंतिम प्रदर्शन 1997 में ही हुआ था। M.S. सुबोलक्ष्मी ने अपनी युवावस्था में 4 तमिल फिल्मों में भी अभिनय किए। बहनों, इनका निधन 11 दिसंबर 2004 को चेन्नई के कोडमटूर स्थित उनके घर पर हुआ।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी आधी आबादी के अंतर्गत कर्नाटक शास्त्रीय गायिका विदुषी M.S. सुब्बलक्ष्मी के बारे में। बहनों, जैसे संगीत के माध्यम से हमारा मनोरंजन होता है या हम अपने भाव को उजागर करते हैं, उसी तरह हम कविताओं के माध्यम से भी अपने दिल की भावनाओं को बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, जिसका प्रभाव सुनने वाले पर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए अब सुनते हैं काव्य पाठ, और हमारे आज के काव्य पाठ की कवित्री हैं सरिता राजपूत। मैं ही मेरी ताकत हूं, मैं ही मेरी पहचान, मैं ही मेरी ताकत हूं, मैं ही मेरी पहचान, खुद से जो

से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। प्रस्तुत है मेरी पहली कविता, जिसका शीर्षक है खुद से मोहब्बत। मैं जैसी हूं वैसी ही सही हूं, अब खुद से मैं ये कहती हूं, दुनिया की बातों में आकर क्यों खुद को खो देती हूं। मैं जैसी हूं वैसी ही सही हूं, अब खुद से मैं ये कहती हूं, दुनिया की बातों में आकर क्यों खुद को खो देती हूं। अब सीखा है मैंने जीना, खुद को पहले अपनाना है, जो हूं उसी में खुश रहकर अपना संसार सजाना है। अब सीखा है मैंने जीना, खुद को पहले अपनाना है, जो हूं उसी में खुश रहकर अपना संसार सजाना है। कभी रोई कभी संभली हूं, हर दर्द से कुछ सीखी हूं, पर गिरकर भी मुस्कुराना मैंने खुद ही सीखा है। कभी रोई कभी संभली हूं, हर दर्द से कुछ सीखी हूं, पर गिरकर भी मुस्कुराना मैंने खुद से सीखा है। आईने में जो चेहरा दिखता, अब उससे प्यार करूंगी मैं, कमी हो या खूबी मुझ में सबको स्वीकार करूंगी मैं। आईने में जो चेहरा दिखता, अब उससे प्यार करूंगी मैं, कमी हो या खूबी मुझ में सबको स्वीकार करूंगी मैं। अब ना खुद को कम आंकूंगी, ना ही खुद से मैं हारूंगी, अपने सपनों की राहों पर हर मुश्किल से लड़ जाऊंगी। अब ना खुद को कम आंकूंगी, ना ही खुद से मैं हारूंगी, अपने सपनों की राहों पर हर मुश्किल से लड़ जाऊंगी। मैं ही मेरी ताकत हूँ, मैं ही मेरी पहचान, खुद से जो प्यार किया मैंने तो जीत गई मैं हर अरमान। मैं ही मेरी ताकत हूँ, मैं ही मेरी पहचान, खुद से जो प्यार किया मैंने तो जीत गई मैं हर अरमान। श्रोताओं, मेरी अगली कविता का शीर्षक है सादगी भरी अदाएं। वो हल्की सी मुस्कान जैसे सुबह की पहली किरण, आंखों में सुकून जैसे ठहरा हुआ सा गगन। वो हल्की सी मुस्कान जैसे सुबह की पहली किरण, आंखों में सुकून जैसे ठहरा हुआ सा गगन। फूलों की खुशबू पास आकर थम गई, हवा भी धीरे से उसके आंचल में सिमट गई। फूलों की खुशबू पास आकर थम गई, हवा भी धीरे से उसके आंचल में सिमट गई। कुछ तो बात थी उसकी सादगी भरी अदाओं में, दिल खो सा गया उसकी शांत निगाहों में। कुछ तो बात थी उसकी सादगी भरी अदाओं में, दिल खो सा गया उसकी शांत निगाहों में। ना कोई शोर ना कोई बनावट का रंग, बस मासूमियत से भरा उसका हर एक ढंग। ना कोई शोर ना कोई बनावट का रंग, बस मासूमियत से भरा उसका हर एक ढंग। वो मुस्काई तो लगा जैसे दुआ मिल गई, सूनी सी धड़कनों को कोई वजह मिल गई। वो मुस्काई तो लगा जैसे दुआ मिल गई, सूनी सी धड़कनों को कोई वजह मिल गई। चेहरे की नरमी आंखों की वो चमक, जैसे चांदनी उतर आई हो बनकर महक। चेहरे की नरमी आंखों की वो चमक, जैसे चांदनी उतर आई हो बनकर महक। वो तस्वीर नहीं एक एहसास सी लगी, जैसे थकी हुई जिंदगी को सांस सी मिली। वो तस्वीर नहीं एक एहसास सी लगी, जैसे थकी हुई जिंदगी को सांस सी मिली। उसकी एक झलक ने दिल को छू लिया, जैसे खामोशी ने कोई गीत बुन लिया। उसकी एक झलक ने दिल को छू लिया, जैसे खामोशी ने कोई गीत बुन लिया। वो हल्की सी मुस्कान जैसे सुबह की पहली किरण, आंखों में सुकून जैसे ठहरा हुआ सा गगन। श्रोताओं, मेरी इस कविता का शीर्षक है इतनी भी मजबूर नहीं। किसी के आगे झुकना मुझे मंजूर नहीं, किसी के आगे झुकना मुझे मंजूर नहीं, मैं खुद की नजरों में गिर जाऊं ये भी तो दस्तूर नहीं। किसी के आगे झुकना मुझे मंजूर नहीं, मैं खुद की नजरों में गिर जाऊं ये भी तो दस्तूर नहीं। जो साथ चले इज्जत से वही अपना है, वरना भीड़ मुझे इकट्ठा करनी नहीं। जो साथ चले इज्जत से वही अपना है, वरना भीड़ मुझे इकट्ठा करनी नहीं। मैं खामोश हूं तो ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरे हौसले मुझे याद हैं उन्हें मैं भूली नहीं। मैं खामोश हूं तो ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरे हौसले मुझे याद हैं उन्हें मैं भूली नहीं। अब जो खोना है खो जाए, पर ये तय है मैं खुद से समझौता कर लूं इतनी भी मजबूर नहीं। अब जो खोना है खो जाए, पर ये तय है मैं खुद से समझौता कर लूं इतनी भी मजबूर नहीं। किसी के आगे झुकना मुझे मंजूर नहीं, मैं खुद की नजरों में गिर जाऊं
ये भी तो दस्तूर नहीं, किसी के आगे झुकना मुझे मंजूर

0: नहीं मैं खुद की नजरों में गिर जाऊं, ये भी तो दस्तूर नहीं। श्रोताओं सुनिए मेरी अगली रचना, जिसका शीर्षक है नारी का सम्मान। नारी केवल नाम नहीं है, सृष्टि की आधारशिला है। नारी से संसार सजा है, नारी भाग्य विधाता है। नारी केवल नाम नहीं है, सृष्टि की आधारशिला है। नारी से संसार सजा है, नारी भाग्य विधाता है। ममता बनकर झुकी कहीं तो दुर्गा बन ललकार उठी, जब जब अन्याय बढ़ा जग में शक्ति बनकर ढाल बनी। ममता बनकर झुकी कहीं तो दुर्गा बन ललकार उठी, जब जब अन्याय बढ़ा जग में शक्ति बनकर ढाल उठी। वो बेटी है बहना भी है, वो बेटी है बहना भी है, माँ बनकर संसार भरे। उसके आंचल में कितने ही टूटे मन आकार धरे। वो बेटी है बहना भी है, माँ बनकर संसार भरे। उसके आंचल में कितने ही टूटे मन आकार धरे। जिस घर में सम्मान मिले वो घर मंदिर बन जाता है, जिस घर नारी रोती हो सौभाग्य वहां सो जाता है। जिस घर में सम्मान मिले वो घर मंदिर बन जाता है, जिस घर नारी रोती हो सौभाग्य वहां सो जाता है। उसको कमतर आक रहे, उसको कमतर आक रहे जो वे इतिहास न पढ़ पाए, नारी के कदमों ने ही तो कितने युग आगे बढ़वाए। उसको कमतर आक रहे जो वे इतिहास न पढ़ पाए, नारी के कदमों ने ही तो कितने युग आगे बढ़वाए। नारी केवल नाम नहीं है, सृष्टि की आधारशिला है। नारी केवल नाम नहीं है, सृष्टि की आधारशिला है। श्रोताओं इस काव्य पाठ की मेरी अगली रचना का शीर्षक है सफलता। ऊंचा उड़ना है तो पहले पांव जमी पर रखना सीखो। ऊंचा उड़ना है तो पहले पांव जमी पर रखना सीखो। मीठा फल पाना है तो फिर तेज धूप में तपना सीखो। ऊंचा उड़ना है तो पहले पांव जमी पर रखना सीखो। मीठा फल पाना है तो फिर तेज धूप में तपना सीखो। सफल वही जो हार मिली तो रुकना कभी न जाने। पत्थर कितने राहों में हो फिर भी आगे बढ़ना जाने। सफल वही जो हार मिली तो रुकना कभी न जाने। पत्थर कितने राहों में हो फिर भी आगे बढ़ना जाने। नींद चुरा कर सपनों को जो जाग जाग कर सींचेगा, एक दिन मेहनत का सूरज सिर पर उसके चमकेगा। नींद चुरा कर सपनों को जो जाग जाग कर सींचेगा, एक दिन मेहनत का सूरज सिर पर उसके चमकेगा। किस्मत केवल नाम नहीं कर्मों से लिखी जाती है, जो खुद अपना दीप बने उसे दुनिया शीश झुकाती है। किस्मत केवल नाम नहीं कर्मों से लिखी जाती है, जो खुद अपना दीप बने उसे दुनिया शीश झुकाती है। आज अगर संघर्ष बड़ा है कल उतना बड़ा सम्मान मिलेगा। मेहनत जितनी आज करोगे कल उतना ऊंचा मान मिलेगा। आज अगर संघर्ष बड़ा है कल उतना सम्मान मिलेगा। मेहनत जितनी आज करोगे कल उतना ऊंचा मान मिलेगा। ऊंचा उड़ना है तो पहले पांव जमी पर रखना सीखो। मीठा फल पाना है तो फिर तेज धूप में तपना सीखो। श्रोताओं मेरी अगली कविता का शीर्षक है मोहब्बत शोर नहीं करती। मोहब्बत शोर नहीं करती, ये तो चुपचाप दिल में घर बना लेती है। किसी की एक मुस्कान से शुरू होकर पूरी दुनिया उसी में समा लेती है। मोहब्बत शोर नहीं करती, ये तो चुपचाप दिल में घर बना लेती है। किसी की एक मुस्कान से शुरू होकर पूरी दुनिया उसी में समा लेती है। नॉर्मल सी बातों में भी खासियत आ जाती है। नॉर्मल सी बातों में भी खासियत आ जाती है, उसका नाम सुनते ही धड़कन बढ़ जाती है। बिना वजह फोन देखने का मन करता है और हर छोटी सी खुशी भी बड़ी लग जाती है। नॉर्मल सी बातों में भी खासियत आ जाती है, उसका नाम सुनते ही धड़कन बढ़ जाती है। बिना वजह फोन देखने का मन करता है और हर छोटी खुशी भी बड़ी लग जाती है। मोहब्बत में कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं होती, बस साथ चलने की चाहत होती है। वो थका हो तो हाल पूछने का दिल करे, वो चुप हो तो मिलने की चाहत बन जाती है। मोहब्बत में कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं होती, बस साथ चलने की चाहत होती है। वो थका हो तो हाल पूछने का दिल करे, वो चुप हो तो मिलने की चाहत बन जाती है। कभी रूठना कभी मनाना अच्छा लगता है, कभी रूठना कभी मनाना अच्छा लगता है, उसकी फिक्र में खुद को भुलाना अच्छा लगता है। ना कोई वादा ना कोई बड़ी बात, बस उसका ख्याल रखना सबसे अच्छा लगता है। कभी रूठना कभी मनाना अच्छा लगता है, उसकी फिक्र में खुद को भुलाना अच्छा लगता है। ना कोई वादा ना कोई बड़ी बात, बस उसका ख्याल रखना सबसे अच्छा लगता है। शायद यही मोहब्बत होती है जिसमें दिखावा नहीं बस अपनापन होता है। दो लोग चुपचाप एक दूसरे में सिमट जाते हैं और दिल कहता है यही तो प्यार है जो हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं बसता है। शायद यही मोहब्बत होती है जिसमें दिखावा नहीं बस अपनापन होता है। दो लोग चुपचाप एक दूसरे में सिमट जाते हैं और दिल कहता है यही तो प्यार है जो हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं बसता है। श्रोताओं, इसी के साथ अपने काव्य पाठ को मैं यहीं विराम देती हूँ। सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद।
1: अभी हमारी बहनें सुन रही थी काव्य पाठ। कवित्री थी सरिता राजपूत। और बहनों आइए अब करते हैं थोड़ा मनोरंजन और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

और बहनों, चलते चलते आपको कार्यक्रम का पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 246763। और व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिएगा 9457078288। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम लोकधारा में इस समय आप सुन रहे हैं अनीता रावत के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। पेश है कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे अनीता रावत के गाए गढ़वाली लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार, पहले अंग्रेजी में तत्पश्चात हिंदी में।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। Headlines. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social

0: में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान

ही कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम एक ही कलाकार में। और आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। जी हाँ, हमारी आज की कलाकार हैं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी साल 2012 से 2017 और 2019 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल रही हैं। जानवरों के लिए उनके लगाव के कारण ही साल 2022 में उन्हें पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। वो कुत्तों और बिल्लियों को गोद लेने और उनकी नसबंदी कराने की वकालत करती हैं ताकि इनकी संख्या सीमित रहे और इन्हें बेघर होकर सड़कों पे ना घूमना पड़े। तो सोनाक्षी सिन्हा के बारे में और भी बातें होंगी मगर इस गीत के बाद।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा

0: मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashvaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओ, कार्यक्रम एक ही कलाकार आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके पारिवारिक और शुरुआती जीवन के विषय में। तो सोनाक्षी सिन्हा का जन्म, श्रोताओं, 2 जून 1987 को मुंबई में हुआ था। पिता हैं हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा और माँ हैं पूनम सिन्हा, जो कि अभिनय से जुड़ी रही हैं। सोनाक्षी के 2 जुड़वा भाई हैं लव और कुश। सोनाक्षी की स्कूली पढ़ाई मुंबई के आर्य विद्या मंदिर से हुई और उन्होंने श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर यानी SNDT महिला महाविद्यालय से फैशन डिजाइनिंग में स्नातक किया। और श्रोताओं, सोनाक्षी सिन्हा को उनके परिवारजन सोना कहकर बुलाते हैं। सोनाक्षी ने अपने करियर की शुरुआत कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में की थी। चूंकि अभिनय उनकी रगों में दौड़ रहा था श्रोताओं, सो साल 2010 में ब्लॉकबस्टर फिल्म दबंग से उन्होंने अपने अभिनय सफर की शुरुआत की। फिल्म हिट रही और सोनाक्षी को फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार मिला।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। सोनाक्षी ने साल 2012 में राउड़ी राठौर, सन ऑफ सरदार, दबंग 2 और साल 2014 में हॉलीडे जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। सन 2013 में फिल्म लुटेरा में अपने संजीदा अभिनय से आलोचकों और दर्शकों सभी का दिल उन्होंने जीत लिया। साल 2024 में उन्होंने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में मुख्य किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया।

तो श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म हॉलीडे का ये गीत, और आज हम बात कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। तो साल 2025 में सोनाक्षी के भाई कुश के निर्देशन में एक फिल्म बनी थी, निकिता रॉय, जिसमें कि सोनाक्षी ने एक लेखिका की मुख्य भूमिका को निभाया था। सोनाक्षी सिन्हा ना सिर्फ एक अच्छी कलाकार ही हैं श्रोताओं, बल्कि बेहद मजबूत इरादों वाली महिला भी हैं। इसका एग्जाम्पल इस बात से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म दबंग के लिए अपना 30 किलो वजन घटाया था। 30 किलो वजन घटाना काफी मुश्किल हो जाता है श्रोताओं, मगर मन में कुछ करने का ठान लिया जाता है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। और अगर आप भी बढ़े हुए वजन से परेशान हैं तो आप हिम्मत बिल्कुल भी ना हारें और अपने प्रयासों को जारी रखें। और अब कार्यक्रम में वक्त है एक और गीत का।

श्रोताओं, सोनाक्षी सिन्हा एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक अच्छी सिंगर भी हैं। उनका गाया हुआ पहला गीत साल 2015 में रिलीज हुआ था। इसके अलावा उन्होंने तेवर, अकीरा, नूर और हैप्पी भाग जाएगी जैसी फिल्मों के लिए भी गीत गाए हैं। श्रोताओं ने सोनाक्षी ने 23 जून साल 2024 को जहीर इकबाल से विवाह किया। सोनाक्षी ने 2013 में खुद का घर भी खरीद लिया। पेंटिंग और ट्रैवलिंग की शौकीन अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और कार्यक्रम आज का अब यहीं संपन्न होता है और चलते चलते पेश है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

श्री सिन्हा। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारे सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। श्रोताओं नमस्कार, रिश्ता ये खास है। आज ये कार्यक्रम लेकर आपके साथ मैं हूं ममता अग्रवाल। साथियों, समय की धारा जो प्रवाहमान रहती है निरंतर, इस धारा में होती हैं कुछ ध्वनियां जो कभी पुरानी नहीं पड़ती हैं। आकाशवाणी यानी जन जन की वाणी, मधुर प्रभावी और वक्त के साथ चलती वो आवाज़ जो पीढ़ियों के दिलों में आज भी गूंजती है। सुनते सुनाते बीता है 90 वर्षों का ये स्वर्णिम सफ़र। ये केवल तकनीकी विकास की कहानी नहीं है, बल्कि ये संजोई है भावनाओं, यादों और आत्मीय जुड़ाव का अद्भुत इतिहास। साथियों, भरोसे की गूंज के ये 90 बरस जो पूरे होने को हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे श्रोताओं का, और श्रोताओं के विचार, उनके अनुभव हम साझा करते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से। इसी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान हैं जिनका जुड़ाव आकाशवाणी के साथ एक श्रोता के रूप में होने के साथ साथ एक प्रस्तुतकर्ता के रूप में भी है, और वो हैं निर्देश त्यागी जी। तो आइए जानते हैं रेडियो से उनके जुड़ाव की कहानी उनकी अपनी जुबानी। निर्देश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, और अपने श्रोताओं को और आकाशवाणी परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां अपना 90 वर्षों का स्वर्णिम सफर पूरा करने के लिए।
0: जी निर्देश जी, अगर हम बात करें कि आपका कार्यक्रम सुनने और प्रस्तुत करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आप आकाशवाणी से केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, बल्कि बहुत लंबे अंतराल तक एक प्रस्तुतकर्ता के रूप में भी जुड़ी रहीं, तो ये सिलसिला किस कार्यक्रम से और कब से शुरू हुआ, थोड़ा सा हमें बताइए।
1: ममता जी, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तब की है जब आकाशवाणी का अर्थ ही नहीं पता था। आकाश का मतलब पता था आसमान होता है, वाणी का मतलब पता था स्वर होता है, लेकिन जब बाबा जी अपना रेडियो सुनते थे और उसमें आता था ये आकाशवाणी, तो हम सोचते थे आसमान की तरफ देखकर कि आकाश से तो आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो रेडियो से आ रही है, तो ये आकाशवाणी कैसे हुआ। लेकिन जब बड़े हुए तो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहां राह निकल आती है। तो पिताजी का ट्रांसफर नजीबाबाद हुआ और हमें आकाशवाणी से जुड़ने का मौका मिला। और जो मेरा पहला कार्यक्रम था वो था युवाओं का, उस समय बहुत ही एक प्रचलित, बहुत ही मनभावन कार्यक्रम हुआ करता था, मेरी पसंद।
0: जी बिल्कुल,
1: हाँ, उसकी जो हमें भुगतान हुआ था 35 रुपए था, तो वो पहला कार्यक्रम था मेरी जिंदगी का, और मैंने अपने आप को बहुत खास समझा था उस कार्यक्रम को देखकर।
0: निर्देश जी, आपने जिक्र किया उस वक्त के वो 35 रुपए का, वो 35 रुपए आपके लिए कितने अनमोल रहे होंगे।
1: भाई, वो चेक मेरे लिए दिल संभाल के रखने वाली बात थी।
0: जी, हाँ, बिल्कुल।
1: और उसके बाद तो कहते हैं ना कि वो परिवार बन गया आकाशवाणी, और जितने भी ऑडिशन हुए, चाहे वो एक नाटक की प्रतिभागिता रही हो या रुहेलखंडी लोकगीत कलाकार के रूप में हमने प्रतिभागिता अपनी देते आए हैं, और साथ ही साथ जैसे कि कृषि जगत है, महिला जगत है और बालमंडल, इन विभागों में मैंने करीब 28 से 30 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं कंपेयर के रूप में।
0: बहुत खूब निर्देश जी, बहुत लंबा अंतराल आपने आकाशवाणी के साथ अपना पूरा किया है, और आज भी आप एक श्रोता के रूप में जुड़ी हुई हैं। साथियों, आकाशवाणी का भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो भारत के स्वाधीनता संग्राम के विषय में रहा हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर मनोरंजन के क्षेत्र में। हर जगह, हर वक्त आकाशवाणी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्या कहेंगी आप इस विषय में?
1: बिल्कुल, देखिए, चाहे कहते हैं ना कि नए नए कितने भी प्लेटफॉर्म्स आए हैं मीडिया से रिलेटेड, लेकिन जो आकाशवाणी के कार्यक्रमों की जो विश्वसनीयता है, उसकी जो मौलिकता है, उसकी जो गरिमा है, उसमें जो सच्चाई है वो कहीं नहीं है,
2: बिल्कुल
1: है ना। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है जिसमें कि गांवों से जुड़ी जनता आती है, तो भाई हर वर्ग, हर आयु, हर लिंग वो आकाशवाणी से जुड़ा है।
2: तो अगर निर्देश जी मैं आपसे पूछूं कि आकाशवाणी या रेडियो क्या मायने रखता है आपके लिए?
1: भाई जैसे शरीर में एक स्पंदन होता है ना, धड़कन होती है, तो शरीर में जान है, तो भाई मैं तो मेरे लिए तो ये एक स्पंदन है, ये एक कला को प्रस्तुत करने का, अपनी अपनी कहना चाहिए प्रतिभा को एक नया आयाम देने का बहुत बड़ा मंच है, और मैं तो इसे अपनी धड़कन मानती हूँ।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: साथियों, देखने में आ रहा है कि कुछ ऐसी विधाएं हैं जो आजकल लगभग विलुप्त होती नजर आ रही हैं, जैसे अगर हम बात करें नौटंकी और लोक संगीत के अंतर्गत लोकगीत और संस्कार गीतों की। लेकिन एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आकाशवाणी एक लोक प्रसारक होने के नाते उनके संरक्षण का भी काम करता है, और आज के दौर में इन विधाओं की जो प्रासंगिकता का अनुभव हम देख पा रहे हैं वो केवल आकाशवाणी

0: माध्यम से। आपका क्या कहना है इस बारे में?
1: देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है ममता जी आपने कि हम बहुत सारी कलाएं हैं, जैसे लोक संगीत की जो कला है वो कहीं ना कहीं विलुप्त बिल्कुल हो रही है,
0: जी
1: लेकिन आकाशवाणी उसका सही अर्थों में संवाहक बना है। तो भाई कितने भी हम कहते हैं ना, चकाचौंध वाली जिंदगी हमें बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं करती, हमें लौट के जैसे अपनी जड़ों की तरफ आना पड़ता है। तो उसी तरह से हम अपने लोक संगीत से कटकर जी ही नहीं सकते। जब मौके होते हैं खास, तो उसमें जो अपने शुरू में पिरोए हुए जो लोकगीत होते हैं उनकी कुछ खास बात होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और जब बात हुई है लोकगीतों की, तो क्यों ना हम अपने श्रोताओं को आपकी आवाज़ में किसी आपकी बहुत ही जो पसंदीदा लोकगीत हो उसकी दो लाइनें सुनवा दें।
1: बिल्कुल, देखिए हम अभी बात कर रहे थे ना कि
0: जी
1: आकाशवाणी सेतु है पीढ़ियों के बीच का, तो मैं अपनी अम्मा जी का एक लाडो गीत है जो मैं सुनाना चाहूंगी,
0: बिल्कुल
1: जो कुछ इस तरह है कि हाथ

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे श्रोता समय समय पर आपकी आवाज में बहुत अलग अलग तरह के लोकगीत सुनते आए हैं, और आज भी कार्यक्रम में आपने जो ये गीत की कुछ पंक्तियां हमें सुनाई हैं, वास्तव में बहुत खूबसूरत।
1: इन्होंने मुझे मेरी अम्मा की याद भी
0: जी
1: दिलाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल। श्रोताओ, 90 वर्षों के इस सुनहरे सफर में केवल तकनीक के माध्यम से आधुनिकता के साथ मात्र समन्वय ही नहीं हुआ, बढ़ गया एक अद्भुत जुड़ाव, भावनाओं, यादों और अपनेपन का हुआ संगम। जब देश में रेडियो की शुरुआत हुई थी 1936 में, तब ये केवल घर में आने वाला एक नया मेहमान ही नहीं था, ये श्रोताओं का हमराज, हमदर्द और हमसफर भी बना और आज तक बना हुआ है। निर्देश जी, तकनीकी विकास के साथ संचार के बहुत नए नए तरीके हमारे सामने आए, लेकिन आकाशवाणी की सार्थकता इन सब के बीच एक अपनी अलग जगह रखती है। अपनी सार्थकता को बनाए हुए है आकाशवाणी, अपनी विश्वसनीयता को बनाए हुए है। क्या कहेंगी इस बारे में आप?
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। विश्वसनीयता के पीछे बहुत एक मेहनत है, कर्मठता है, क्योंकि आकाशवाणी ने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करने वाला एक एटीट्यूड रहा है कि जो सच्चाई है वही सामने है। चाहे
0: बिल्कुल
1: शिक्षा है, सूचना है, ज्ञान है, मनोरंजन है, यानी कि हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारा सच्चा साथी आकाशवाणी जो हमारे साथ है।
0: बिल्कुल सही कहा आप। तो निर्देश जी, बहुत अच्छा लगा हमें आकाशवाणी के बारे में आपके विचार, आपके अनुभव सुनकर। तो चलते चलते हमारे श्रोताओं को कोई संदेश आप देना चाहेंगी?
1: तो ममता जी, मैं कहना चाहूंगी कि जो इस जिस तरह से आकाशवाणी ने ये 90 वर्षों का जो स्वर्णिम सफर पूरा किया है, आगे भी युगों युगों तक ये सफर चलता रहेगा। और जैसे श्रोताओं को एक स्वस्थ ज्ञान, मनोरंजन, शिक्षा और संचार के माध्यम की जरूरत है, वो उसको बखूबी पूरा करता रहेगा। और दो लाइन में बोलना चाहूंगी इस
0: जी
1: बारे
0: जी
1: में कि आकाशवाणी का 90 वर्षों का ये सफर युगों युगों तक जाएगा। आकाशवाणी का 90 वर्षों का ये सफर युगो युगो तक जाएगा। सूचना, ज्ञान, संस्कृति, मनोरंजन के नए नए परचम लहराएगा, नए नए परचम लहराएगा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
1: और ममता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल प्रसारित कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के शेष प्रसारित कार्यक्रमों पर। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण।

रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रात 10 बजे। रात 9:30 बजे सुनेंगे कवि गोष्ठी। प्रतिभागी हैं अंजुला अरोड़ा, आशा त्यागी, सुमन युगल और डॉक्टर नीरज शर्मा। संचालन है लक्ष्मी डबराल का। 90 साल बेमिसाल रेडियो प्रसारण की गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में मशहूर शायर श्री सैयद इजाजुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेरठी से विशेष भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी शाम 6:45 पर। अब से कुछ ही देर में 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज क्रम है दिल से दिल तक और कहानी के उस पार। बासमती धान की रोपाई, इस विषय पर डॉक्टर रितेश शर्मा से की गई बातचीत किसान भाई सुनेंगे संध्या 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में। साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा फसलों में सिंचाई प्रबंधन और फसल बीमा योजना। सुगम संगीत में शाम 7:32 पर आप सुनेंगे शीलाधर की आवाज में चंद गजलें। और फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुनेंगे संध्या 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत में। रात 8 बजे कार्यक्रम गीत संध्या। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्मी गीत। और रात 10:30 सुनेगा श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रमों की।

और अब हम आपको कल प्रसारित कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कल रात 9:30 बजे। कानून की बात, ये कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 7:32 बजे पर। खड़ी बोली का क्रमिक विकास, डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी की ये वार्ता प्रसारित की जाएगी विविधा कार्यक्रम में 6:45 बजे पर। यूरिया एवं डीएपी के उपयोग को कम करने में जैविक एवं प्राकृतिक खेती के बायो इनपुट्स का महत्व, इस विषय पर डॉक्टर चंद्र भानु से की गई बातचीत किसान भाई सुनेंगे 6:05 बजे पर कार्यक्रम कृषि जगत में।

हथेलियों में स्वास्थ्य, इस विषय पर जानकारी दी जाएगी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:05 पर। खेती की बातें क्रम में प्रातः 7:10 पर चर्चा का विषय रहेगा संतुलित उर्वरकों का प्रयोग। धरती गाती है कार्यक्रम में सुबह 9:25 पर आप सुनेंगे रुहेलखंडी लोकगीत, कलाकार हैं शशिकला राजपूत। बात आसपास की, ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:50 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: विश यू अ वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त शुमायला बासी,
1: और शुमायला के साथ दोस्तों हाजिर हूं मैं आपकी अपनी जानी पहचानी दोस्त अक्षी त्यागी।
0: दोस्तों आज का मौसम है बड़ा कातिल, कहीं खो ना जाए आपका दिल।

0: तो अपने इस दिल को जरा संभाल के रखिए प्रोग्राम के एंड तक।
1: जी हाँ दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथों से निकल जाए। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बूझो तो जाने के सवाल के साथ।
0: और आपसे हमारा सवाल है कि आईपीएल 2026 की उपविजेता टीम कौन सी रही, जिसका जवाब आप जानते ही हैं कैसे देना है। हर बार सवाल का जवाब आप देते हैं हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद पर कमेंट बॉक्स में जाकर के पोस्ट के।
1: तो बिल्कुल वैसे ही आज भी कर दीजिए। जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब लिखकर भेज दीजिए।
0: तो ये तो थी सवाल की बात। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, दिल से दिल तक की ओर। जी हाँ, जिसमें हमारे दिल की बातें पहुंचती हैं आपके दिल तक।
1: और शुमाइला, बातों का जरिया लफ्ज होते हैं, तो क्यों ना लफ्ज से शुरुआत की जाए।
0: बिल्कुल दोस्तों, कभी सोचा है लफ्ज आखिर होते क्या है? कि क्या ये सिर्फ अक्षरों का मेल है, या फिर दिल की वो आवाज जो होठों तक आकर ठहर जाती है?
1: या कभी किसी की मुस्कुराहट बन जाती है, तो कभी किसी की आंखों की नमी बन जाती है।
0: बिल्कुल, कभी ये मोहब्बत का इजहार होते हैं तो कभी जुदाई का आखिरी पैगाम।
1: जी हाँ दोस्तों, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो बरसों बाद भी कानों में गूंजते रहते हैं, और कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो एक पल में पूरी जिंदगी बदल देते हैं।
0: जब एहसासों को रास्ता नहीं मिलता अक्षी, तो वो लफ्ज बनकर कागज पे उतर आते हैं। बिल्कुल,
1: बिल्कुल शुमाइला, तुमने बिल्कुल सही कहा।
0: क्योंकि लफ्ज सिर्फ शब्द नहीं होते, ये दिल के अरमान, रूह की आवाज और यादों की खुशबू होते हैं। और शायद इसीलिए
1: लफ्जों की उम्र छोटी हो सकती है, मगर उनके असर अक्सर उम्र भर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो लफ्जों से रिलेटेड अगर आप कुछ हमें लिख भेजना चाहते हैं, तो आप हमारे कार्यक्रम में भेज सकते हैं। और जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। दोस्तों नंबर एक बार फिर से 9457087828।
0: और अब लीजिए प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सभी के लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोटपोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
3: अबे यार, इंसान शांत वातावरण में थोड़ी देर भी बैठ जाए ना तो अपना नफा नुकसान तुरंत जान लेता है।
4: ओहो अच्छा जी, तो अच्छा ये बता कि शादी के टाइम पे उसे ये याद क्यों नहीं आता?
3: अबे इसीलिए तो बैंड बाजे बुलाए जाते हैं जिससे कि उसे सोचने का टाइम ही ना मिले।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
5: जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आप पहुंचे हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट कुछ खास से आज की तरफ, यानी कि कुछ खास से आज के पिटारे की तरफ।
4: तो दोस्तों, ड्रीम बड़ा रखो, एक्सक्यूज़ छोटे, इसके बारे में हम आपसे एक ऐसी सोच साझा करेंगे जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है।
5: जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सपने देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, और अक्सर हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने बहाने होते हैं।
4: कभी हम कहते हैं अभी सही वक्त नहीं है, कभी यार मेरे पास तो साधन ही नहीं है, या फिर कभी लोग क्या कहेंगे।
5: लेकिन सोचिए, अगर हर सफल इंसान ने यही बहाने बनाए होते तो क्या वो आज उस मुकाम तक पहुंच पाते?
4: सच तो ये है दोस्तों कि सपनों की ऊंचाई नहीं, हमारे बहानों की लंबाई हमें रोकती है।
5: जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण ही लेते हैं। अगर कोई छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखता है लेकिन रोज ये सोचकर पढ़ाई टाल देता है कि कल से शुरू करूंगा, तो सपना वहीं रह जाता है।
4: और दूसरी तरफ वही स्टूडेंट अगर थोड़ा दिन थोड़ी थोड़ी हर दिन कोशिश करे तो एक दिन वही सपना उसकी पहचान बन जाता है।
5: जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, सपने पूरे करने के लिए परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत वहीं से करनी चाहिए।

0: जहां आप आज खड़े हैं।
1: क्योंकि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो बहाने नहीं रास्ते ढूंढते हैं। कभी कभी हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे।
0: लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा जो होती है ना, वो अलग अलग होती है। आपका मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले अपने आप से है।
1: तो आज खुद से वादा कीजिए कि सपनों को छोटा नहीं करेंगे, बल्कि बहानों को छोटा करेंगे। जब भी मन कहे नहीं हो पाएगा, तब खुद से कहिए एक बार कोशिश तो करके देखी जा सकती है।
0: क्योंकि हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है दोस्तों, और हर सपना जो आज सिर्फ एक ख्याल लगता है, वही कल आपकी सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है।
1: तो दोस्तों, बड़े सपने देखिए
0: और बहानों को छोटा रखिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि सपनों की उड़ान तभी शुरू होती है जब बहानों का बोझ पीछे छूट जाता है।
0: तो दोस्तों, कुछ खास से आज में आज इतना ही, और हम चलते हैं आगे अपनी कड़ी दिल से दिल तक की इस गीत की ओर।

छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट कोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज। और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: ओए गप्पू, तेरी शादी हो गई है?
4: हाँ यार चप्पू, हो गई मेरी शादी।
3: अच्छा ये बता, तू शादी से पहले क्या करता था?
4: बस यार क्या ही बताऊँ मैं तुझे अपने हाल।
3: हाँ हाँ बता भी दे, क्या करता था शादी से पहले तू?
4: अबे यार जो मेरा मन करता था मैं वो करता था।
2: जी हाँ मजा आ गया।
5: तो दोस्तों अभी आपने ये गीत सुना, दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, एक तेरा नाम है एक मेरी जिंदगानी। तो इस गीत के जरिए हमसे एक हमारे लिसनर हैं, वो जुड़ चुकी हैं और वो है नगीना से। लिखने वाली हैं किरण यादव। वो लिख के भेजती हैं कि सबसे पहले तो शुमाइला जी और अक्षी जी आप दोनों को मेरा नमस्कार। जी हमारा भी आपको नमस्कार। और वो लिखती हैं कि कुछ रिश्ते किताबों में नहीं दिलों में लिखे जाते हैं। मेरी प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां हर खुशी में उसका साथ और हर दुआ में उसका नाम शामिल है। आज बस इतना कहना चाहती हूं कि सच्चा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता, वो तो हर धड़कन में महसूस होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी कि आप हमारे साथ जुड़ी।
3: और ये बात इन्होंने बहुत खूब कही है अक्षय, कि सच्चा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता, वो हर धड़कन में महसूस होता है। आपके एफर्ट्स ही दिखाते हैं कि आपकी मोहब्बत कितनी सच्ची है। तो दोस्तों हमारे दिल से दिल तक सेगमेंट को यहाँ थोड़ा सा ठहराव देते हैं और चलते हैं आपको लेकर कहानी की ओर, जिसमें आज आप सुनेंगे कहानी घर जमाई एपिसोड 2, जिसको पेश किया है हमारे युवा साथी उज्मा ने।

हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त उज्मा और आप सुन रहे हैं कहानी घर जमाई। और आज आप सुनेंगे कहानी का दूसरा भाग यानी एपिसोड नंबर 2। दोस्तों, कल हमने सुना था कि हरिधन कितना अपमानित और दुखी था। आज की कड़ी में हम सुनेंगे जब पुरानी यादें हरिधन के घावों को फिर से हरा कर देंगी। हरिधन अभी भी बाहर बैठा था कि तभी उसकी सास तेज कदमों से बाहर आई और बोली, क्या कर रहे हो यहाँ बैठे हुए? चलकर खाना क्यों नहीं खा लेते जी? हैं? रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बल नहीं है। जो हमें देते वो मत देना। और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका थोड़ा ले लिया है। हरिधन ने दिल की गहराई से चोट खाकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था कि आपने मेरा ठेका ले लिया है, अपना बेटा समझ लिया है। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका ले लोगी? जब मेरे पास धन था तब सब कुछ मिलता था, अब गरीब हूँ, तुम क्यों ही मेरी बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर अंदर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक मनोरंजन की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या साहब लोगों के लिए मिठाई। मिठाई उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है।

एक दिन रोटी दाना ना मिले तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सुबह हो जाते हैं। वो बच्चों को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर घुमाने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। वो परदेश चला जाए, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माँ, माँ तो बच्चों की पूरी दुनिया होती है। बालक एक मिनट के लिए भी अपनी माँ का अलग होना नहीं सह सकता। वो अगर नहीं है तो बालक का जीवन मानो सूख सा जाता है। ऐसे ही हरिधन की माँ को मरे 10 साल हो चुके थे। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वो 16 साल का एक बड़ा खूबसूरत सा लड़का था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना बेसहारा हूँ, जैसे उस घर पर उसका अधिकार ही ना रहा हो। बहनों की शादी हो चुकी थी, भाई कोई दूसरा नहीं था। बेचारा अकेले घर में जाने से भी डरता था, माँ के लिए रोता था और किसी भी परछाई को देखकर डर जाता था। जिस कमरे में उसकी माँ का देहांत हुआ था उधर आंखें तक ना उठाता था। घर में एक बुआ थी, वो हरिधन को बहुत दुलार करती थी। हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता था, काम भी कम करना पड़ता था। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज्यादा प्यार करता, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे भी दे दिए जाते थे, जैसे चाहे खर्च करे। पर इन दुलारों से वो घाव नहीं भर रहा था जिसने उसकी आत्मा को चोट पहुंचा दी थी। वो दुलार और वो प्यार बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की डांट में जो मजा था वो उस दुलार में नहीं था। अच्छी अच्छी चीजें उसे दी जाती थी पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। साल भर तक वो इसी हालत में रहा। फिर एक दिन उसकी भी दुनिया बदली। एक नई स्त्री जिसे लोग उसकी माँ कहते थे उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके छोटे संसार पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश, सब पर अंधकार पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक नहीं की, कभी उसके पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और अपनी बीवी को लेकर सीधा ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, सौतेली माँ ने भी बहुत कोशिश की कि वो ना जाए, पर बाप के जीते जी वो फिर उस घर में कभी ना गया। जिस दिन उसे अपने पिता के देहांत की खबर मिली उसे एक तरीके की खुशी महसूस हुई। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी ना आई। बाप ने बार बार बुलाया पर उसके जीते जी वो फिर उस घर में कभी नहीं गया। सौतेली माँ ने भी बहुत लाड़ और चाव से उसे कई बार बुलावा भेजा, कई बार चाहा कि वो वापस आ जाए, लेकिन हरिधन ने साफ इनकार कर दिया। और वापस ना आने की वजह साफ थी, उसकी सौतेली माँ। फिर एक दिन उसे अपने पिता के देहांत की खबर मिली। पिता के देहांत पर उसकी आंख में एक आंसू ना था, बल्कि उसके मन में एक खुशी का भाव पैदा हो गया। शायद अपने बाप की मौत को वो अपनी सौतेली माँ से लिया गया बदला समझ रहा था। दोस्तों, माँ की मृत्यु के बाद हरिधन का जीवन बदल गया। वो ससुराल चला आया जहाँ उसे फिर से माँ का प्यार मिला। लेकिन क्या ये प्यार हमेशा टिक पाएगा? अगर आपको ये जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 3 में।

0: Akashwadi at 90.
1: दोस्तों जिक्र है लफ्ज का यानी कि अल्फाजों का, कभी किताबों में मिलते हैं, कभी खामोश निगाहों में। कुछ लफ्ज कह दिए जाते हैं, कुछ उम्र भर अनकहे रह जाते हैं। अजीब बात है ना, इंसान चला जाता है मगर उसके लफ्ज अक्सर याद रह जाते हैं, क्योंकि लफ्ज आवाज नहीं एहसासों की पहचान होते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मैसेज हमें लिख भेजा है अनिल विनोचा जी ने नगीने से, जो कहते हैं कि बच्चा जन्म लेता है और वो किसी भी पाठशाला में गए जाए बिना ही बोलता है, तो वो पहले पा या फिर माँ बोलता है, जिसका मतलब है पापा या फिर ममा। एक ऐसे ही लफ्ज़ को जोड़कर एक भाषा बनती है, ये भी एक अलग इत्तेफाक है, हर जाति की एक अलग मातृभाषा। फिर राजभाषा और कितनी ही इंटरनेशनल भाषा है, जैसे कि इंग्लिश,

फ्रेंच, जर्मनी, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और जितने देश उतनी भाषाएं। फिर लफ्जों में ये शायर, राइटर, पोएट इनका यूज करके बड़ी गहरी बात कह देते हैं। कहीं गीत, गजल, कभी दास्तान तो कभी कहानियां बन जाती हैं लफ्जों से। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल ठीक कहा और ठीक लिखा है आपने कि शब्द जो है, लफ्ज है, अल्फाज किसी भी चीज का बेस होते हैं, फिर इनसे कहानियां बनती हैं और दास्तान बनती है जो हमारे दिलों तक पहुंचती हैं, जैसे कि हमारी बातें जो है आज आपके दिलों तक पहुंच रही है, सेगमेंट दिल से दिल तक में। तो आइए दोस्तों, सुनवाते हैं आपको सेगमेंट दिल से दिल तक में एक और गीत।

0: तो दोस्तों, लफ्जों की अपनी एक दुनिया होती है। कुछ हंसा देते हैं, कुछ रुला देते हैं। कभी दो लफ्ज मरहम बच जाते हैं तो कभी दो लफ्ज गहरे जख्म दे जाते हैं। और जब बात मोहब्बत की हो तो दो लफ्ज ही काफी होते हैं, तुम और मैं। दोस्तों, लफ्ज कागज पर उतर जाएं तो कहानी बन जाते हैं, दिल से निकल जाएं तो निशाने बन जाते हैं। यूं तो हजारों लफ्ज हैं इस दुनिया में, मगर कुछ लफ्ज किसी की पूरी जिंदगी बन जाते हैं। और ऐसा ही है ये गीत। कहते हैं कि प्यार को महसूस तो किया जाता है, लेकिन हर बार उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। कई बार दिल बहुत कुछ कहना चाहता है, मगर होठ खामोश रह जाते हैं। ऐसे ही अनकहे जज्बातों को आवाज देता है खूबसूरत सा गीत।
1: और दोस्तों, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे की ओर, रुक करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। सवाल हमारा आपसे था, आईपीएल 2026 की उपविजेता टीम कौन सी रही है, जिसका सही जवाब है गुजरात टाइटंस। और देख लेते हैं सही जवाब देने वालों के नाम।
0: और सही जवाब देने वालों में शामिल हैं सुदर्शन शाह, शाहिनूर अंसारी, आसिफ चौधरी, कैलाश फूलमाली, नंद कुमार ठाकुर, संजय ढींगिया, मोहम्मद वक्कार फरीदी, बबलेश पवार, बी कमल, धीराज भाई राबरी, राजेश वर्मा, राधेश्याम पांडे, बागवत चौबे लाडला जी, बी एल धाकड़, विजय सुरेलकर, धर्मेंद्र छीपा, एम अफजलताज, सदाशिव थोरात, जाकिर मंसूरी, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, मोहम्मद सईद अब्बासी, रामशरण विश्वकर्मा, और हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे इस जवाब में शामिल हैं। तो आइए दोस्तों, अब चलते चलते इस कड़ी का एक आखिरी गीत और आपको सुनाते चलते हैं।

0: दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें मैसेज के जरिए बता सकते हैं। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288 और हमें आप खत भी भेज सकते हैं। खत भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 2467063।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर आप सुन सकते हैं। आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कॉमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो इसी के साथ मुझे अक्षी त्यागी
0: और शुमायला को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
1: नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6:05 हुए हैं और अब हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सब बहन भाइयों को आपके भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम
1: राम।
0: राम। तो प्रमोद भाई,
1: जी झुमरू भैया।
0: अरे भाई, कैसे हाल चाल है? सब राजी खुशी?
1: हाँ भैया, सब ठीक ठाक है। आजकल तो भैया बस यूं समझो कि भाई धान की खेती बाड़ी में लगे हुए।
0: अब भाई देखो, धान की खेती बाड़ी में तो लगेंगे भाई। देखो, खरीफ का मौसम शुरू हो गया
1: वही तो।
0: और खरीफ मौसम की भैया मुख्य फसल है,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो भाई देखो धान की नर्सरी तो हम डाल ही रहे हैं,
1: जी जी
0: क्योंकि भैया अगले महीने से जो भैया उसकी रोपाई शुरू करनी है।
1: हाँ भैया, यही काम चल रहा है उधर। भैया गन्ने की सिंचाई उचाई चल रही।
0: भाई देखो, गर्मी बहुत हो रही है भैया।
1: अब भैया देखो, गर्मी का मौसम है, गर्मी तो होगी यार। तुम तो भैया इतनी मेहनत करो हो भैया, दिन भर खेतों में काम करो और भाई शाम को किसान भाइयों के बीच में आके बातचीत करो हो, तो देखो भाई मौसम से नहीं घबराना चाहिए।
0: अब देखो भैया, मौसम से घबराते तो नहीं है,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन भैया मौसम से बचाव जरूर करना पड़ता।
1: वो तो जरूरी है भैया, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो भाई मौसम से तो बचाव करना ही पड़ेगा। बचाव क्या, सावधानी बरतनी चाहिए।
0: भाई देखो, सावधानी बरतने वाली जहां तक बात है, तो भैया आजकल 5 बजे बिल्कुल जो चांदना फैल जाओ, है
1: हाँ
0: ना भैया?
1: ठीक कह रहे भैया।
0: तो भैया अगर हम जल्दी सुबह को खेत पर पहुंच जाओ, और भैया यो समझ लो कि 9 साढ़े 9 बजे तक, हर हो भैया 10 बजे तक
1: हाँ हाँ
0: खेत का काम निपटा कर घर आ जाऊं,
1: जी
0: और भैया शाम के टाइम आप यूँ समझ लो कि भाई अगर हम 4 बजे तक खेत पर पहुंच जाऊं, और भैया 7 बजे जो है दिन छिपरिया,
1: हाँ
0: तो यानी कि 3 घंटे भैया ये हमें मिल गए, तो भाई यू समझ लो कि भैया हम सुबह शाम ठंड ठंड में बढ़िया काम निपटा सको खेती बाड़ी का।
1: ठीक कह रहे हो भैया। और जो भरी दोपहरी का जो वो टाइम हुए करा है, उस टाइम पे भाई हम खा पी के अपने घर में अगर आराम करेंगे तो
0: भाई
1: भैया हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बाल बच्चे ठीक ठाक रहेंगे, हमारी खेती बाड़ी के काम धाम भी ठीक ठाक होते रहेंगे और सब ठीक ही ठीक होगा।
0: बिल्कुल भाई, देखो तो भाई इस तरीके से भैया हम गर्मी से बच तो हो, और भैया अपने आप को स्वस्थ रख तो हो भैया, खेती बाड़ी के काम करने हैं।
1: अरे भैया खेती बाड़ी के काम तो कर ही रहे हैं, तुम यू बताओ आज के कार्यक्रम में क्या करना।
0: अरे भैया करना क्या है भाई, भाइयों को सब पता, आज
1: हाँ
0: मंगलवार,
1: बिल्कुल।
0: और भैया अब हर मंगलवार को हमारे किसान भाई सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि
1: और
0: पाठशाला।
1: देखो इस पाठशाला का आज हम एपिसोड नंबर 4 लेकर आए।
0: बिल्कुल भाई देखो, चौथा पाठ है, तो भाई बातचीत को देते हैं अपने विराम
1: ठीक है
0: और बहन भाइयों को सुनवाते हैं यो बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
1: ठीक है भाई।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा,
0: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित,
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
3: अरे मास्टर जी।
2: हाँ भैया।
3: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
2: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय, सही मात्रा, सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
3: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है,
2: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
3: हाँ, देश किसान, किसान का मान, बासमती धान।
4: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
5: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती,
6: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
0: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों को आज के प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में, और इस पाठशाला के साथ मैं हूं आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू,
1: और भाई मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह।
0: तो प्रमोद भाई हम हाजिर हैं, देखो भैया आज की वो पाठशाला लिखकर।
1: बिल्कुल भाई, देखिए बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला शुरू हो चुकी है। किसान भाई इस पाठशाला में जानकारी भी ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज भला हमें क्या जानकारी मिलने वाली है।
0: देखो भैया, हमने बासमती धान की नर्सरी के बारे में जानकारी दिलवा दी है,
1: बिल्कुल।
0: और भैया अब तक हम सीधी धान की बुआई के बारे में भी जानकारी दे चुके हैं, और भैया आज हमारा विषय है धान की रोपाई के बारे में।
1: हाँ देखो भैया, ये भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान भाई जब इतनी मेहनत करते हैं, और भाई जब बच्चे को हम नर्सरी क्लास में एडमिट कराते हैं ना स्कूल में, तो उसको भाई सारी चीजें सिखाई जाती हैं, ए से जेड तक की सारी बातें उसको बताई जाती हैं, वैसी बासमती के किसानों को भी पूरी जानकारी दे रहे हैं हम।
0: तो भाई देखो, आज के पाठ में जानकारी देने के लियो।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: डॉक्टर रितेश शर्मा
1: जी,
0: जो कि संयुक्त निदेशक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरा मेरठ में, भैया हमारे कार्यक्रम में आ गए हैं।
2: बिल्कुल।
0: और डॉक्टर साहब थारी बगल में बैठे भैया।
1: ठीक है भैया, हम थारा इशारा समझ रहे हैं, डॉक्टर साहब से हम बात करो ले।
0: तो ठीक है भैया, आओ सुनते हैं यो बातचीत।
1: ठीक है भाई। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
7: प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखिए डॉक्टर साहब, हमारे सभी किसान भाई बहन इस बासमती धान की जो ये पाठशाला चल रही है, इसको सुनने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। और आज का हमारा पाठ ऐसा है, किसान भाइयों ने बासमती की नर्सरी तैयार कर ली है, इस नर्सरी का किस तरह से उनको ध्यान रखना है और कैसे उसकी रोपाई करनी है, ये जानकारी आज हम आपसे लेना चाहेंगे।
7: जी देखिए, खेती करनी है वो भी बासमती की, तो निश्चित रूप से पहले आपने बीज अच्छा लिया होगा। नर्सरी जैसे कि बासमती पाठशाला में आपको आकाशवाणी नजीबाबाद से बताया गया होगा, जरूर उसका आपने लाभ उठाया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी नर्सरी बहुत अच्छी चल रही होगी।
1: जी जी जी।
7: अब समय आया है कि हम उसको खेत में ट्रांसप्लांट करें। कुछ लोग अभी से शुरू करेंगे, कुछ आगे आने वाले समय में करेंगे, तो ये जानकारी उन सबके लिए है। ट्रांसप्लांटिंग में हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना। जो हमारे बासमती के खेतों के अंदर जो मुख्य चैलेंज आते हैं, उसमें एक चैलेंज आता है बकैने रोग का।
1: जी जी।
7: झंडा रोग। तो पहले क्या करना है आपने, और एक जो दूसरा खेत में बात आती है वो आती है खरपतवारों की।
1: हाँ।
7: खरपतवार ज्यादा हो जाए तो पहले तो गर्मी की जुताई मुझे उम्मीद है आपने जरूर की होंगी, जिससे कि आपके खेत को सूर्य की किरणों ने थोड़ा सा जो आपके बीमारी के कीड़े और जो स्पोर्स हैं उनको निश्चित रूप से खत्म किया गया।
1: जी, जी।
7: अभी क्या करना है, पहले खेत की तैयारी की बात करते हैं। खेत की तैयारी में आपने बहुत अच्छे से जुताई करके पानी भर के पडलिंग करनी है, लेकिन पडलिंग करते समय, पडलिंग जिसे आप कद्दू करना कहते
1: हाँ,
7: हैं
1: हाँ, हाँ।
7: तो उसमें क्या है, कई बार हमने देखा है कि किसान भाई दो तीन गलती करते हैं।
1: जी।
7: एक तो वो पानी ज्यादा भर देते हैं, फिर ट्रैक्टर चलाते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि 2-3 इंच से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए।
1: बहुत अच्छी।
7: लेबलिंग आपके खेत की बहुत आवश्यक है। जहां लेबलिंग गड़बड़ होगी वहां धान की खेती में नुकसान दिक्कतें आएंगी।
1: जी।
7: तो लेबलिंग अच्छी हो, 2-3 इंची पानी भर के आपने कद्दू कर गया, पडलिंग कर ली है। इसके बाद जब आप आखिरी बार पडलिंग करने जाते हैं, मतलब आखिरी बार ट्रैक्टर जब लगता है, लेबलिंग होती है, उसी समय पर जो आपने फास्फोरस पोटास देना है
1: जी,
7: उसकी मात्रा का आपने प्रयोग कर लेना।
1: अच्छा।
7: चाहिए। वो प्रजाति के अनुसार आपको अलग अलग उसमें बताई गई है और आगे भी बताई जाती रहेगी। तो आपने ध्यान रखना है कि बेसल डोज बाद में नहीं देनी है। बहुत सारे किसान भाई ट्रांसप्लांटिंग करने के 10 दिन बाद देते हैं।
1: जी जी।
7: वो
1: जी।
7: नहीं, आपने आखिरी बार जब ट्रैक्टर चला रहे हैं उसी समय दें, जिससे वो भली भांति मिट्टी में मिल जाए और जो जड़ें वहां पहुंचती हैं तो वो उनको ले सकें, जिससे पौधे का विकास
1: ठीक
7: अच्छा हो सके।
1: जी।
7: दूसरा काम क्या करना है, इसी समय पर जब आखिरी बार ट्रैक्टर चलाना है उससे पहले हर हालत में जरूरी से जरूरी कम से कम 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद में मिला के या केंचुए की खाद में मिला के आपने इसमें जरूर डालनी है। इसे हम कहेंगे भूमि का शोधन, क्योंकि मैंने जो बात कही बकेने बड़ा चैलेंज
1: हाँ, हाँ, हाँ।
7: वो मिट्टी से आती है या बीज से आती है।
1: जी।
7: अब आपने बीज अच्छा लिया, ट्रीट भी कर लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे खेतों के अंदर उनके स्पोर्स हैं तो उनको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है।
1: जी, जी जी।
7: तो आपने ध्यान रखना है, ट्राइकोडर्मा डालना है। और ज्यादा अच्छा ये होगा जब आप कद्दू करने जाते हैं, आपको पता है कि मुझे 7 तारीख को कद्दू करना है, तो आपने 1 तारीख को ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद या केंचुए की खाद में मिला के छांव में कहीं फैला लेना चाहिए और हल्की उसमें नमी बनाए रखिए, तो आप देखेंगे वो जो काली खाद थी
1: जी
7: वो 7 दिन में पूरी सफेद हो जाएगी।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
7: यानी कि ट्राइकोडर्मा अपने को मल्टीप्लाई करेगा।
1: जी, जी,
7: बढ़ता
1: जी।
7: चला जाएगा और जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपके खेत में उसका फायदा मिलेगा।
1: जी।
7: तो ये भूमि शोधन बहुत आवश्यक है, खेत का शोधन। इसके बाद जब आपने तैयार कर लिया खेत, ट्रांसप्लांटिंग की जो बात आपने कही नर्सरी से, उससे पहले मैं चाहूंगा
1: हाँ, हाँ,
7: कि बताऊं कि नर्सरी से पौध कैसे उखाड़ें।
1: डॉक्टर साहब ये बहुत ही जरूरी है और किसान भाई इस बात को जानना भी चाहते हैं, क्योंकि कई बार गलती यहीं पर होती है।
7: जी। देखिए, पहली बात तो जो बाहर से कई बार मैंने देखा है, जो श्रमिक आते हैं वो किसान भाइयों को समझाते हैं कि आप चिंता मत करो, हम ऐसे उखाड़ेंगे, जड़ भी नहीं टूटेंगी, बहुत बढ़िया, और पानी ना भरें
8: जी जी,
7: क्योंकि
8: जी।
7: उससे थोड़ा सा उनके कपड़े गीले होने का दिक्कत आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए, भले ही उनको ईंट रख के वो बैठ जाएंगे, भले ही जो है वो स्टूल लेके बैठेंगे या जैसे भी करेंगे, लेकिन

0: आपकी खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में पौध को सूखे में नहीं उखाड़ना है,
1: जी
0: पानी भरकर ही उखाड़ना है। सूखे में उखाड़ेंगे तो आपका झंडा रोग, बकैने रोग ज्यादा आएगा ही आएगा, जड़ें टूटेंगी ही टूटेंगी, नुकसान होगा ही होगा। तो आपने पानी भर के ही उखाड़ना है, उसके बाद इसका उपचार अवश्य करना है,
1: ये नर्सरी का उपचार,
0: नर्सरी का।
1: खेत में इसकी रोपाई करने से पहले उपचार करना बहुत जरूरी होगा,
0: यस,
1: उसके लिए क्या करेंगे डॉक्टर साहब?
0: उसके लिए बहुत आसान तरीका बताता हूँ। वैज्ञानिक हमारे बताते रहे हैं, हम लोग बताते रहे हैं कि आप एक टब ले जाइए, उसमें पानी भर के उसमें ट्राइकोडर्मा घोलिए और
1: जी
0: जड़ों
1: जी
0: को कम से कम 1 घंटे डुबोइए।
1: हाँ हाँ हाँ
0: लेकिन वास्तविकता ये है कि किसान भाई के पास उस समय इतने काम होते हैं कि वो चाह के भी इस काम को नहीं कर पाता।
1: हाँ
0: तो आपको मैं बहुत सरल तरीका बताता हूँ। जब आप खेत में, पनीरी में, नर्सरी में, जो भी आप बोलते हैं, जाते हैं, सुबह फावड़ा आपके पास होता है, वहां आपने नाली बनाई हुई है, नाली में दो तरफ से रोका लगा दीजिए, मतलब मिट्टी उठा के डाल दीजिए,
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: आपका बर्तन हो गया, और इसी में घोल दीजिए। मान लीजिए नाली से आपको सिंचाई कर रहे हैं, नाली उपलब्ध नहीं है, तो जो एरिया वहां आसपास या नर्सरी जहां उखड़ चुकी है, वहीं एक कोने में आपने क्या करना है, थोड़ा ये बर्तन जैसा बना दिया, मतलब मिट्टी रख दी, जैसे
1: जी
0: आप
1: जी
0: डोल
1: जी
0: बनाते
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ हाँ
0: बहुत
1: हाँ
0: छोटा सा,
1: हाँ
0: मुश्किल से 1 मिनट का काम है, 4-6 बार फावड़ा आपको चलाना है, काम हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उसमें आप पानी भर दीजिए और उसी में ट्राइकोडर्मा घोल दीजिए,
1: अच्छा
0: और लेबर को बता दीजिए कि जो भी आप ये उखाड़ रहे हैं, इनकी गुच्छियों को इसमें डालते रहे।
1: उसकी जड़ें साफ करने के बाद।
0: हाँ, उसकी जड़ें साफ करने के बाद इसके अंदर डालते रहें। यदि बहुत ज्यादा जड़ों को भी ये एकदम साफ करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने देखा है बहुत सारे किसान भाई, वो गुच्छी होती है उसमें मिट्टी होती है, तो उसको बिल्कुल ऐसे चमका के, जैसे शादी करने जा रहे हैं तो चेहरे
1: और
0: को
1: कई बार
0: एकदम
1: उसको
0: मस्त
1: झटका
0: करके
1: भी
0: रखते
1: मारते
0: हैं,
1: हैं, वो
0: झटका भी,
1: टूट भी जाती
0: वो
1: है।
0: भी नहीं करना है। हल्की फुल्की मिट्टी है, लगी रहने दीजिए, मिट्टी अच्छी चीज है, मिट्टी में ही उसको जाना है,
1: जी।
0: क्योंकि यदि आपको थोड़ा ज्यादा समय रखनी पड़ गई, मान लीजिए कोई समस्या आ जाती है, लेबर नहीं है तो भी दिक्कत होती है, तो आप हल्का सा साफ बस कर लीजिए, जिससे कि एक एक पौधा अलग हो जाए, ऐसा ना
1: हाँ
0: हो कि एक ही जगह 10 पौधे हैं, वही लगाने में
1: उसको
0: दिक्कत ना
1: गुच्छा नहीं
0: हो,
1: बनना चाहिए।
0: गुच्छा नहीं बनना चाहिए। बाकी आप उसको जो हमने बताया, एक बर्तन टाइप जो आपने बना लिया है फ्री का, उसमें बस वो डालते रहेंगे, तो वहां से लगाने वाले ले जाते रहेंगे, कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई आपने इसमें अलग से श्रम नहीं करना है, तो किसान भाई आराम से पौध का उपचार कर सकते
1: डॉक्टर
0: हैं।
1: साहब इसको कितनी देर उसके अंदर डुबो के रखना है?
0: इसको कम से कम 1 घंटा वो डूबी रहे, और
1: हाँ
0: इससे
1: हाँ
0: ज्यादा डूबी हैं तो भी अच्छी बात है, जड़ें हमको
1: अच्छा
0: डुबा के रखनी है।
1: जी जी
0: हाँ, ये जरूर कर सकते हैं, सुबह जब आप घर से निकल रहे हैं, खेत पे जा रहे हैं, तो आपके पास जो कट्टे होते हैं यूरिया के, डाई के, या कोई पन्नी पड़ी है बड़ी सी, तो उनको, कट्टों को आप लोग सिल लेते हैं किसान भाई, तो थोड़े से पल्ली बन जाती है, उसको ले जाएंगे और पानी भरने से पहले उसको उस वहां रख देंगे, तो क्या होगा, एक लेयर प्रॉपर बर्तन सा बन जाएगा,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: मिट्टी में ज्यादा आपका वो नहीं होगा, जिससे कि दवाई और पानी मिट्टी के अंदर चला जाए,
1: हाँ हाँ
0: वो
1: हाँ
0: और अच्छा हो जाएगा। कर सकते हैं कर लें, नहीं कर सकते तो इतना तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि अधिकतर किसान भाई पनीरी का उपचार नहीं करते हैं, और ये करना चाहिए।
1: जी
0: आपने बीज उपचार किया था, पनीरी का उपचार किया है, पानी भर के पौध उखाड़ी है, आप समझो 90% तक बकेने नहीं आए।
1: यह आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है, और हमारे किसान भाई सोच रहे होंगे कि ये सारी जानकारी तो हमें मिल गई, अब हमें कितनी दूरी पर वो पौध रोपित करनी है ये जानकारी भी उनको होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, अब मेन काम तो यहीं से आ गया।
1: जी जी जी
0: देखिए, पहली बात तो पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर, मतलब एक ब्लांत जो होता है आपके हाथ का, वो होनी चाहिए, और लाइन से लाइन भी इतनी होनी चाहिए।
1: जी
0: वैसे तो आपको ट्रांसप्लांटिंग लाइन में ही करनी चाहिए, रस्सी के साथ, लेकिन अधिकतर किसान भाई नहीं कर पाते, उनको लगता है कि इसमें उनकी लेबर ज्यादा लग रही
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: लेकिन
1: हाँ
0: एक बार करेंगे, जो 2 लोग रस्सी पकड़ के एक इस कोने पर और एक दूसरे कोने पर खेत में खड़ा होता है, और हमें लगता है कि इसका हम दिहाड़ी फालतू दे रहे हैं, लेकिन यदि आप 1 बीघा 2 बीघा करके देखिए, आप देखेंगे ओवरऑल समय कम लगता है, लेबर कम लगती है, क्योंकि सारे सिस्टमिक वे में इसको लगाते हैं।
1: जी
0: और सबसे आवश्यक है, दूरी तो आपने पूछ ली, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है कि आपने हर 2 मीटर 3 मीटर के बाद एक गैप, एक रास्ता छोड़ना है।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: रस्सी से लगाएंगे तो वो आप आसानी से छोड़ देंगे, मतलब एक लाइन नहीं लगानी है, 20 की जगह 40 सेंटीमीटर का गैप हो जाएगा। तो इसमें कुछ किसान भाई सोचते हैं कि साहब मैंने पौधे कम लगाए हैं तो मेरा उपज कम हो जाएगी, ऐसा नहीं
1: मेरा
0: होगा।
1: खेत खराब हो जाएगा।
0: हाँ, वो ऐसा नहीं होगा,
1: जी
0: आपकी उपज तो बड़ी बढ़ जाएगी और आपके खर्चे भी घट जाएंगे,
1: हाँ
0: क्योंकि ये जो रास्ते हैं, ये जो नालियां जैसे आपने बना दी, एक लाइन नहीं लगाई तो क्या होता है, इसमें हवा क्रॉस हो जाती है, इसमें सूर्य का प्रकाश नीचे तक पहुंचता है, जो हमारे खेत के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका डेवलपमेंट प्रॉपर होता है और वो अच्छे से काम करते हैं, तो आप पूरी फसल बहुत बढ़िया से चलती है।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: मैं ये कहूंगा कि जब आप धान लगाते हैं, लेबर कई सारे लोग लगाते हैं, आप रस्सी नहीं लगा रहे हैं, तो एक आदमी एक फांट लेके चलता है,
1: हाँ
0: मान लीजिए यहां से और 2-2.5 मीटर तक, तो उसके बाद जो दूसरा लगा रहा है वो थोड़ा सा गैप कर दे,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: रास्ते सीधे नहीं होंगे,
1: हाँ
0: टेढ़े
1: हाँ
0: मेढ़े होंगे, लेकिन ये आपके बहुत काम आएंगे, आपकी उपज बढ़ाने वाले हैं, ये अवश्य करें।
1: ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है, और हमारे जो किसान भाई हैं इस काम को बहुत ही कम करते हैं।
0: जी
1: अब डॉक्टर साहब देखिए, हमारी जो पौध है खेत में लग चुकी है, और उसमें आपने भी एक बकैने रोग की बात की थी, वो ना लगे इसके लिए भी हमने भी जानकारी दी है, हमारे सब किसान भाई जान गए हैं। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी हमारे
0: हाँ,
1: किसान भाइयों को होनी
0: एक
1: चाहिए?
0: बात और बहुत जरूरी है,
1: जी
0: दूरी की बात की, गैप की
1: हाँ
0: बात की,
1: हाँ
0: लाइन की बात की, एक बात जो जरूरी है, गहराई,
1: हाँ
0: कितना
1: हाँ
0: गहरा लगाना है।
1: जी जी जी
0: कहने को ये बहुत छोटी बात है, लेकिन इसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। अधिकतर किसान भाइयों के खेत में 4 इंची 5 इंची गहरा लगा होता है, क्योंकि जो पौधा है वो टिकता नहीं है और वो अंदर घुसाते रहते हैं, बढ़िया से कद्दू करते हैं और फिर पूरी फसल को इसका नुकसान उठाना पड़ता है।
1: जी
0: करना क्या है हमको, हमको 1 इंच से ज्यादा नहीं लगाना, 1 से 1.5 इंच, इससे गहरा नहीं लगाना। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, जब आप कद्दू कर लेंगे तो खेत को आपको छोड़ना है, कुछ की मिट्टी बहुत जल्दी जम
1: हाँ
0: जाती है, कुछ की थोड़ी देर में, तो आप अपनी मिट्टी के अनुसार एक दिन पहले कद्दू करके छोड़ दीजिए, अगले दिन लगाइए, या 4 घंटे या 2 घंटे, क्योंकि मिट्टी का एक एक कण अलग है। अभी क्या करते हैं, ट्रैक्टर पूरे खेत में चला, बाहर निकला नहीं, उससे पहले लेबर तैयार है गुच्छी
1: लगाने के
0: लेके
1: लिए।
0: लगाने को।
1: जी
0: अब मिट्टी का एक एक कण अलग है, वो पौधा टिकेगा ही नहीं, इसलिए आप बहुत अंदर तक घुसाते जाते हो, और इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो भी मैं बताऊंगा क्या
1: हाँ
0: नुकसान होता है। तो आपने 1 से 1.5 इंच गहरा लगाना है, मतलब कद्दू करने और ट्रांसप्लांटिंग करने में गैप देना है। अब
1: जी
0: नुकसान
1: जी
0: समझ लीजिए तो
1: हाँ
0: आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो 7वें दिन उसके अंदर नया कल्ला निकलना चाहिए,
1: अच्छा
0: लेकिन वो निकलता है 12वें 13वें 14वें दिन।
1: अच्छा
0: क्यों लगता है, जब आप नर्सरी में बढ़िया फसल चल रही थी, आप वहां से पौध उखाड़ के लाए, फिर आपने कीचड़ की, गर्मी के अंदर इतना उसको पौधे को लेके बेचारे वो नन्हे से बच्चे को घुसा दिया, अब क्या करेगा वो पौधा,
1: जी जी
0: वो
1: जी
0: वहां अपनी जड़ें पकड़ेगा, जड़ें पकड़ के अपने को तैयार करेगा, और तैयार करके फिर उसको फूट टिलरिंग करनी है।
1: हाँ हाँ
0: अब
1: हाँ
0: टिलरिंग कहाँ से होती है, जड़ के ठीक ऊपर एक गांठ होती है, वहां से टिलरिंग होती है,
1: कल्ले फूटते हैं
0: कल्ले फूटते हैं।
1: जी
0: जब उसे जड़ पकड़ के तैयार होगा, फिर देखता है मैं कल्ले निकालूं, लेकिन पता चला उसकी वो गांठ तो आपने 4 इंची 3 इंची नीचे घुसा दी,
1: जी जी
0: फिर
1: जी
0: पूरा
1: जी
0: पौधा पूरी मेहनत करता है और नई गांठ बनाता है। इसमें जो 5-7 दिन का नुकसान होता है, वो पूरी फसल का नुकसान होता है, तब टिलरिंग शुरू होती है। तो आपके खेत में 8वें दिन 7वें दिन जो कल्ला निकलना था, तो 12-15वें दिन निकलता है, तो ये 7-8 दिन का नुकसान पूरी फसल के ऊपर बहुत भारी पड़ता है।
1: तो ये जानकारी अगर हमारे किसान भाई रखेंगे और इस तरीके से अपने बासमती के खेतों में वो काम करेंगे, रोपाई करते समय इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, तो हम समझते हैं कि बासमती धान की बहुत अच्छी पैदावार किसान भाई ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी बासमती की नर्सरी की रोपाई के संबंध में हो चुकी है, कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे किसान भाइयों को?
0: मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सही उम्र की आपने पौध लेनी है, सही तरीके से उसको उखाड़ना है, और अपने खेत में व्यवस्थित तरीके से लगाना है, लेवलिंग का बहुत ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बताई, गहराई का ध्यान रखना है, दूरी का ध्यान रखना है, रास्ते अवश्य छोड़िए,
1: जी
0: एक बार आप छोड़ के देखोगे आपकी उपज बढ़ेगी, आगे अपने आप करने लगोगे।
1: जी जी
0: ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपकी फसल के लिए बहुत आवश्यक हैं, इन सबको आप अपनाइए और बहुत अच्छी फसल आप अपने खेत के अंदर लीजिए।
1: तो इस तरीके से इन सब बातों का ध्यान हमें रखना है। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
2: बासमती धान की रोपाई,
1: जी
2: इस बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रितेश शर्मा। जो कि संयुक्त निदेशक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में। और भाई डॉक्टर साहब ने बासमती धान की रोपाई के बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है भैया।
1: सही कह रहे हो भैया, देखो डॉक्टर साहब ने तो नर्सरी की बुआई से लेकर और उसकी रोपाई तक की जानकारी दे दी।
2: अब देखो भैया, हम खेत को अच्छे तरीके से तैयार करना है
1: जी,
2: और जो हरी खाद वाली फसलें हमने बो रखी सुने ढेंचा की भैया, उनकी पलटाई करनी है
1: जी,
2: और पलटाई करके भैया खेत में पानी भरना है, उसकी पडलिंग करनी है, और भाई फिर खेत को अच्छे तरीके से तैयार करके हम रोपाई करनी है।
1: सही कहा आपने, देखो ये तो हो गया खेत को तैयार करने वाली बात। भैया डॉक्टर साहब ने यो भी तो बताया कि जब हम धान की नर्सरी को उखाड़े तो उस समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। और भाई डॉक्टर साहब ने धान की नर्सरी को मतलब की पौध को भैया शोधित करने की बात भी बताई।
2: बिल्कुल सही बात है भैया। तो देखो धान की हम जो हमारी पौधा
1: जी
2: भैया रोपाई से पहले उसे हमें शोधित करना है, और फिर भैया हमें उसकी रोपाई करनी है, और रोपाई भैया हम रस्सी के माध्यम से करनी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा। और भाई रोपाई करते समय एक बात का ध्यान और रखना।
2: वो क्या भैया?
1: अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भैया जब हम रोपाई करें तो चार चार पांच पांच लाइनों के बीच में भैया थोड़ी सी जगह जरूर छोड़ दें
2: भाई आने जाने के लिए।
1: हाँ।
2: और भाई यो खेत का निरीक्षण करने के लिए, खेत में खाद डालने के लिए, या भैया पानी की व्यवस्था करने के लिए बहुत ही जरूरी है।
1: जैसे पाटा भी लगाया जाएगा, बताइए भैया पाटा भी दी जो हम धान में लगाए करें उसके लिए भी भैया इससे बड़ा फायदा।
2: तो भाई देखो इस तरीके से हमारे किसान भाई भाई बासमती धान की रोपाई कर सकते हैं, उसके सही तरीके से हम देखभाल कर सके हैं, और भैया अपनी बासमती की फसल से बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं।
1: ठीक कह रहे हो भैया। और देखो बासमती धान की ज्यादा जानकारी लेने के लिए किसान भाइयों को हम तो बस यही कहेंगे कि भाई हर मंगलवार को सुनते रहें हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है
3: बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
4: अरे मास्टर जी।
5: हाँ भैया।
4: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
5: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
4: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है,
5: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
4: हाँ, देश किसान किसान का मान बासमती धान।
6: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
7: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती,
8: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
9: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
2: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
9: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
2: तो अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला, इसका पाठ चार।
1: और देखो भैया इस पाठ चार में बासमती धान की रोपाई के संबंध में जानकारी बहुत अच्छी हो गई।
2: और देखो कोई बात यो हो कि भैया देखो बासमती धान की रोपाई तो हम करनी है, और भाई इसके लिए हमारे भाई जो है भैया डाल रहे हैं भैया जो हमारा पनीर हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, नर्सरी की बुआई की तैयारी चल रही है और बो भी रहे हैं
2: भैया, बो रहे हैं। और भाई देखो बात यो आ गई है कि भैया जो हमारी फसल हमारे खेत में खड़ी है
1: जी
2: भैया, हम उनकी देखभाल करनी है, और भैया गर्मी का मौसम है भैया, जो भी हमारे खेत में फसल खड़ी है भाई, चाहे तो गन्ने की फसल हो, चाहे चारे वाली फसल हो, या भैया सब्जी हो भैया, उसमें हमें नमी बनाकर रखनी है।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, देखो गर्मी बहुत हो रही
2: है,
1: जब हम अपनी फसल को देखने जावे और फसल मुरझाई हुई सी दिखाई दे ना तो बड़ा भैया जी मेला सा होए करे। अब भैया फसलों में सिंचाई टाइम पर करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
2: अब देखो भाई जहां तक बात है फसलों की सिंचाई की, तो भैया इसके लिए हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और भैया जहां तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात है, तो भाई इसका उद्देश्य है कि भैया हर खेत तक पानी की पहुंच सुनिश्चित हो सका।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हर खेत तक अगर पानी जावेगा
2: हाँ।
1: तो भैया देखो एक तो हमारी फसलें ठीक ठाक रहेंगी, किसान भाई परेशान नहीं होने के।
2: बिल्कुल।
1: और भैया जो हम दूर से पानी अपने खेतों तक लावे उसमें पानी की जो बर्बादी हो जाए वो भी ना होने की।
2: भाई देखो इस टाइम सभी फसलों की सिंचाई हो सका, भाई एक तो जो ये हमारी नहरें हैं
1: जी जी
2: भैया, उसमें पानी की व्यवस्था की जा रही है, पानी छोड़ा जा रहा है
1: जी।
2: साथ ही भैया जो हमारे नलकूप हो
1: हाँ।
2: चाहे तो भैया निजी नलकूप हो या भैया राजकीय नलकूप हो, इनके माध्यम से सिंचाई हो सके, तो भैया इसके लिए जो है निर्बाध रूप से जो है विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। अब देखो इस विद्युत आपूर्ति से हमारे जो किसान भाई बहन हैं अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, और भैया जब अब हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि हम दोपहर के टाइम पे अपने घर में आ जाएं, तो भैया जब

0: बिजली आवे और उसके पंखे के नीचे हम आराम करें तब भी बड़ा अच्छा लगे करें। तो बिजली तो भैया देखो ये जरूरी है ही।
1: भाई देखो, अच्छा जब भी लगता भाई दोपहर का टाइम, जब भैया बिजली आ जा और हम अपने ट्यूबवेल पर पहुंचते हैं और भैया स्टार्टर का बटन दबाने के बाद में जब भैया पानी की धार निकलती है और पानी की हौ से ठंडी ठंडी फुहारे हमारे मुंह तक आती हैं, तो भैया बहुत ही आनंद आता।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो देखो भाई ये सब बहुत ज्यादा फायदे हैं जिनको हमें करना चाहिए। सिंचाई समय पर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए भैया पानी की बर्बादी ना हो।
1: और भाई देखो, हमें हल्की सिंचाई करनी है, हल्का पानी लगाना है, बिल्कुल लबालब खेत को नहीं भरना है।
0: जी
1: और
0: जी
1: भैया हमें ये सुनिश्चित करना है कि भैया हम कम पानी में ज्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई कर सकें।
0: बिल्कुल ठीक बात है। और देखो किसान भाई हर बात को समझे हैं, बहुत समझदार हैं।
1: तो भाई देखो, हम आवश्यकता के हिसाब से भैया लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल पर भैया फसलों में सिंचाई करनी है, पानी लगाना है, जिससे कि भाई जो हमारी फसलों की बढ़वार है, जो पौधों की बढ़वार है भैया, वो हो सके और हमें जो अपनी फसलों से बढ़िया उत्पादन मिल सके।
0: चलो भैया देखो बातचीत तो हो ही रही, किसान भाई सुन ही रहे हैं, पर क्यों ना अभी ये कुछ संदेश सुन लिए जावे।
1: ठीक है भैया।

0: 45 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
2: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
2: खुशहाली का नया प्रयोग।
3: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
4: हेलो
5: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
4: फिर से?
6: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
7: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
4: सर इतने कहाँ से?
7: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख
8: क्या हुआ पापा?
4: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
8: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
4: फ्रॉड?
8: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
4: तो पैसे गवाओगे।
9: आरबीआई कहता है,
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
11: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
11: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: AIR at 90.
1: तो भाई देखो, हमने संदेश तो सुन लिया प्रमोद भाई।
2: हाँ भैया, संदेश तो हमने सुन लिए, पर एक बात बताओ।
1: हाँ भैया पूछो।
2: भाई आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कभी सुना कि ना?
1: अरे कभी नहीं भैया, बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं।
2: भैया इस बारे में बताओ जरा सा।
1: भाई देखो, जैसे भैया सूखा, बाढ़ या आपदा की वजह से जो भैया हमारी फसल बर्बाद हो जाए, हाँ, तो भैया अगर हम फसल बीमा करवा ले वो,
2: अच्छा,
1: तो भैया हमें इसका मुआवजा मिलता है।
2: अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो भैया देखो, इस योजना का लाभ तो उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल उठाना चाहिए। और भाई देखो, इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता।
2: अच्छा
1: भाई, रबी फसलों के लिए तो 1.5%, और भैया खरीफ फसलों के लिए 2%, और जो हमारी नकदी फसल है,
2: अच्छा,
1: उनमें 5% प्रीमियम देना पड़ता है केवल।
2: अरे तो भाई बहुत बढ़िया।

0: बात है, ये तो
1: हम्म।
0: किसान भाइयों के लिए लाभ की योजना है। तो देखो भाई, इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए, और हम तो भैया जरूर उठाएंगे। अब लाभ किस चीज का उठाना तुम यो बताओ।
1: भाई देखो, अब तो बहन भाइयों को हम सुनवा रहे हैं रागनी, जिससे कि हमारे भाई जो अपने काम की जो थकान दूर कर सके। तो भाई और सुनते हैं जो रागनी सेठपाल आर्य साथियों से।
0: ठीक है भैया।

0: संभावना है और भैया तापमान में 102 डिग्री से जो है भैया बढ़ोतरी होने की उम्मीद है,
1: मतलब 1 से 2 डिग्री तापमान बढ़ सके अभी।
0: बिल्कुल। तो भाई किसान भाइयों को उसी हिसाब से भैया अपने खेत में काम करने हैं।
1: तो देखो भैया, किसान भाई अपने खेतों में काम करेंगे और भैया घर से बाहर अगर निकलेंगे तो वो मौसम के हिसाब से निकलेंगे, सावधानी बरतेंगे और स्वस्थ रहने का प्रयास करेंगे।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो, हमारा जो कार्यक्रम है कृषि जगत, भाइयों किसान भाइयों कैसा लगता है इसमें, भाई वो किस तरह की जानकारी चाहते हैं और जो जानकारी हम देते हैं वो भाइयों के कितने काम आती है, तो भैया वो हमें चिट्ठी लिख के जरूर बतावा। और भाई चिट्ठी लिखने के लिए जो है भाइयों को पता बता दो।
1: हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 246 सच्चे 3।
0: तो भाई इस पते पे हमें थारी चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। और भैया अगर खेती बाड़ी में किसी वजह से भाई चिट्ठी लिखने की फुर्सत नहीं मिलती है, भैया चिट्ठी नहीं लिख पाते हैं, तो भाई एक और तरीका भैया हम तक अपनी बात पहुंचाने का
1: बिल्कुल बिल्कुल बता दो बस।
0: तो भाई देखो हमारा एक मोबाइल नंबर है, भैया मोबाइल नंबर है 9457-07-82-88। भाई इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप मैसेज हमें भेज सकते हैं।
1: बिल्कुल। और भैया देखो, अब तो हर भाई की जेब में भैया एंड्रॉयड फोन पड़ा हुआ है और भैया जब चाहे वो हमारे पास में व्हाट्सएप मैसेज भेज सके।
0: बिल्कुल। अब देखो इसके अलावा जो भैया हमारा फेसबुक चैनल है या भैया हमारा जो इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है और यूट्यूब चैनल है, भाई इसे भी फॉलो कर सकते हैं हमारे भाई।
1: बिल्कुल। तो देखिए अब भाई बातें करते करते कार्यक्रम का समय का पूरा हो गया, पता ही नहीं चला भाई, अब तो विदा लेने का समय आ गया।
0: तो भाई देखो कार्यक्रम को संपन्न करते हैं और दोनों भैया विदा लेते हुए भाइयों से कर लेते हैं राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रही थी अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल। रेडियो प्रसारण की गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में लीजिए सुनिए मशहूर शायर श्री सैयद एजाजुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेरठी से विशेष भेंटवार्ता।
1: 90 साल बेमिसाल। श्रोताओं, आप जानते हैं हम आकाशवाणी के 90 वर्षों का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आकाशवाणी को जो 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस 8 जून को, उन्हें हम मना रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज जो हमारा कार्यक्रम है 90 साल बेमिसाल, इसमें हमारे खास मेहमान हैं पॉपुलर मेरठी साहब। पॉपुलर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत शुक्रिया शोभित भाई।
1: अब पॉपुलर साहब के बारे में कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम अपने सुनने वालों को ये बता देना चाहते हैं कि बहुत अजीम शायर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और रेडियो से जो इनका वास्ता है, रेडियो से जो इनका रिश्ता है, वो बहुत पुराना है। आज हम पॉपुलर साहब से यही बात करने वाले हैं।
2: मैं जो इब्तदा शुरुआत जो हुई वो रेडियो से 77 से हुई। हमारे शहर में एक न्यूज रीडर थे आकाशवाणी में, जाहिद अली खान साहब, वो खबरें पढ़ा करते थे, तो वो शायर भी बहुत अच्छे थे, तो अक्सर मेरठ आया करते थे। तो हमारे यहाँ जो काव्य गोष्ठियाँ, अदबी माहौल था, तो उसमें बराबर उनकी शिरकत रहती थी। दिल्ली आते थे तो उनसे हमारा एक ताल्लुक बन गया था, तो वो हमारे घर भी आते थे तो फिर रुकते थे एक दो दिन के लिए। तो वो सिलसिला, क्योंकि उस वक्त एक अदबी माहौल था पूरे हमारे शहर में, घर में भी, जहाँ हमने तालीम हासिल की कॉलेज में भी, उसमें भी जो हमारे असातिज़ा थे जो हमें पढ़ाया करते थे, तो उन्हें सबको शेर व शायरी से शगफ था, शेर कहते थे। वहाँ भी अदबी माहौल था, तो वहाँ तमसीली मुशायरे हुआ करते थे, यानी कि हम कोई किरदार अदा करते थे किसी बड़े शायर का। तो इस तरह वहाँ से मेरी शुरुआत हुई
1: जी।
2: तो उसमें यह हुआ कि जाहिद अली खान साहब, सबसे पहले तो ये हुआ कि इमरजेंसी के बाद एक बड़ा मुशायरा हमारे फैजाम इंटर कॉलेज में हुआ,
1: मेरठ में।
2: हाँ, मैं यूनियन का सदर भी था उस जमाने में
1: जी।
2: तो ये हुआ कि जाहिद अली खान भी उस मुशायरे में आए हुए थे, तो वो मुशायरा बहुत कामयाब हुआ क्योंकि इमरजेंसी के बाद हुआ। मैं कॉलेज की यूनियन का सदर था, स्टूडेंट यूनियन के, तो मुझे उसमें कलाम पढ़ने का मौका मिल गया था। मैंने गजल पढ़ी थी उसमें, उसकी जो निजामत कर रहे थे संचालन वो थे वसीम बरेलवी था।
1: अच्छा।
2: और उसमें खुमार साहब, तभी हिंदुस्तान के बुजुर्ग बड़े शोरा, उसमें मौजूद थे। तो क्योंकि वहाँ MLA जीते थे मंजूर साहब, उन्होंने लोगों से वादा किया था कि वो एक बड़ा मुशायरा करेंगे। उस वक्त इस तरह की अदबी तकरीबात करते थे तो लोग बहुत खुश होते थे, तो उन्होंने लोगों ने जिताया भी था इसी तरह से, तो उन्होंने वो मुशायरा रखा था। मैं यूनियन का सदर होने की वजह से तो मुझे इसमें कलाम पढ़ने का मौका मिल गया था। शुरुआत मुझसे ही उस मुशायरे की हुई। तो मैंने गजल पढ़ी थी कि घर से जैसे ही मियाँ जानी पे दफ्तर निकले, एक परिंदे की तरह बीवी के 100 पर निकले। उसमें एक शेर हो गया था कि मैं ये कहता ही रहा मैं तो नहीं दीवाना, ये अलग बात मेरी जेब से पत्थर निकले।
1: अच्छा।
2: तो ये शेर जो था ये इमरजेंसी पे शादी का रहा था
1: जी।
2: तो उस वक्त जो कसूरवार थे, नहीं भी थे, सबको जेलें दिखाई जा रही थी, तो सब असातिज़ा ने, बड़े शोरा ने मुझे दाद दी कि क्या शेर हो गया है, और उसी दूसरे दिन अखबार में। तो वहां से तो मेरा एक सिलसिला शुरू हुआ
1: जी।
2: उस वक्त ये हुआ कि उससे पहले जाहिद अली खान साहब से मैंने बताया ना, मुलाकात थी, न्यूज रीडर थे, तो उन्होंने मुझे रेडियो की उर्दू सर्विस से मुतारिफ कराया
1: जी।
2: वो सुरैया सईद वो प्रोग्राम देखती थी, नई नस्ल नई रोशनी
1: जी,
2: एक प्रोग्राम आता था नौजवानों के लिए, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें कलाम पढ़ेंगे, तो मैं उसमें कलाम पढ़ता था, 3 महीने बाद जाता था। तो मेरा उस वक्त तखल्लुस जो था, उपनाम
1: जी,
2: वो पॉपुलर था, वो एजाज था
1: जी,
2: तो एजाज मेरा ठीक रखा था। तो लेकिन जब मुझे लोग रेडियो सुनते थे, उस जमाने में बहुत सुना जाता था रेडियो, टीवी वगैरह तो थे नहीं, तो लोग कहते थे आप तो बहुत पॉपुलर है, कल ही आपको रेडियो पर सुना
1: जी।
2: तो बस वहां से तहरीक हुई कि ऐसा नाम रखा जाए, क्योंकि मैं मिजा में लिख रहा था हाथ के रंग में, तो फिर मैंने अपना तखल्लुस जो था, उपनाम, टाइटल, पॉपुलर रखा
1: जी।
2: लोगों ने एतराज भी किया कि आप तो उर्दू के शायर हैं और आपने अंग्रेजी का उपनाम रख लिया, तो मैंने कहा नहीं, अब रेडियो से आता है, रेडियो वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो वहां से रेडियो का सिलसिला तो तब से शुरू हुआ। फिर उसके बाद तो आकाशवाणी में मैं कैजुअल आर्टिस्ट भी रहा, उर्दू सर्विस होते रहे प्रोग्राम, फिर आकाशवाणी में परवेज आलम साहब आ गए थे
1: जी।
2: आजकल वो BBC लंदन में है, वो भी एक बड़े न्यूज रीडर थे, प्रोग्राम पेश किया करते थे। पैक्स थे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, तो उन्होंने मुझसे बहुत से ड्रामे भी लिखवाए जो हमने मऊलंकर हाल वहाँ दिल्ली में होता था वहाँ स्टेज किए। तो वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे, फनकार थे, रेडियो पे जो ड्रामे आते थे स्क्रिप्ट लेके हमने वो ड्रामे भी किए। तो एक ड्रामा था जिसे मैंने लिखा था, चौधरी बंधु का मुशायरा, वो तकरीबन एक घंटे का था। उसमें मुख्तलिफ शोरा की आवाजें हमने रिकॉर्ड की थी। उसमें इरफान आदमी साहब ने बशीर बदर का रोल किया था।
1: अच्छा।
2: तो वो इस तरह से तमसीली
1: मुशायरा,
2: तो उसमें गवार मैंने बताया कि चौधरी बंधु ना, तो उसमें वो लव लहजा चेंज किया था, जैसे ही मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है वो किस तरह से निजामत करेगा संचालन, हजरात अब एक ऐसे शायर को बुला रहा हूँ, तो ये पूरा एक ड्रामाई अंदाज से प्रोग्राम शुरू हुआ। तो मैंने इसकी निजामत भी की थी, तो मैं चौधरी बंधु बना था।
1: अच्छा, तो आपने हजरात और शायरों को बुलाया।
2: अब शायरों को बुला रहे हैं, एक ऐसे बड़े शायर को बुला रहे हैं जिन्हों का बहुत बड़ा नाम।
1: अच्छा, जिन्हों का।
2: तो लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, तो ये उर्दू सर्विस से भी नशर होता रहा
1: जी,
2: और फिर तो आकाशवाणी से ही बराबर ना शुरू हुआ। तो ये परवेज आलम साहब ने इस सिलसिले से काम शुरू किया। नीलमा सिंह थी हमारे साथ थी इसमें उसी प्रोग्राम में, बाद में वो न्यूज रीडर हुई अभी पिछले दिनों आकाशवाणी में। तो मेरा सभी लोगों से ताल्लुक था, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, शुरुआती दौर था उसमें थे, हमारे साथ प्रोग्राम करते थे रईस सिद्दीकी।
1: अच्छा।
2: तो वो कैजुअल आर्टिस्ट थे वो भी, फिर बाद में वो पैक्स हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने उर्दू मजलिस से प्रोग्राम आते रहे, वो प्रोग्राम करते रहे। फिर इसके बाद तो ये सिलसिला बढ़ता गया, जो जो मुशायरे पढ़ता रहा, तो मुझे फिर रेडियो स्टेशन से दावतनामे आने लगे, लखनऊ थे, जालिंदर थे, लुधियाना वगैरह जब हम जाते थे तो वहाँ आलू आलिया जी थे, नॉर्थ जोन कल्चरल करके था, तो फिर उन्होंने हमें रेडियो से मुतारिफ कराए, बहुत से प्रोग्राम हमने वहाँ किए जालिंदर में इधर उधर। बस क्या बताएं, इतना दूरदर्शन पे भी प्रोग्राम होते थे, रेडियो पर भी मुशायरे आते थे, तमाम हिंदुस्तान के बड़े शोरा के साथ मुशायरा। मेरे जो शोहरत में सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो रेडियो टीवी का है, और फिर मैंने ग्वालियर आकाशवाणी, और फिर बॉम्बे, और फिर आपके पटना, हैदराबाद, यहाँ इन जगहों पे मुशायरे होते थे और दूरदर्शन से बराबर। अभी भी मैं हाल ही में 12 तारीख को एक प्रोग्राम मेरा रिकॉर्ड हुआ है हैदराबाद में, वन हैदराबाद के एक बहुत बड़े शायर थे सुलेमान खतीब साहब, तो उनके साहबजादे जो ऐसे थे आए हुए थे, तो उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम उनके नज्मों पर एक हॉल में किया था। फिर उसके बाद मेरा कुछ एक सिलसिला बना तो रेडियो से भी, तो मैं जहाँ भी जिस शहर में भी जाता था इसी तरह से रिकॉर्डिंग होती थी
1: जी।
2: तो
1: बिल्कुल, क्योंकि आकाशवाणी केंद्र वाले लोग क्या होता है कि वो सोचते हैं कि भाई इतना अजीम शायर अगर हमारे शहर में आया है तो

0: थोड़ी सी उसकी सेवाओं का अवसर हम उठा लें। पॉपुलर साहब, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि आपका जो तखल्लुस है, जो आपने नाम इख्तियार
1: बिल्कुल
0: किया,
1: बिल्कुल
0: वो रेडियो की बदौलत है।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रेडियो से ये नाम मिला मुझे। और फिर उसके बाद देखिए, हम लोग जो है ना पॉजिटिव सोचते हैं, तो रेडियो से जब ये सिलसिला बना तो पूरी दुनिया में मुझे रेडियो से मुतारिफ, रेडियो से मैं फिर लंदन गया, अमेरिका गया, यूएसए वगैरह, बड़े जहां जहां गया तो मैंने वहां रेडियो से ही प्रोग्राम किए।
0: जी
1: आकाशवाणी न्यूयॉर्क में
0: जी
1: एक रेडियो स्टेशन से मेरा इंटरव्यू हुआ, अभी मैं हाल ही में वैंकूवर गया था तो वो भी वहाँ के सारे चैनलों ने मुझे रिकॉर्ड किया, तो वो बहुत अच्छा है मुझे रहा।
0: जी पॉपुलर साहब, अब चूंकि 90 सालों का जश्न हम मना रहे हैं आकाशवाणी के, रेडियो के, चूंकि ये दौर थोड़ा सा बदला है। आज के दौर पे हम सोशल मीडिया को देखते हैं, हम AI का दौर है, आर्टिफिशियल
1: बिल्कुल
0: इंटेलिजेंस
1: आर्टिफिशियल
0: का,
1: उसका
0: लेकिन जो आकाशवाणी है या जो रेडियो है, उसका मुस्तकबिल कैसा देखते हैं आप?
1: देखिए, मुस्तकबिल तो उसी तरह से है। आज भी जो रेडियो से जुड़े हुए लोग हैं, आप देखिए, आप ये प्रोग्राम, आपके भी नशर होते हैं, आकाशवाणी से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, उर्दू मजलिस बराबर, अभी मेरी रिकॉर्डिंग भी होनी है उसमें एक
0: जी
1: प्रोग्राम, वो ऑडियंस के सामने कर रहे हैं रेडियो पर, तो मुझे अभी आया था कि 2-1 महीने बाद या 1 महीने बाद जैसा भी होगा प्रोग्राम बनेगा।
0: जी
1: तो क्योंकि रेडियो सुनने वाले जो वो अलग ही लोग हैं, वो सुनते हैं और मुझे बराबर मैसेज भी आते हैं कि आपको हमने अभी नजीबाबाद रेडियो स्टेशन से सुना, तो ये सब सिलसिला जारी व सारी है।
0: हाँ
1: और
0: जी
1: सबसे बड़ा अहम रोल तो मैं जोगित भाई मानता हूँ कि रेडियो का मेरी जिंदगी में है।
0: जी
1: फिर तो बहुत से मुख्तलिफ चैनलों पर अब तो रात दिन ये सिलसिले हैं,
0: जी
1: अब जब से यूट्यूब और ये सारे चैनल आए हैं तो आप जानते ही हैं।
0: जी पॉपुलर साहब, अगर रेडियो की एक सबसे खास बात आज के समय में स्पेशली अगर हम कहें, तो वो कौन सी खास बात है जो जो रेडियो को खास बनाती है, जो आकाशवाणी को खास बनाती है आपके हिसाब से?
1: देखिए, इसमें ना एक आदमी जो है, अब जैसे ये लोग आए हैं, अच्छे
0: जी
1: शायर हैं, मोहतबर शायर हैं, मुशायरे पढ़ते हैं, तो लेकिन हम रेडियो पे इसलिए पढ़ते हैं कि एक रिकॉर्ड होता है, आपके पास आए हैं, सबसे मुलाकात होगी। और जो मुशायरों में नहीं आ पाते, जो रेडियो सुनते हैं, वो भी हमसे मुतारिफ है, हमें जानते हैं, तो हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, आज भी मिलते हैं बहुत से लोग, आपको एक जमाने से रेडियो पे सुन रहे हैं हम। और आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं शोभित भाई, आप देखिए यहाँ अदबी महफिलें आप करा रहे हैं, चाहे
0: जी
1: वो कवि सम्मेलन हो, अभी यहाँ जितने कवि आएंगे वो सब फेसबुक पर और बहुत से चैनल हैं
0: प्लेटफॉर्म्स पर
1: सब
0: डालेंगे।
1: प्लेटफॉर्म पर, वो आप आते हैं और वो बताते हैं कि रेडियो, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि यार रेडियो पे,
0: जी बेशक, आपने
1: तो
0: बहुत अच्छी बात कही पॉपुलर साहब की, रेडियो का जो मुकाम है वो ऐसे ही रहेगा, चाहे कोई और
1: हाँ।
0: जरिया
1: अब
0: आए।
1: देखिए, 90 साल हो गए उस जमाने से, हमारे तो बहुत ऐसे बुजुर्ग शोरा थे जो रेडियो से वाबस्ता
0: जी
1: रहे, बस क्या बताएं, उन सब लोगों से मिलना जुलना होता था। और आप ही देखिए, जब हम जाहिद भाई को मिलवाते थे, वो न्यूज रीडर से खबरें पढ़ा करते थे, उनका एक मखसूस लहजा था,
0: जी
1: अब आप जाहिद अली खान थे, उर्दू में खबरें सुनिए, हम जब उन्हें लोगों से मिलवाते थे, आप यकीन जानिए, हम कहते थे जाहिद साहब हैं, रेडियो से आए हैं,
0: रेडियो से हैं।
1: आप लोग कोई उनकी दावत रख रहा है, बराबर वो इतने बिजी रहते थे, तो कहते थे कि पॉपुलर साहब आपने मुझे जगह जगह मुतारिफ कराया, क्योंकि वो उनसे आवाज से मुतारिफ थे, उनकी
0: जी
1: आवाज को जानते थे। अब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, तो बराबर मैं उनका जिक्र करता हूँ, कोई सी भी इंटरव्यू में कहीं भी जाता हूँ, हमारी जो बुनियादें मजबूत की, हमें एक रेडियो से मुतारिफ कराया, मिलवाया, तो उन्होंने जब मुझे सुरैया सईद साहिबा से, जब मैं आकाशवाणी का पहला काम कर रहा था, उन्होंने कहा था कि देखो मैं आपको यहाँ ले आया हूँ, अभी आपकी सलाहियत है कि आप किस तरह से मरातिम बनाते हैं ताल्लुक, तो लेकिन फिर जिनसे भी जो ताल्लुक बना तो वो उसी तरह से बना,
0: वो ऐसे
1: चाहे वो
0: बने कि वो आज तक कायम है।
1: आज तक कायम है और बिल्कुल घर की तरह से है।
0: जी बिल्कुल पॉपुलर साहब, बहुत सारी बातें हमने आपसे की 90 साल के इस जश्न के बारे में। हम ये दुआ करते हैं कि जब 10 साल बाद हम 100 साल का जश्न मना रहे हों,
1: जी
0: आप हमारे साथ इसी
1: हाँ
0: तरीके से स्टूडियो में हों और हम उसके
1: बिल्कुल,
0: बारे में भी ऐसी चर्चा
1: मैं
0: करें।
1: देखिए 90 साल इस जश्न के लिए अपने नाजरीन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनसे कहता हूँ कि देखिए रेडियो से आपको बहुत सी मालूमात हासिल होती हैं, हर तरह हर टॉपिक पर यहाँ पर आपके पास सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, तो बहरहाल रेडियो को सुने, ज्यादा से ज्यादा सुने, और जो भी आप चाहें रेडियो से कोई चीज आपको सुनना है, वहां पर मैं इंशाइये वगैरह लिखता था,
0: जी
1: तो उर्दू मजलिस से मैं वो भी पढ़ता था, नसर में लिखता था ना
0: जी
1: मैं
0: जी
1: गद में, तो मैं वो भी हास्य व्यंग में ही लिखता हूँ, तो मेरी अभी किताब आई है यादों के दरीचे,
0: जी
1: तो उसमें मुझे रही थी दिख बराबर, कभी गजल के लिए बुलाते थे, कभी शायरी के लिए बुलाते थे, और कभी वो नसर में, तो मैंने उन बड़े बुजुर्ग जो राइटर थे, मुश्तबा हुसैन, दलीप सिंह
0: जी
1: और अफैयाद अहमद फैजी साहब, वो रेडियो पे आते जाते रहते थे दिल्ली में, उसमें कलाम आता था, कलाम शायर में पढ़ता था
0: जी
1: या फिर एक नथर में पढ़ता था, फिर एक भजन वगैरह या कीर्तन को होता था,
0: जी
1: तो वो आधे घंटे का एक प्रोग्राम होता था।
0: बहुत बहुत शुक्रिया पॉपुलर साहब आपका।

रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मशहूर शायर श्री सैयद एजाजुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेरठी से शोभित शर्मा की बातचीत अभी आपने सुनी और इसके साथ ही 90 साल बेमिसाल कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घर से। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार आरडी बर्मन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी। गीत के बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के और संगीत निर्देशन चित्रगुप्त का।

श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

श्रोताओं अभी आपने ये गीत सुना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की युगल आवाजों में फिल्म घूंघट सी। और इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर।

यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है। हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल प्रसारित कुछ विशेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आइए पहले हम आपको आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आज रात 10 बजे। रात 9:30 बजे सुनेंगे कवि गोष्ठी। प्रतिभागी हैं अंजुला अरोड़ा, आशा त्यागी, सुमन युगल और डॉक्टर नीरज शर्मा। संचालन कर रहेंगी लक्ष्मी डबराल। सुगम संगीत में 7:32 पर आप सुनेंगे शीलाधर की आवाज में चंद गजलें। और फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुनेंगे रात 8 बजे कार्यक्रम गीत संध्या में। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 8:30 बजे और श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश रात 10:30 बजे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रमों की और अब हम आपको कल प्रसारित कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कल रात 9:30 बजे। कानून की बात, ये कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 7:32 पर। खड़ी बोली का क्रमिक विकास, डॉक्टर नवीन चंद लोहानी की ये वार्ता प्रसारित की जाएगी विविधा कार्यक्रम में 6:45 पर। रिश्ता ये खास है, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 5:00 बजे और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे नगर निगम कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के नगर आयुक्त पीएल शाह से की गई बातचीत। यूरिया एवं डीएपी के उपयोग को कम करने में जैविक एवं प्राकृतिक खेती के बायो इनपुट्स का महत्व, इस विषय पर डॉक्टर चंद्र भानु से की गई बातचीत किसान भाई सुनेंगे 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में। हथेलियों में स्वास्थ्य, इस विषय पर जानकारी दी जाएगी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:05 पर। खेती की बातें क्रम में 7:10 पर चर्चा का विषय रहेगा संतुलित उर्वरकों का प्रयोग। धरती गाती है कार्यक्रम में 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे शशिकला राजपूत के स्वर में रुहिलखंडी लोकगीत बात आसपास की, ये कार्यक्रम सुनिएगा 9:50 पर। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर आप सुनेंगे कल 10:00 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 12:05 पर वासुदेव देशपांडे का गायन प्रसारित किया जाएगा। घर संसार कार्यक्रम में 1:15 पर क्रम होगा बात थारे मन की और साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा विश्व साइकिल दिवस। मीना विस्ट के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में। सुगम संगीत में 7:45 पर जोगिंदर कौर के स्वर में शब्द सुनवाए जाएंगे मुझे याद है जरा जरा, ये कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे रात 10:30 बजे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 7:18 हो चुके हैं, कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण, कहा प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला, ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन, कहा शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए कार्य कर रही है।
6: इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं, उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी

0: इसे समाप्त हो गए हैं।
1: मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के चिलुआताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, इन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। वहीं सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनावों में अपना वोट डालें। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। श्री कुमार 2 दिवसीय दौरे पर कल आगरा पहुंचे थे।
3: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
1: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के मास्टर प्लान और लेआउट का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री गोयल ने कल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 25 से 29 सितंबर तक होने वाला ये शो और अधिक भव्यता के साथ आयोजित किया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आगरा के बिरहरू को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार इस उपलब्धि के लिए कल दिल्ली में सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि

0: के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया है।
1: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनूं और गांव की दुर्दशा पहले बहुत ज्यादा खराब थी, लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की, इंटरलॉक, सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर, सचिवालय, आरआरसी सेंटर, लैब, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत से कार्य करे गए, सरकार को बहुत धन्यवाद।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। बजरंगबली के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए शीलाधर की आवाज में चंद गजलें। कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गजल से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं शीलाधर की आवाज में चंद गजलें, एक और पेशकश इसी आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं शीलाधर की आवाज़ में ये गज़ल, और इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है मैं हूं अलादीन। गीत के बोल हैं फारूक कैसर के और संगीत है उषा खन्ना का।

शतों कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म काला पत्थर से। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का।

श्रोताओं, गीत संध्या कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में खोटा पैसा फिल्म का गीत। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार मदन मोहन।

अखियों के झरोखों से अभी अपने इस फिल्म में हेमलता की आवाज में ये गीत सुना, और अब आइए सुनते हैं फिल्म तलाश का गीत। गीत के बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के और धुन तैयार की है एसडी बर्मन ने।

और अब श्रोताओं, गीत संध्या कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म हंसते जख्म से लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल कैफी आजमी के हैं और धुन है मदन मोहन की।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं हंसते जख्म फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज में। और इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या अब संपन्न होता है।

अभी आप सुन रही थी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म के कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत उदित नारायण की आवाज में। गीत के बोल हैं समीर के और संगीत है नदीम श्रवण का।

सूचना, ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

शतौर राजा हिंदुस्तानी फिल्म के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और इसी क्रम में आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में इसी फिल्म का एक और गीत।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने राजा हिंदुस्तानी फिल्म के कुछ गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्चन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
2: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
4: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार

0: करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा मशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवम्बर 2024 में शुरुआत

0: दो वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
1: 2-3 branches also. वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच

भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्षीय हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टोंटन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने सीबीएसई की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से जमीन पर वार करने वाले अंदरूनी मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज्यादा सारेफीन का संगे मील पार कर लिया है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। और खवातीन क्रिकेट में आज रात टोंटन में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सीबीएसई की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम सिस्टम खिदमात की खरीद से मुतालिक मामलात की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी की सरबराही सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन राधा चौहान करेंगी। कमेटी से अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अमले और तरबियत के महकमे को पेश करने को कहा गया है। तलबा को फराहम करदा स्कैंड कॉपियों में पाए गए मामलात के वेरिफिकेशन का अमल और 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच जारी है। ये सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा को दस्तियाब है जिन्होंने जांच किए गए अपने जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल की है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: शरपंसन अनासर की जानिब से लगातार साइबर हमलों की वजह से रुकावट के बाद सीबीएसई पोर्टल जल्द ही लाइव कर दिया गया है। ताहम सीबीएसई ने यकीन दहानी कराई है कि वो तलबा की हर तरह से मदद को यकीनी बनाने के लिए लगातार चौकसी बरत रहा है। सीबीएसई ने मजीद कहा है कि तलबा के फीडबैक की बुनियाद पर प्लेटफॉर्म को मजीद बेहतर किया गया है और सेशन टाइम में भी इजाफा किया गया है ताकि कामकाज को ज्यादा आसान तर्ज पर और बिला रुकावट तरीके से अंजाम दिया जा सके। सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच से मुतालिक उसका पोर्टल फिलहाल 8,000 से ज्यादा सारिफिन की मदद कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में सीबीएसई ने बताया है कि 16,000 से ज्यादा तलबा अब तक कामयाबी से अपने मंदरजात पेश कर चुके हैं। सीबीएसई का पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा और ऑफलाइन दरख्वास्तें या मुद्दत गुजरने के बाद दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: इस दौरान सीनियर आईएएस अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनकी तकरूरी राहुल सिंह की जगह हुई है जिनका बतौर एडिशनल सेक्रेटरी ज़िरात और किसानों की बहबूद के महकमे में तबादला कर दिया गया है। हुकूमत ने वरुण भारद्वाज को भी सीबीएसई में सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। वो आला तालीम के महकमे में डायरेक्टर के फराइज अंजाम दे रहे थे। तकरीरों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने इन तकरीरात को मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाख्तियार बनने का ताकतवर वसीला है जो

0: के गाएं, गीत मिलन के गाएं। मानसून जब रहे प्रभावित, बादल घिर घिर आए, अग्नित वृक्ष लगाएं हम, अग्नित वृक्ष लगाएं। एक वृक्ष तो एक प्राण है, एक वृक्ष तो एक प्राण है, दो से ज्यादा परिजन, हरियाली से मरुस्थल हो यह, खिलता नंदन कानन, खिलता नंदन कानन। वृक्षारोपण करे नियति को, फिर से निर्मल चंदन, जन जन के मन तक ये संदेश फैलाएं, संकल्पों के पौधे रोपे, अग्नित वृक्ष लगाएं, अग्नित वृक्ष लगाएं। हरी भरी हो जाए धरती, हम सबका अरमान है, पर्यावरण रहे सुरक्षित, अपना यह भारत की शान है, यह भारत की शान है। प्रदूषण को रोकें हम, वातावरण को स्वच्छ बनाएं, यत्र तत्र कचरा ना डालें, अपनी आदत इसे बनाएं। छुआछूत ना फैलाएं, रहे सुरक्षित सबकी जान, स्वच्छ जल साफ हवा उत्तर पर्यावरण की पहचान। जलथल नव तीनों की एक सी कहानी है, इसको स्वच्छ बनाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है।
1: बहुत सुंदर नीरज जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी अंजुला अरोड़ा जी को, कि वृक्ष धरा के मित्र हैं, वृक्ष धरा के मित्र हैं, देते शुद्ध समीर, इनको मत काटो मनुज, फल मिलता गंभीर, फल मिलता गंभीर। अंजुला अरोड़ा जी,
2: धन्यवाद। मैं आज इस मंच से प्रदूषण के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। वृक्षों से ही सांस हमारी, वृक्षों से ही सांस हमारी, वृक्षों से प्राण हमारे हैं, वृक्षों से प्राण हमारे हैं। वृक्ष हमारी दुनिया सारी, वृक्ष हमारी दुनिया सारी, वृक्षों से उजियारे हैं, वृक्षों से उजियारे हैं। वृक्षों से हैं चिड़ियों के घर हैं, वृक्षों से ठंडी छाया है, वृक्षों से चिड़ियों के घर हैं, वृक्षों से ठंडी छाया है। वृक्ष संपदा है प्राकृतिक, वृक्ष संपदा है प्राकृतिक, वृक्षों से जग की माया है, वृक्षों से जग की माया है। वृक्षों से बादल बदली है, वृक्षों से बादल बदली है, वृक्षों से बरखा रानी है, वृक्षों से बरखा रानी है। वृक्षों से चौदिश हरियाली, वृक्षों से चौदिश हरियाली, वृक्षों से हवा सुहानी है, वृक्षों से हवा सुहानी है। वृक्ष लगाए मिलकर आओ, वृक्ष लगाए मिलकर आओ, वृक्षों को पोसे पाले हम, वृक्षों को पोसे पाले हम। वृक्षों से पर्यावरण सुधारें, वृक्षों से पर्यावरण सुधारें, वृक्षों की महिमा गाले हम, वृक्षों की महिमा गाले हम। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक कविता पेश करती हूँ। धरती कहती है बादल से, धरती कहती है बादल से, प्यास मेरी बुझा दो ना, छा जाओ तुम मेरे वजूद पे, धानी मुझे बना दो ना। सावन बीता भादो रीता, सावन बीता भादो रीता, कितनी ऋतुएं बीत गईं, लगा चटकने सीना मेरा, लगा चटकने सीना मेरा। अब तो दर्श दिखा दो ना, अब तो दर्श दिखा दो ना। मिलती तुमसे दूर क्षितिज पर, मिलती तुमसे दूर क्षितिज पर वो मिलन आभासी है, पर वो मिलन आभासी है। बरसों मुझ पर गरज तड़क के, अब मुझको हर्षा दो ना, अब मुझको हर्षा दो ना। आओ मेरे शाम सलोने, तुम बिन मेरे दिन रहन है सूने। आ जाओ तुम उमड़ घुमड़ कर, आ जाओ तुम उमड़ घुमड़ कर, रिमझिम बूंदे बरसा दो ना, रिमझिम बूंदे बरसा दो ना। बाहा पसारे कब से तकती, बाहा पसारे कब से तकती, पास तुम्हारे आ नहीं सकती। आ जाओ अब तुम ही प्यारे, हरियाली लहरा दो ना, हरियाली लहरा दो ना। धरती कहती है बादल से, प्यास मेरी बुझा दो ना, प्यास मेरी बुझा दो ना। छा जाओ तुम मेरे वजूद पे, धानी मुझे बना दो ना, धानी मुझे बना दो ना।
1: इस सुंदर पर्यावरण गीत के बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुमन देवी जी को। दो पंक्तियों के साथ मैं उनका स्वागत करती हूँ कि नदिया पर्वत वन सभी, नदिया पर्वत वन सभी, का करिए तुम त्राण, नदिया पर्वत वन सभी, का करिए तुम त्राण, स्वच्छ रहे यदि यह सभी

0: तभी बचेंगे प्राण। तो सुमन देवी जी।
1: धन्यवाद लक्ष्मी जी। मैं पर्यावरण से संबंधित एक रचना, जिसे आवाहन गीत कहना चाहूंगी, प्रस्तुत कर रही हूँ। पर्यावरण

होगा, पर्यावरण बचाना होगा, स्वर्ग धरा पर लाना होगा, सबको आगे आना होगा। संतुलन बिगड़े वो काम न कर, दानी पेड़ों के तू दाम न कर, वसुधा का अपमान न कर, मंगल कानन बियाबान न कर।

की करो नमार, कोयल को के कदम्ब की डार, कोयल को के कदम्ब की डार, मध्यम मध्यम बहे बयार, झूठ मूठ के पेड़ रोप, अब मन को ना बहलाना होगा, सच में पर्यावरण बचाना होगा, स्वर्ग धरा पर लाना होगा, सबको आगे आना होगा, सिसके

रण बचाना होगा, स्वर्ग धरा पर लाना होगा, सबको आगे आना होगा। प्रदूषण की तीखी मार, धरती करती हाहाकार, बाज

स्वर्ग धरा पर लाना होगा, स्वर्ग धरा पर लाना होगा। और इसी से संबंधित मैं एक और कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, सवेरा। मन की उर्वर धरा पर बोए थे मैंने, मन की उर्वर धरा पर बोए थे मैंने आकाश भर बीज, सुनहले रुपहले सपनों के, सुनहले रुपहले सपनों के, कुछ तितलियों के पंखों से, कुछ तितलियों के पंखों से, रेशम से कोमल नव कैनवास पर उभरे इंद्रधनुष से, भोर में खिली कुमुदनी से, संतूर के सुरों से, सुंदरवन में दौड़ते मृगछोनों से, झरते पलास से, रक्तांग अमलतास से, खिलते बुरांस से, पहाड़ी नरगिस से, ओस की बूंदों से, सुकुमार हिम शिखर से, उन्नत से, मूली के धागों से, मन्नत से, केशर की क्यारी से, जन्नत से, न जाने उनमें से कुछ बीज गए, न जाने उनमें से कुछ बीज गए, यत्न से सहेजा था हृदय कोटर में, यत्न

0: सहेजा था हृदय कोटर में, जाने कैसे छीज गए। कुछ अश्रुओं की नमी से भीग गए, कुछ अश्रुओं की नमी से भीग गए। कुछ को किया निष्कासित, कुछ को किया निष्कासित, कुछ को दिया वनवास, धीरे धीरे हुआ उनका ह्रास। कुछ हो गए मुट्ठी की रेत, कुछ हो गए मुट्ठी की रेत। इंद्रधनुषी से श्याम श्वेत, इंद्रधनुषी से श्याम श्वेत। उनमें से कुछ हो गए हैं मेरी आंखों के जुगनू, उनमें से कुछ हो गए हैं मेरी आंखों के जुगनू। जो देख रहे हैं उस पार का सवेरा, जो देख रहे हैं उस पार का सवेरा। धन्यवाद।
1: धन्यवाद सखी। और इस सुंदर आह्वान गीत के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आशा त्यागी जी को, और उनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी कि पेड़ लगाएं प्रेम से, पेड़ लगाएं प्रेम से, रखें प्रकृति का मान। पेड़ लगाएं प्रेम से, रखें प्रकृति का मान। स्वच्छ पर्यावरण बने, हो अपना अभियान, हो अपना अभियान।
2: बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। पर्यावरण पर एक गीत लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ।
3: कैसा सावन कैसा फागुन, कैसा सावन कैसा फागुन, भैया कैसे तीज त्योहार, रे बेड़ा किस डब होवे पार। कैसा सावन कैसा फागुन, भैया कैसे तीज त्योहार, रे बेड़ा किस ढब होवे पार। धरती गंजी कर डाली, पेड़

करते, शहरों शहरों पूछा करते, पीपल वाली छांव को सुलगा पर्यावरण धरा का, सुलगा पर्यावरण।

लो हरियाली से धरती माँ का, हरियाली से धरती माँ का करो रोज श्रृंगार, भैया कैसे तीज त्योहार।

सब होवे पार। इसी श्रृंखला में मैं आपके सामने एक मुक्तक लेकर हाजिर हूँ। हौसलों में आपके अगर जान है, हौसलों में आपके अगर जान है, तो समझ लो जीत ये आसान है, जीत ये आसान है। चंद सिक्कों में बिके ईमान अब, चंद सिक्कों में बिके ईमान अब, आजकल पैसा बना भगवान है, पैसा बना भगवान है। एक मुक्तक और आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मोहब्बत से तुम्हारे दिल में एक घर बनाएंगे, मोहब्बत से तुम्हारे दिल में एक घर बनाएंगे, गुलाबों से नजाकत वाले फिर सपने सजाएंगे,

0: नहीं छोटी पड़ेगी गोद माँ की, सुनते थे सबसे। नहीं छोटी पड़ेगी गोद माँ की, सुनते थे सबसे। कदम आंगन में बेटी के पड़े, तारे तोड़ लाएंगे।
1: स्वच्छ जल स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल स्वच्छ वायु, चारों ओर हरियाली है, वन्य जीव निर्भर रहे, मानव की खुशहाली है, मानव की खुशहाली है। स्वस्थ रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, स्वस्थ रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, शुद्ध पर्यावरण हो जब सीढ़ी, धरती माँ का यही सत्कार, वृक्षों से हम करें श्रृंगार, वृक्षों से हम करें श्रृंगार, मिलकर ठाने हम इस बार, मिलकर ठाने हम इस बार, वृक्ष लगे हर घर द्वार, वृक्ष लगे हर घर द्वार। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, तो मैं आकाशवाणी के इस मंच से सबसे आवाहन करना चाहूंगी, वृक्षों की कटाई और पर्यावरण को शुद्ध बनाने की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो हम सबकी है। हम सब जो मिलकर प्रयास करेंगे उसके द्वारा हम पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध बना सकते हैं। हरी भरी हो जाए धरती, हम सबका अरमान है, पर्यावरण रहे सुरक्षित, अपना यह भारत की शान है। और इसके साथ ही मैं जो बहुत देर से हम सबको बुला रही थी मंच पर, उनको आवाहन करना चाहूंगी, लक्ष्मी जी को, दो पंक्तियों के साथ। पर्यावरण संरक्षण ही अब प्रथम कर्तव्य हमारा है, इसका जीवन सबका जीवन, भूमंडल उजियारा है, भूमंडल उजियारा है। लक्ष्मी जी।
2: धन्यवाद सखी। एक पर्यावरण गीत। प्रण लो मिलकर आज सभी, प्रण लो मिलकर आज सभी, हमें पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है, धरती माँ के आंचल को फिर हरियाली से सजाना है, धरती माँ के आंचल को फिर हरियाली से सजाना है। पेड़ों की अंधी कटाई से सूना होता है संसार, पेड़ों की अंधी कटाई से सूना होता है संसार, हर आंगन में पौधे रोपें, हरियाली का हो विस्तार। जन जन तक संदेश हमें, जन जन तक संदेश हमें, अब यही मिल

नदियों में कचरा मत डालो, नदियों में कचरा मत डालो, जल जीवन की धारा है, निर्मल जल की बूंद बूंद से जीवन चले हमारा है, निर्मल जल की बूंद बूंद से जीवन

जीवन कहाँ ठहरता है। शुद्ध हवा के बिना है मानव जीवन कहाँ ठहरता है। प्रकृति से संबंध पुराना, प्रकृति से

आंचल को फिर हरियाली से सजाना है। प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग धरती पर

0: फिर हरियाली से सजाना है, धरती माँ के आंचल को फिर हरियाली से सजाना है। पशु पक्षी और वन उपमन का, पशु पक्षी और वन उपवन का हम सब का सम्मान करें, पशु पक्षी और वन उपवन का हम सब का सम्मान करें, प्रकृति के हर रूप की रक्षा और उसका उत्थान करें, प्रकृति के हर रूप की रक्षा और उसका उत्थान करें। स्वास्थ्य धरा स्वच्छ परिवेश, साफ धरा स्वच्छ परिवेश, हमें ऐसा जगत बनाना है, साफ धरा स्वच्छ परिवेश, हमें ऐसा जगत बनाना है, धरती माँ के आंचल को फिर हरियाली से सजाना है, धरती माँ के आंचल को फिर हरियाली से सजाना है। जल जंगल और जीव सुरक्षित, जल जंगल और जीव सुरक्षित तब जीवन मुस्काएगा, जल जंगल और जीव सुरक्षित तब जीवन मुस्काएगा, इसके बिन यह सुंदर जग धीरे धीरे मिट जाएगा। जंगल जल और जीव सुरक्षित, जंगल जल और जीव सुरक्षित तब जीवन मुस्काएगा, इसके बिन यह सुंदर जग धीरे धीरे मिट जाएगा। प्रकृति के हर उपकारों का, प्रकृति के हर उपकारों का ऋण अब हमें चुकाना है, ऋण अब हमें चुकाना है, प्रकृति के हर उपकारों का ऋण अब हमें चुकाना है, धरती माँ के आंचल को फिर हरियाली से सजाना है, धरती माँ के आंचल को फिर हरियाली से सजाना है। प्रण लो मिलकर आज सभी, प्रण लो मिलकर आज सभी, हमें पर्यावरण बचाना है, धरती माँ के आंचल को फिर हरियाली से सजाना है। इसी के साथ मैं दो छोटी छोटी रचनाएं आपके समक्ष रखती हूँ कि धरती की यही पुकार है ये कैसी हाहाकार है, धरती की यही पुकार है ये कैसी हाहाकार है, मत काटो विकास के नाम पर वृक्षों से मेरा श्रृंगार है, चारों ओर कंक्रीट के जंगल, चारों ओर कंक्रीट के जंगल, यह विकास विनाश का द्वार है, जब सब्र टूटता है मेरा फिर मचती चीख पुकार है, अब भी समय जाग ए मानव, अब भी समय जाग ए मानव, गर जीत गया तो इसमें भी क्या, अब भी समय जाग ए मानव, गर जीत गया तो इसमें भी क्या, इसमें भी तेरी हार है, इसमें भी तेरी हार है। आप सबके समक्ष एक और छोटी सी रचना रखती हूँ कि प्रकृति को प्रदूषित कर, प्रकृति को प्रदूषित कर कहाँ जा रहे हैं हम लोग, प्रकृति को प्रदूषित कर कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या सोचा सुविधा बढ़ा रहे करके नित नए प्रयोग, प्रकृति को प्रदूषित कर कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या सोचा सुविधा बढ़ा रहे करके नित नए प्रयोग, दूषित हवा पानी भूमि सब, दूषित हवा पानी भूमि सब, जन्मे जिसने असाध्य रोग, अगर अभी हम ना चेते तो, अगर अभी हम ना चेते तो क्या पाएंगे इसको भोग, अगर अभी हम ना चेते तो क्या पाएंगे इसको भोग, क्या पाएंगे इसके भोग। और इस सुंदर आयोजन को यहीं पर समाप्त करने की आपकी अनुमति चाहती हूँ। एक आपके समक्ष दोहा रखती हूँ और उसके बाद अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि संकल्पित हो हम सभी, संकल्पित हो हम सभी स्वच्छ रहे परिवेश, संकल्पित हो हम सभी स्वच्छ रहे परिवेश, शुचिता से महके सदा, शुचिता से महके सदा, अपना भारत देश, अपना भारत देश। और आप सभी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप आए, आपने आज की गोष्ठी में चार चांद लगाए, पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद आभार।
1: श्रोताओं भी आपने पर्यावरण पर एक विशेष कवि गोष्ठी सुनी जिसमें प्रतिभाग किया था अंजुला अरोड़ा, आशा त्यागी, सुमन युगल और डॉक्टर नीरज शर्मा ने, संचालन किया लक्ष्मी डबराल ने। श्रोताओं हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, कल शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रिश्ता ये खास है और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे नगर निगम कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के नगर आयुक्त पीएल शाह से।

की गई बातचीत। बात आसपास की, ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:50 पर। धरती गाती है कार्यक्रम में सुबह 9:25 पर आप सुनेंगे रुहेलखंडी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजने को है। अब आप हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुनेंगे।

0: फुटबॉलर हैं और अभी भी खेल से जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं। तो सबसे पहले तो संजय जी और नीरज जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूं।
1: धन्यवाद।
0: संजय जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि भारतीय खिलाड़ियों की कुछ अपनी चुनौतियां हैं, अपनी समस्याएं हैं, जो उन्हें कहीं ना कहीं मार्ग में उनके बाधा बन जाती है प्रतिभा के बावजूद। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप एक खिलाड़ी के रूप में कैसे देखते हैं कि कौन सी वो बड़ी चुनौतियां हैं जो एक भारतीय खिलाड़ी को झेलनी पड़ती है।
1: अपने जो खेल और खिलाड़ी से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है खिलाड़ियों के लिए, तो एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए और उसके प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है उसका फाइनेंशियल सपोर्ट। हम अपने एकल प्रयासों से एक लेवल तक तो पहुंच सकते हैं, हम एक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इससे ऊपर उठना है हमको और इससे ऊपर का जब हमारा टारगेट होगा और उसको अचीव करना होगा, तो वहाँ हमारी जो भी क्षमताएं हैं, पूरी क्षमताओं के साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। खिलाड़ी के लिए जैसे कुश्ती से है या हॉकी का प्लेयर है या किसी भी फील्ड का प्लेयर है, तो हर गेम के अलग अलग इक्विपमेंट हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और फिर जो एक खिलाड़ी को जो आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जिसका होता है, जिसको गुरु कहा जाता है, कोच कहा जाता है, वो सबसे बड़ा मायने रखता है।
0: चलिए इस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं नीरज जी से कि नीरज जी, आपको क्या लगता है जो खिलाड़ियों को चुनौतियां का सामना करना पड़ता है भारतीय खिलाड़ियों को, आपके हिसाब से वो कौन ऐसी चुनौतियां हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे?
2: मैं संजय राय जी के बात से पूरी तरह सहमत हूँ। खिलाड़ियों को सबसे बड़ी चुनौती बेसिक होती है कि जिस खेल में वो जुटे हुए हैं उस खेल का उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इन्वायरमेंट, इन दोनों चीजों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अलग अलग खेल के अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, फाइनेंशियल की जो इन्होंने बात कही है वो भी बात है इसमें, इसकी भी चुनौती का सामना करना पड़ता है।
0: आपने जैसे कहा कि आर्थिक सहायता, तो आप लोग एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, संजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आर्थिक पक्ष जो है खेल का, वो एक खिलाड़ी को किस तरह से प्रभावित करता है और उसके प्रदर्शन को किस तरह से प्रभावित करता है?
1: फाइनेंशियल सपोर्ट का तात्पर्य यह है कि खिलाड़ी की, जैसे हम चूंकि कुश्ती से जुड़े हुए हैं, तो

0: हमारा एक रूटीन वर्क के बाद एक रूटीन डाइट चार्ट होता है। अगर हमने आज सुबह के सेशन में 3 घंटे वर्जिश किया है, पसीना बहाया है, तो नेक्स्ट सेशन में हमें बिल्कुल तैयार होने के लिए इस तरह की डाइट चाहिए कि बीच का जो समय है उसको रिकवर कर ले वो, यानी कि हम अपने इवनिंग सेशन के लिए पूरी तरह से फिट हो जाए। हमारी डाइट इस तरह से संतुलित होनी चाहिए, उसमें घी है, बादाम है, दूध है, सूखे मेवे हैं और जो भी सीजन के फल अवेलेबल होते हैं ये पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, तब जाके कहीं हमारी रिकवरी इतनी अच्छी हो पाएगी कि हम अपने मॉर्निंग सेशन की ट्रेनिंग के बाद का जो बीच का समय होता है उसमें रेस्ट करने के बाद हम अपने इवनिंग सेशन के ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाए। दूसरा चीज इसमें है फाइनेंशियल सपोर्ट में, ये भी है कि हमको कहीं खेलने जाना है या किसी नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में अगर हमको जाना है तो हमारे पास जो हम लोगों के खेल के परिधान होते हैं, अब हर चीज काफी महंगी हो गई है, तो जैसे रेसलिंग शूज है, कॉस्ट्यूम है और प्रॉपर जो किट होती है, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल गेम है तो इंडिविजुअल गेम में इंडिविजुअल व्यक्ति भी स्पॉन्सरशिप किसी को दे सकता है कि हमें कोई स्पॉन्सर मिल गया, उसने हमारा पूरा खर्चा उठाया, भाई मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ, वो हमारे पूरे नेशनल खेलने जाने से आने तक का जो भी कुछ हुआ, कोई व्यक्ति हमें ऐसा स्पॉन्सर मिल गया या कोई ऐसा हमें सपोर्ट करने वाले मिल गया कि भाई चलो हम आपके बादाम का खर्च उठा लेते हैं, तो ये जैसे एक व्यक्ति नहीं कई लोग मिलके भी एक व्यक्ति को छोटा छोटा हेल्प करके उसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं।
1: जी बड़ी अच्छी बात कही आपने। नीरज जी हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप फुटबॉलर हैं तो विशेष रूप से फुटबॉल के क्षेत्र में जो आर्थिक पक्ष है, जो आर्थिक मदद है, आर्थिक सहायता है, वो चाहे सरकार से आए या निजी संस्थानों से आए, वो कैसे प्रभावित करती है और अगर उसको बेहतर किया जाए तो कैसे आपके खेल की गुणवत्ता बढ़ सकती है?
2: जैसे कि संजय भाई ने कहा कि हर खिलाड़ी के लिए प्रॉपर डाइट होता है, तो खिलाड़ी अगर 3 घंटे 4 घंटे अपना पसीना बहाता है तो नेक्स्ट जैसे कि लेवल के लिए जो अगर सुबह उसने वर्कआउट किया अपना 3 घंटे 4 घंटे जो भी प्रैक्टिस किया, उसके बाद उस खिलाड़ी की पूरी एनर्जी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है। जो एनर्जी उनका एग्जॉस्ट हुआ तो उसके लिए एक प्रॉपर डाइट होता है, मेंटेन किया जाता है, चार्ट वगैरह उसकी तैयार होती है, तो उस डाइट को प्रॉपर पूरा करने के लिए एक रूटीन के हिसाब से अपना आदमी डाइट बराबर करता है तो उसमें भी खर्चे भी ज्यादा आते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जूस वगैरह टाइम टू टाइम हर चीजें, तो डाइट पर भी असर पड़ता है, डाइट पे जो फाइनेंशियल आता है उस पर भी असर, वो भी खिलाड़ी के मतलब उस पर असर करता है, आगे बढ़ने के उस पर असर आता है उससे।
1: चलिए तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चलिए जो लोग खेल से जुड़े हुए हैं अगर कि अपने खेल के अपने प्रदर्शन की बदौलत उनकी कहीं नौकरी लग जाती है तो फिर भी उनके सामने एक विकल्प खुल जाता है, या फिर वो अपने खेल में बहुत ही ऊंचा नाम कर लें, किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिताब ले आए तो फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, लेकिन जो बीच के खिलाड़ी हैं जो अभी तक उतना नाम नहीं कर पाए हैं या अभी भी संघर्षरत हैं, तो एक बात तो ये बताइए कि उनके लिए किस तरह की सहायता उपलब्ध है सरकार की ओर से, फेडरेशन की ओर से, और उसमें कहाँ कमी है जिसे पूरा किए जाने की जरूरत है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल रहा आपका ये, क्योंकि ये बिल्कुल आज के परिवेश में खिलाड़ी जिन चुनौतियों से जूझ रहा है वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि खिलाड़ी को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि उसमें पहले तो हम फेडरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कुश्ती फेडरेशन की बात कर रहा हूं, तो कुश्ती फेडरेशन अपने हर आयु वर्ग के सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, अंडर 15, अंडर 23 लेवल का नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करती है पूरे देश में। तो हर वेट कैटेगरी में फर्स्ट, सेकेंड और 2 थर्ड, मतलब 4 प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं हर वेट कैटेगरी से, मेन एंड वोमेन, और उसके बाद इन लोगों को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक कैंप देती है जिसको नेशनल कैंप कहते हैं, हम लोग इंडिया कैंप भी उसको कहते हैं, तो उसमें सारी व्यवस्था रहती है और सारे उसमें आपको इंटरनेशनल लेवल के सारे कोचेज होते हैं, वो आपको उनका प्रैक्टिस रूटीन पूरा मेंटेन करना होता है और कंटिन्यू आपको उसमें ड्यूरेशन होता है इंडिया कैंप का, 90 दिन का होता है, 60 दिन का होता है, 30 डेज का होता है। इसके अलावा जो प्लेयर छूट जा रहे हैं, जिनका नेशनल चैंपियनशिप में मेडल नहीं आ पा रहा रहा है, जिनके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन भाई वहां पे बस फर्स्ट सेकेंड और दो थर्ड की ही जगह है, तो इसमें जो लोग सक्सेस हो गए जिनका मेडल आ गया वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे छूट जा रहे हैं उनके लिए भारतीय कुश्ती संघ ने अभी तत्काल में रैंकिंग सीरीज का प्रावधान डाला है। रैंकिंग सीरीज का नियम यह है कि उसमें चाहे एक वेट कैटेगरी में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका कोई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कोई बाउंड नहीं है उसमें। और रैंकिंग सीरीज में अगर हम या जो भी प्लेयर है रेसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो, और रैंकिंग सीरीज में अगर वो मेडल देते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म ये मिल जाता है कि वो सीधे इंडिया कैंप के हकदार हो जाते हैं, उस नेशनल कैंप के हकदार हो जाते हैं जिस नेशनल कैंप के लिए उन्होंने एक ख्वाब बना के बरसों से ग्राउंड पे मेहनत किया था, पसीना बहाया था, और फिर वो उसी इंडिया कैंप से, नेशनल कैंप से वो शुरुआत होती है जो सपना लगभग हर एक खिलाड़ी देखता है कि जो भी टीम बाहर जानी होती है नेशनल कैंप से ही उन बच्चों का सिलेक्शन होता है, ट्रायल लिया जाता है, उसमें जो भी बच्चे फर्स्ट आते हैं वो उस समय की जो भी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होनी रहती है उसके हिसाब से वो ट्रायल होता है, उसमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं और वो बच्चे जाते हैं। तो एक तो फेडरेशन का ये बहुत बड़ा एक खिलाड़ियों के लिए कदम है, और इसके अलावा एक फाइनेंशियल सपोर्ट में जैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WPL रेसलिंग प्रो लीग ऑर्गेनाइज करती है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही एक खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है कि जैसे अगर उसमें कोई भी खिलाड़ी जिसका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अपने करियर का और उसको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रही है और अचीवमेंट उनका अच्छा रहा है और कंटिन्यू वो मतलब पार्टिसिपेशन कर रहे हैं नेशनल टूर्नामेंटों में, तो उनकी फेडरेशन के माध्यम से जब टीमें इनकी बोली लगती हैं तो वो अपना जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है अवेलेबल कराते हैं, तो जो भी ऑनर है उनको अगर कोई ऑनर लेता है अपनी टीम से खेलने के लिए तो वहां एक अच्छा पैसा मिलता है उनको, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि लगभग हमको ऐसा लगता है कि एक खिलाड़ी को अगर एक टीम ऑनर अपने टीम से खेलने के लिए खरीद लेता है तो वो टोटली चीज जो फाइनेंशियल हेल्प की हम लोग बात कर रहे हैं कि एक प्लेयर का पूरा हो जाता है, फाइनेंशियल रूप से वो मजबूत भी हो जाता है जिससे वो अपनी आगे की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सके। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा एक माहौल तैयार हो रहा है देश में, फेडरेशन की अच्छी पहल है। और नीचे थोड़ा सा एक कहना चाहेंगे कि जैसे एक तो हम एक लेवल पे हम बात कर रहे हैं लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए चूंकि वो ग्रामीण परिवेश जो अपना है वहां से जहां से हम प्रतिभा को तैयार करते हैं नर्सरी जो होती है खेल की, क्योंकि खिलाड़ी एक तो खिलाड़ी हमेशा अभाव में होता है, प्रतिभा अभाव में होती है, तो हमें ये जरूरत है, मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं पहले खुद को बोलता हूं कि अगर मैं ही हूं तो हमें अपने गांव में या हमें उस जगह पे जहां मैं फिलहाल अभी हूं वहां पे ऐसा देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए हम लोगों को कि भाई ऐसा कौन सा बच्चा है, अगर वो बच्चा है तो हमें उसका हेल्प इतना ही हमें उसको हेल्प करना है कि उसको एक अच्छी जगह बतानी है जहां से उसके रुचि के हिसाब से उसके शौक उसके मुताबिक जिस गेम को खेलना चाहता है उसका कोचिंग देने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको वहां पे एक ग्राउंड मिल जाए जिसपे जाके वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो ये सब चीजें अगर हम छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करें हम सभी लोग मिलके जो भी लोग खेल से जुड़े हैं तो काफी कुछ चीजें आसान हो जाएंगी।
1: जी संजय जी आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं इस पर थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूंगा कि जो आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की तो हम सब जानते हैं कि भारत में ढेरों प्रतिभाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें तराशना और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। तो आप खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी होने के कारण।
0: बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश ग्रामीण पृष्ठभूमि रही मेरी और हमें कुश्ती से बड़ा लगाव था, परिवार में भी फादर भी कुश्ती करते थे और हम अपने जिस स्कूल में माध्यमिक शिक्षा परिषद का स्कूल हुआ करता था जिस स्कूल में मैं पढ़ने जाता था उसी स्कूल के रास्ते में अखाड़ा हुआ करता था, तो जब हम सुबह स्कूल के लिए निकलते थे तो रास्ते में वहाँ जो उस्ताद जिनको कहा जाता है गांव की भाषा में उस्ताद कहा जाता है, तो उस्ताद जी जो बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे और जो लोग अब वर्जिश करते थे देख के बड़ा अच्छा लगता था उनकी शरीर देख के, तो मन में आता था कि काश हमारी भी शरीर ऐसी होती, हम भी मेहनत करते। तो ये तो बात है छठवीं सातवीं जब हम लोग पढ़ते थे, फिर उससे ऊपर जब मैं आठवीं नौवीं आया तो मैं थोड़ा और बड़ा भी हो गया था और शरीर भी काफी अच्छी हो गई थी, क्योंकि अखाड़े पे नहीं जाते थे हम लोग, लेकिन जब भी मौका मिलता था अपने घर पे, अपने दरवाजे पे या कहीं ऐसी जगह जो घर के अगल बगल थी, खाली थी, वहां पे हम लोग एक वर्जिश का अपना छोटे मोटे गांव वाले जो साधन हुआ करते थे उसको तैयार करके करते थे। तो शरीर इस तरह से ठीक हो रही थी, अच्छी हो रही थी, और खाने पीने की सारी व्यवस्था थी घर पे, दूध घी की सारी व्यवस्था थी। तो हमारे गांव के एक लोग हुआ करते थे जो गोरखपुर, उनकी दुकान थी वो, तो उन्होंने देखा था हमको, हमारी शरीर देखी उन्होंने गांव में जाके, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको गोरखपुर चलना है कुश्ती के लिए। फादर से बात किया उन्होंने, फादर ने जब हमसे बात किया तो हम तैयार हो गए, तो वो लेके हमको गोरखपुर आए। तो गोरखपुर आने के बाद यहाँ पे प्रॉपर हमारी कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ था, कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ। और एक साल तो मैं बिल्कुल गाँव से गोरखपुर आने जाने का कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन एक साल के बाद जब मैं ट्रायल दिया आवासीय छात्रावास के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होता है, तो उसमें ट्रायल देने के बाद उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर मंडल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे ट्रायल होने के बाद मैंने अपने सारे ट्रायल क्लियर किए, उसके बाद उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ कैंप के लिए, और जो स्टेट कैंप लगा, स्टेट कैंप के बाद फिर फाइनल ट्रायल हुआ, तो हमारा सिलेक्शन हॉस्टल के लिए हुआ। तो जो सबसे बड़ी चीज है, बेसिक जो है, कि ग्रामीण रूरल क्षेत्र में उन लोगों का या ऐसे लोगों का अभाव है जो, जैसे कोई कुश्ती का नॉलेज होना चाहिए, भाई जिसको कुश्ती का नॉलेज है वही कुश्ती का ट्रेनिंग आपको दे सकता है, जिसको बैडमिंटन का नॉलेज है वही बैडमिंटन की ट्रेनिंग दे सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जबकि हमारी नर्सरी ही वहीं से तैयार होती है। अगर हम उस लेवल पे ये चीज अपना कर लेते हैं कि हम अपने ब्लॉक स्तर पे या अपने एक ग्राम पंचायत स्तर पे, जिसको कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा इसको किया जाए कि हम ग्राम पंचायत स्तर पे एक खेल का मैदान हो, वहां पे कम से कम इस तरह के दो चार लोग, जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी योजनाएं हैं चल रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में चल रही हैं, तो उसी तरह से इसके लिए भी एक पहल करनी होगी कि इस तरह के लोग चिन्हित किए जाए जो उस ग्राम सभा के अंतर्गत हो, जिनको कुश्ती का ज्ञान हो, जिनको वॉलीबॉल का ज्ञान हो, जिनके अंदर एथलेटिक्स का नॉलेज हो, तो उनसे सुबह शाम एक वो करके और ग्राउंड पे बच्चों को कुछ टिप्स दिए जाए जिससे बच्चे तैयार हो और उनके नॉलेज से उनको इतना लाभ हो कि उस गेम में वो मतलब करने के लिए उनके अंदर जागरूकता हो, उस गेम के प्रति उनका लगाव बढ़े और वर्क करें। इसके अलावा आता है कि अब जैसे हमने आवासीय छात्रावास का आपसे अभी जिक्र किया था, तो आवासीय छात्रावास कुश्ती के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय स्पोर्ट्स हॉस्टल है, स्पोर्ट्स हॉस्टल वीर बहादुर सिंह गोरखपुर, और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई। तो लगभग लगभग प्रदेश में स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज इस लेवल के हैं और इसी स्थिति में है प्रदेश में, कि स्पोर्ट्स कॉलेज जैसे गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज भी बहादुर सिंह है, इसमें कक्षा छठवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो लखनऊ में है उसमें कक्षा नौवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें तो सिर्फ एक से और पांचवी तक ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि पांचवी के बाद तो गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है बच्चे के लिए। तो एक से और पांचवी तक का जो जीमा है वो शायद सिर्फ गवर्नमेंट के ही हिस्से नहीं है, उसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए कि एक से पांचवी तक का जो बच्चा है उसके तैयार करने के लिए हमें खुद समय निकालना होगा, हमें खुद एक पहल करनी होगी। और उसके बाद से हम जब पहल करेंगे तो निश्चित ही, अगर हम 10 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो नहीं 10 तो 2 बच्चे तो जरूर सेलेक्ट होंगे उस आवासीय छात्रावास से, उनको जरूर लाभ मिलेगा, उनका करियर जरूर आगे बढ़ेगा। तो ये एक तरह से हम सबकी जिम्मेदारी है, अगर हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स में कुछ नया अगर करना है तो हमें अपने आसपास के बच्चों को देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं।
1: संजय जी, आपने जैसा कहा कि पांचवी तक हमें प्रयास करना है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जहां की खिलाड़ी जाकर अपनी प्रतिभा संवार सकते हैं और उन्हें एक रास्ता मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सूचना की कमी एक बड़ा कारण है। जो आप चीजें बता रहे हैं उसकी भी सूचना बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, विशेष करके छोटे शहरों और गाँव में तो इसकी बहुत ही कमी है। तो आकाशवाणी का एक माध्यम है जो कि सूचना और अच्छी सूचना का प्रसार करे, ये हमारा कार्य भी है। तो आकाशवाणी के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो प्रतिभाएं छोटी जगहों पे हैं, जिनके पास अभी सूचना के उतने साधन नहीं है और वो इस द्वंद में हैं, इस असमंजस में हैं कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे संपर्क करें ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक मौका मिले, उसे तराशने का एक मौका मिले। तो आप जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं उनको कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उन्हें जाननी चाहिए, उन्हें आप बताना चाहेंगे वो किससे संपर्क करें, किसके पास जाएं?
0: ये बहुत अच्छा रहा आपने चर्चा किया इस पे। ये वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, पूरा इसको कहा जाए कि व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। आज भी फार्म बिक चुके हैं, लोगों ने फार्म भर दिया है, लेकिन आज भी अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगे, किसी गांव में जाके किसी खेलने वाले बच्चे से जो एथलेटिक्स का शौकीन है या उसकी प्रैक्टिस करता है उससे पूछेंगे तो बताएगा कि नहीं, हमें नहीं पता कि फार्म मिला कि नहीं मिला। तो ये प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में तो बाकायदा

0: मतलब इसकी सूचना भेजी जानी चाहिए। तो इस सब हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला खेल कार्यालय होता है, तो जैसे ही ये फॉर्म बिकने होते हैं तो सबसे पहले इनकी नोटिस जिला खेल कार्यालय को जाती है। वो जिला खेल कार्यालय पे नोटिस चस्पा होती है, उस पे लिखा रहता है कि फला से फला डेट तक ये फॉर्म गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर का फॉर्म फला से फला डेट तक वितरित किया जाएगा। यहाँ से आप उसकी एक निर्धारित उसका शुल्क होता है, उस शुल्क दे के आप उस फॉर्म को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एक रीजनल कार्यालय होता है, तो आप अगल बगल के अगर जिले के खेल कार्यालय से चीज स्पष्ट नहीं होती है तो आप रीजनल ऑफिस पे पहुंच सकते हैं, जहां से 100% ये स्पष्ट होनी ही होनी है कि ये फॉर्म बिकेगा, कब से बिकेगा, इसका मूल्य क्या निर्धारित होगा, वो सारी चीजें आपको जिला खेल कार्यालय से अगर नहीं मिल पाती हैं तो आप अपने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर से ले सकते हैं, जो हर रीजन में एक रीजनल स्पोर्ट्स अफसर का ऑफिस बना हुआ है, जहाँ से जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत रन करता है, आपको वो सारी जानकारियां वहां से मिल सकती हैं, बशर्ते कि आपको वहां तक जाना होगा।
1: मतलब ये हुआ कि जो भी नई प्रतिभाएं हैं, जो छोटे शहर और गांव के खिलाड़ी हैं, वो अपने जिले के खेल कार्यालय
0: जी
1: और जो स्थानीय केंद्र हैं
0: जी
1: उसके संपर्क में रहें, तो उन्हें समय आने पर जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती रहेंगी। चलिए नीरज जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि फुटबॉल में भारत में कई प्रतिभाएं समय समय पर दिखती हैं, बड़े नाम आते हैं, लेकिन अगर एक टीम के रूप में चर्चा की जाए तो भारतीय टीम कहीं ना कहीं फीफा की रैंकिंग में बहुत नीचे है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद एक टीम के रूप में हमारा प्रदर्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इतना लचर क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या है?
2: इसके मुख्य कारण ये है कि खिलाड़ियों को सही जो दिशा निर्देश है वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि संजय भाई ने कहा अभी कि खिलाड़ियों को जानकारी नहीं हो पाती है, आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहा है फुटबॉल का कि हमारी देश की जो टीम है, ना बढ़ने का कारण यही है कि खिलाड़ियों को सही चीजें और सही फैसिलिटी वगैरह नहीं मिल पाती, कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है, जो प्रतिभाएं होती हैं वो दबी रहती हैं। अभी भी हम गांव क्षेत्र में जाएं तो खिलाड़ियों को देखें तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहां पर भी मौजूद हैं, पर उनको तराशने की ही जरूरत है। ये सब चीजें हैं जो कि थोड़ा सा
1: ये चुनौती बनती है। जी संजय जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि संजय जी जो हैं वो कुश्ती के साथ ही कुश्ती की एक जो एक नया प्रकार है ग्रैपलिंग रेसलिंग, उससे भी जुड़े हुए हैं और उसके बड़े ही अच्छे खिलाड़ी हैं। हालांकि ये एक नई विधा है कुश्ती की और इससे बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं हैं। तो संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रैपलिंग रेसलिंग जो है वो क्या है, वो पारंपरिक कुश्ती से किस तरह से अलग है, और अगर ग्रैपलिंग रेसलिंग में कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए?
0: ग्रैपलिंग रेसलिंग जैसे नाम दिया गया है, इसको ग्रैपलिंग रेसलिंग रेसलिंग नाम इसलिए दिया गया कि रेसलिंग ही इसको, रेसलिंग की जो भी फेडरेशन होती है, चाहे वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW जो वैश्विक संस्था है कुश्ती की, उसी के अंतर्गत रन करती है। और दूसरी चीज की किसी भी देश में जो भी ग्रैपलिंग की फेडरेशन होगी, उस देश की जो नेशनल एसोसिएशन फेडरेशन होगी उसी के अंतर्गत संचालित की जाएगी, कोई अलग उसके लिए संस्था अलग से नहीं बना सकता है। तो ये ग्रैपलिंग रेसलिंग की एक एसोसिएट स्टाइल है, जैसे कि जो प्रोफेशनल स्टाइल है रेसलिंग की ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल, उसके बाद ग्रैपलिंग एसोसिएट स्टाइल में आता है रेसलिंग की। तो ग्रैपलिंग रेसलिंग में, ग्रैपलिंग और रेसलिंग में सिर्फ अंतर इतना ही है कि ग्रैपलिंग रेसलिंग में जैसे रेसलिंग और जूडो को मिला के दोनों की टेक्निक, कुछ टेक्निक इसकी रेसलिंग से ली गई हैं और कुछ टेक्निक जूडो से ली गई हैं। तो रेसलिंग और जूडो को मिला के इसकी सारी टेक्निक बनी हुई है और इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। जैसे चोक किया जाता है, चोक होने के बाद से जो लोग मतलब बेहोश हो जाते हैं, इसको तो एक तरह से इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। तो सबमिशन रेसलिंग भी इसको कहा जाता है, ग्रैपलिंग रेसलिंग है। और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अभी भारतीय कुश्ती संघ ने इसके लिए अलग से एक कमेटी भी अडॉप्ट कर दिया है कंट्री में अपने, ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया अंडर एजिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसमें एक अलग से एक ऑप्शन मिल गया उन लोगों के लिए कि जैसे जो लोग काफी वर्क कर रहे थे लंबे टाइम से और सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार ग्रैपलिंग रेसलिंग को भी करके देखो, हो सकता है कि आपकी वही टेक्निक वही मेहनत यहाँ एक अच्छे मुकाम पे आपको लेके जाए। और अब इसको पूरे देश में इसके सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है, जैसे रेसलिंग के सेंटर हैं तो इसके भी हर जिले पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे, जोन पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे। और अभी फिलहाल अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी खिलाड़ी अगर इसको सर्च करना चाहता है तो वो

0: यूट्यूब पे भी काफी इसकी इंटरनेशनल लेवल की, वर्ल्ड चैंपियनशिप की, एशियन चैंपियनशिप की, यूरोपियन चैंपियनशिप की सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, जो भी बड़े इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट है, तो उससे भी आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं कि क्या है, कैसे है, उसका बेसिक टेक्निक क्या है, उसमें मतलब क्या आपको करना होगा, कैसे चेंज लाना होगा, आप अगर रेसलिंग से ग्रेपलिंग रेसलिंग में आते हैं तो आपको क्या चेंजिंग करनी होगी। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई रेसलिंग में काफी वर्क कर रहा है कोई बच्चा और उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो एक बार वो चेंज कर सकता है अपना प्लेटफॉर्म, है आप रेसलिंग में ही लेकिन एक फॉर्मेट अलग हो गया है, आप रेसलिंग से दूर नहीं गए हैं, तो आप अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं और इसमें हो सकता है आप अगर मेहनत किए हैं, मेहनत करेंगे तो इसमें आपको बेटर रिजल्ट आ सकता है।
1: जी, बातें करते करते वक्त का पता नहीं चला और हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चले हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा संजय जी कि जो नए प्रतिभाएं हैं, नए खिलाड़ी हैं, वो खेल में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें आप दोनों क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश किसी भी खिलाड़ी के लिए तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप खेल हो, शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र में, तो एक अनुशासन बहुत बड़ा, अनुशासन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में जिसको हम फॉलो करते हैं, और अनुशासन के साथ साथ हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि अगर आप लक्ष्य नहीं निर्धारित करते तो आपका वर्क नहीं हो सकता है। वर्क के लिए आपका लक्ष्य ही आपको प्रेरित करेगा कि आपको कितना वर्क करना है। अगर आप लक्ष्य अपना नेशनल लेवल का लेते हैं कि हमें नेशनल से गोल्ड लेना है, तो वो आपका लक्ष्य प्रेरित करेगा कि आज आपको इवनिंग सेशन में कितना वर्क करना है। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल का टारगेट लेते हैं कि हमको इंटरनेशनल लेवल में, एशियन चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हमको मेडल लेना है, तो हमेशा आपको एक लक्ष्य देना होगा खुद को, क्योंकि उस लक्ष्य को दिए बिना आप दिशाहीन रहेंगे, क्योंकि उसी लक्ष्य के लिए आपको वर्क करना है, आपको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ उस लक्ष्य को पाने के लिए वर्क करना है। और जितना ही आपका लक्ष्य ऊंचा होगा उतना ही आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी, और जब आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी, आपकी प्रैक्टिस इस काबिल होगी कि आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे फाइट कर सकें, तो निश्चित ही मेडल भी आएगा। एक बार आप पार्टिसिपेशन करने जाएंगे, एक बार कुछ और आपका अनुभव बढ़ेगा, अगली बार उसी टूर्नामेंट में आप जाएंगे तो आप अचीवमेंट लेके आएंगे। तो आपको एक लक्ष्य देना होगा, और वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल मतलब आपको सोने ना दे, एक जुनून हो उस लक्ष्य को पाने के लिए, आपके अंदर एक जुनून फिर हो जाएगा कि हमें उसे अचीव करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो। तो ये लक्ष्य तो निर्धारित करना होगा, बिना लक्ष्य के आप वर्क नहीं कर सकते हैं।
1: नीरज जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: एक खिलाड़ी के लिए अनुशासन तो बहुत जरूरी है। जिस खेल में वो रुचि रखते हैं उस खेल में उनको पूरा अपना 100% देना होता है। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे, और जिस खेल में वो रुचि रखते हैं उस खेल को आगे तक अपने मतलब स्वयं को आगे ले जाने के लिए उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं, कुछ टीमें वगैरह जिला की या स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, नेशनल की, मतलब जो टीम ट्रायल वगैरह होती है उस ट्रायल में अगर वो एक दो बार छट भी जाते हैं फिर भी उनको हताश नहीं होना चाहिए, उनको निरंतर उस पर मेहनत करते रहना है। टीम में सिलेक्शन होगा फिर उससे वो और आगे बढ़ेंगे। ऐसे कई चुनौतियां भी आती हैं सामने कि आदमी थोड़ा सा डगमगा जाता है अपने रास्ते से कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मन में निराश आ जाता है, खिलाड़ी फिर भागने लगता है पीछे कि मेरा तो नहीं हो पा रहा है कुछ, मैं क्या करूं। तो इसलिए खिलाड़ी को हमेशा अपने प्रयास करते रहना चाहिए।
1: संजय जी, नीरज जी, आप लोगों ने जैसी चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि आकाशवाणी के माध्यम से ये सारी बातें, जिसमें सारी सार्थक बातें हुई हैं, वो एक बड़े वर्ग तक और छोटे छोटे सुदूर जगहों पे पहुंची होंगी। बहुत सारी काम की बातें निकल कर आईं और बहुत सारी जानकारियां भी हमने जानी, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा एक समाज के बड़े वर्ग को मिलेगा। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, चुनौतियों से कैसे पार पाए चैंपियन। परिचर्चा में भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजय राय तथा फुटबॉलर नीरज गुप्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे दीपांकर मिश्र। इसी के साथ आज का खेल दर्पण का यह अंक यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण, मीडियम वेव 401.5।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 होने को है और अब पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ममता अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता मैसेज करते हैं अपनी फरमाइश के साथ और हम उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं उनकी पसंद के गीत के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं। आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूं। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर।

श्रोताओं, ये प्रोग्राम की पहली पेशकश हमारी इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर बाजार रोड मुंगीसा पुरसी मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा शबिस्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी

जमशेदपुर झारखंड से सुपाही साही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देबेन, ये फरमाइश हमें मिली है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से। फरमाइश करने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मनवी, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। ये एक और फरमाइश हमें मिली है गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर, छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली पेशकश के लिए हमें अनुरोध किया है इन सभी श्रोताओं ने। आई देखते हैं, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और कलीम अंसारी। ये फरमाइश है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवांश शर्मा की। झरझर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया, ये फरमाइश है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर। मलकापुर से सुनना चाहते हैं नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुर्रेकर। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। सहारनपुर चंदर नगर से सोनाली, सुरेश नारंग, आशु नारंग, शेख अलाव बख्श, अरविंद कुमार और संदीप मक्कड़। लालकुर्ती रुड़की कैंट से ये फरमाइश की है राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा ने। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आई सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म याराना का ये गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अप्रैल फुल फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने। सुनने की ख्वाहिशमंद है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। ये फरमाइश हमें मिली है गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन कविता संजय ढिंगिया, राधा नामदेव, अनिल जैन, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई। सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। ग्राम पंचायत भटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, सूरज और कुशल वर्मा। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्षा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन। ये फरमाइश है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामण शेंडे। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उरमान अंसारी और कलीम अंसारी। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं अप्रैल फूल फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मिलन से लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाजों में। और अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नीला आकाश से। इन दोनों गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह से है। कस्बा उगहती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। ये फरमाइश हमें मिली है लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम जैन। ये फरमाइश हमें मिली है पद्मा।

किस नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह की। गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रबोध कुमार डूडी, उदित नारायण। और ये फरमाइश है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल। और ये फरमाइश है ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण, लव्या, आरव खुराना और एस के पप्पी। इन्हीं गीतों के लिए फरमाइश है दुबिया नेवादा, जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। ये फरमाइश हमें मिली है दाऊद सराय सहारनपुर से अनबर साबरी, शानो साबरी, मुदस्सिर, मुजक्किर और जरीफ अंसारी। मोहल्ला दरबारा शाह नजीबाबाद से गौरी मौली और उनके ताऊजी आलोक अग्रवाल। आइए सुनते हैं प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा।

0: सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu.

रही है। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं और अब हमारी इस सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में प्रातः 5:55 पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।